सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगी हमारी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का

0: उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए 2 चीजें चाहिए, वो है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों हैं तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं, वो जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर चलता है। तो तुम कौन हो, खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। ये संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़कर नहीं बैठते हैं, इसी तरह हम संसार की चीजों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद से आया सपना जागने के बाद नहीं रहता। उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि किस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं और जाते हैं। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा ये सेवा व्यापार हो जाती है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो। यही जीवन है और जीवन जीने की कला। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं, देखो वो दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नजदीक समझें, जल्द ही उसको पा लेंगे।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आत्मचिंतन के संबंध में विचार। वाचक स्वर था विनय ध्यानी का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं गणेश वंदना। भगवान गणेश वक्रतुंड महाकाय रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न विनाशक हैं, जो देवों में प्रथम पूजनीय हैं, जो जब तब सुमिरन मात्र से जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु का हम बार बार नमन करते हैं और सुनते हैं समूह स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

रे मन, जब हम विपरीत परिस्थितियों में घिर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन में कोई राह नजर नहीं आती, तो उम्मीद की एक ही किरण नजर आती है, वो है प्रभु शरण, प्रभु चरण, और उनकी चरणों में जगह पाकर जीवन आनंद में हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन के स्वर में ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। ग्वालों के ग्वाल यशोदा के नंदलाल, बाकी बिहारी भगवान कृष्ण मुरारी,

वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। कलाकार थे हरिहरन, महेंद्र कपूर और साथी। श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह सर में देश गान FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए सुनिए राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के भारतीय सैन्य अकादमी यात्रा भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का आंखों देखा हाल। कमेंटेटर हैं संकल्प मिश्रा और कंचन नेगी। तो आइए आपको लिए चलते हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून।
1: सैन्य परंपराओं, कठिन अनुशासन और सर्वोत्तम बलिदान का प्रतीक भारतीय सैन्य अकादमी का चैटवुड ड्रिल स्क्वायर आज एक बार फिर सज चुका है और उस गौरवमयी पल का साक्षी बनने जा रहा है जिसका इंतजार हर जेंटलमैन कैडेट को, उनके माता पिता को और साथ ही पूरे देश को इंतजार रहता है। और आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस समारोह का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मैं यानी संकल्प मिश्रा और मेरी साथी कमेंटेटर कंचन नेगी।
2: जो तूफानों में भी दीप जलाए रखते हैं, जो सीने पर गोलियां खाकर भी तिरंगे को झुकने नहीं देते, जो अपने सपनों से पहले राष्ट्र का सम्मान चुनते हैं, असल में वही भारत माँ के सच्चे सपूत कहलाते हैं। नमस्कार भारत, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, हिमालय की गोद से, गंगा की पावन धारा के आशीर्वाद के साथ आप सुन रहे हैं भारतीय सैन्य परंपरा के सबसे गौरवशाली, सबसे अनुशासित और सबसे भावुक समारोह इंडियन मिलिट्री अकादमी पासिंग आउट परेड 2026 का विशेष सीधा प्रसारण। श्रोताओं, आज की यह सुबह केवल एक सुबह नहीं है, ये उन हजारों सपनों की सुबह है जो वर्षों पहले किसी छोटे से गांव, किसी सैनिक परिवार, किसी माँ की दुआ और किसी पिता के विश्वास के साथ जन्मे थे। आज वही सपने चैटवुड भवन के सामने सितारों में बदलने जा रहे हैं और आज परेड ग्राउंड पर वो क्षण आने वाला है जब वर्षों के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, समर्पण और त्याग के बाद ये युवा कैडेट्स भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस समय हम देख पा रहे हैं चैटवुड भवन के सामने स्थित उस ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर को जहां हर कदम इतिहास लिखता है। श्रोताओं, सुबह की हल्की सुनहरी किरणें मसूरी की पहाड़ियों से उतरकर IMA परिसर को रोशन कर रही हैं और ठंडी हवा में सैन्य बैंड की धुनें घुल चुकी हैं। पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति, गर्व और अनुशासन से सराबोर दिखाई दे रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे माता पिता की आंखों में उत्साह है, किसी माँ के हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं, किसी पिता की आंखों में वर्षों की मेहनत का सपना चमक रहा है और ड्रिल स्क्वायर पर खड़े हैं हर जेंटलमैन कैडेट की आंखों में केवल एक ही संकल्प दिखाई दे रहा है, देश पहले, फिर साथी और सबसे अंत में स्वयं। श्रोताओं, अगर कोई पहली बार IMA की पासिंग आउट परेड देखे ना, तो शायद वो जीवन भर इस दृश्य को भूल ना पाए। यहां केवल परेड नहीं होती, यहां अनुशासन चलता है, यहां साहस कदम ताल करता है और यहां राष्ट्रभक्ति सांस लेती है। श्रोताओं, सन 1932 में स्थापित इंडियन मिलिट्री अकादमी केवल एक सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि वो तपोभूमि है जहां साधारण युवा असाधारण सैनिक बनता है। बताना चाहूंगी आप सभी को श्रोताओं कि यहीं से निकलकर देश को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे महान सेनानायक मिले, यहीं से निकलकर अनगिनत वीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं ने भारत की सीमाओं की रक्षा की, यहां की मिट्टी में अनुशासन है, यहां की हवाओं में बलिदान की सुगंध है और यहां की हर सुबह एक सैनिक के निर्माण की कहानी कहती है।
1: जी हां कंचन, आपने जो हमारी परंपरा है भारतीय सैन्य अकादमी की, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत ही सुंदर चित्रण दिया है। और अब हम देख पा रहे हैं जो चैटवुड ड्रिल स्क्वायर है, वहाँ पर लाल रंग से सजी हुई चैटवुड जो भवन है उसके ऊपर इस समय सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, बहुत से सैन्यकर्मी मौजूद हैं, अपनी तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं वो। हालांकि अभी परेड का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि लाल और ग्रे रंग से सजे हुए जो झंडे हैं, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी का प्रतीक हैं, उनसे इस समय पूरे चैटवुड ड्रिल स्क्वायर को सजाया गया है। और अब हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे परेड का आगमन हो रहा है चैटवुड ड्रिल स्क्वायर पर। और इसी के साथ आपको बताते चलें श्रोताओं कि 34 मित्र राष्ट्रों के जो कैडेट्स हैं वो आज यहाँ से सेना के कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे। और उनका अनुभव कैसा रहा है, यहाँ पर भूटान से आने वाले फॉरेन ऑफिसर कैडेट खिंडराब तेंजिंग यूसिल, जो आज अंतिम पग रखेंगे और एक सैन्य अधिकारी बन जाएंगे, उनका जो अनुभव है, उनका सफ़र है भारतीय सैन्य अकादमी का, वो कैसा रहा है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे।
3: My name is Foreign Officer Garrett, Khandab Tenjin Yesil, and I'm from Bhutan. To tell about how I turned up to join the army, my father is also in army. He's an ex-Sende, ex-IMA, and is currently serving as Lieutenant Colonel in Royal Bhutan Army. Being a second generation army kid, the military wasn't just a lifestyle I chose. It was the very fabric of my childhood. Growing up in an army cantonment, you don't just watch the army lifestyle, you breathe it. My training here, 3 years in India and 1 year in IMA, has been rigorous, intense, and deeply rewarding journey, which tested every limit of my physical endurance and mental fortitude. But what made experience here truly unforgettable was the environment. Getting trained alongside Indian instructors and course mates meant immersing myself into a culture of immense discipline, warmth, and mutual respect. And navigating the sheer grit of the regime together turned what could have been a lonely 4 years into an empowering chapter of my life. And now, as I'm about to get commissioned, I like to thank all the Indian instructors and course mates for not just making me a better trained, but also filling me up with deeply enriched memories. Thank you.
1: तो यहाँ भूटान से आने वाले खिंडराब तेंजिंग ने अपना अनुभव बताया कि वो भारतीय सैन्य अकादमी में जो ट्रेनिंग मिलती है, उनका जो सफ़र रहा है, उन्होंने जो दोस्त बनाए वो सफ़र कैसा रहा है, और वो खुद अपनी पीढ़ी के दूसरे सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं। इसी के साथ श्रोताओं आपको बताएं कि सैन्य परंपराओं और विरासत की बात करें तो उस दृष्टि से आज कैडेट प्रणय छाबड़ा भी पास आउट होंगे, सैन्य अधिकारी बनेंगे, अपने परिवार में चौथी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। आज हम देख पा रहे हैं इस समय चैटवुड ड्रिल स्क्वायर में जहाँ दर्शक दीर्घा है, वहाँ पर उनके पिता मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा भी मौजूद हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और उनकी सैन्य वर्दी में जो अनुशासन दिख रहा है, उसके पीछे जो उनके चेहरे पर मुस्कान है वो उनके बेटे प्रणय के प्रति जो उनकी प्रेम की पराकाष्ठा है उसको उसकी झलकी दे रही है। कंचन, हम बात करें चैटवुड भवन की, भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास की,
2: बिल्कुल
1: उसके बारे में श्रोताओं को हमें क्या बताना चाहिए?
2: संकल्प, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि देहरादून की सुरम्य दून घाटी में स्थित जो भारतीय सैन्य अकादमी है, इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और उस समय भारत में सैन्य नेतृत्व को भारतीय हाथों में सौंपने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था संकल्प। अकादमी के प्रथम बैच में केवल 40 कैडेट्स थे जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है। और आईएमए के जो पहले कमांडेंट थे वो थे ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस। और स्थापना के बाद से आज तक ये अकादमी हजारों सैन्य अधिकारियों को तैयार कर चुकी है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीरता, साहस और बलिदान के द्वितीय मिसालें प्रस्तुत की हैं। चैटवुड भवन के इतिहास के बारे में चर्चा करें संकल्प, तो आज जिस भव्य भवन की छाया में ये परेड आयोजित हो रही है उसी को कहते हैं हम चैटवुड भवन। और इस भवन का नाम भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक कमांडेंट फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड के सम्मान में रखा गया है। चेटवुड भवन केवल एक इमारत ही नहीं है बल्कि भारतीय सेना के गौरव, अनुशासन और मूल्यों का प्रतीक है। यहीं से वो प्रसिद्ध चेटवुड मंत्र दिया गया था संकल्प, जो भारतीय सेना के प्रत्येक अधिकारी के जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है, और वो है देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सर्वप्रथम, सदैव और हर समय। उसके बाद उन जवानों का सम्मान, कल्याण और सुविधा जिनका आप नेतृत्व करते हैं, और अंत में आपका स्वयं का आराम, सुविधा और सुरक्षा संकल्प।
1: जी हां कंचन, इस समय हम देख पा रहे हैं चेटवुड ड्रिल स्क्वायर पर जो सेना के अधिकारी हैं, अब जो सेना के अधिकारी आज बन जाएंगे, इस समय जूनियर अंडर ऑफिसर हम उन्हें बोलते हैं, वो 16 कंपनियों में विभाजित होते हैं और 4 बटालियन में बटे हुए होते हैं। वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। आइए ले चलते हैं आपको सीधे जो वहां का इस समय हाल है वो सुनवाते हैं।

Michel!

बीवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। निशान को परेड पर ला रहे हैं निशान अधिकारी सीनियर अंडर ऑफिसर आयुष दुबे। उनके दाहिने रक्षक हैं कंपनी साजन मेजर निकुल सिंह एवं उनके बाएं रक्षक हैं कंपनी साजन मेजर अमन वर्मा।

0: कंचन, इस समय जो सबसे पहली जो प्रक्रिया है, परेड का जो निशान झंडे के रूप में, आईएमए का जो झंडा है जिसे परेड का निशान बोलते हैं, वो इस समय परेड ड्रिल स्क्वायर पर लाया जा रहा है और निशान अधिकारी उसे लेकर के आ रहे हैं। स्टील ग्रे कलर का जो झंडा है और उसमें जो रेड यानी लाल रंग है वो दिखाता है बलिदान का प्रतीक और धैर्य और साहस का प्रतीक, जो इस समय इस निशान अपनी जो नियत जगह है वहां पर लाया जा रहा है। और हम देख पा रहे हैं जो सिविलियन लोग हैं इस समय वो खड़े हैं और सैन्य अधिकारी सल्यूट कर रहे हैं, और चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने इसको लेकर के जाया जा रहा है और यहाँ पर बैंड भी बजाया जा रहा है जो हर साल नियमित तौर पर परंपराओं के अनुरूप बजाया जाता है।
1: निशान रक्षा।

0: श्रोताओं, इस समय विशाल ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल की गूंज सुनाई दे रही है। सभी जेंटलमैन कैडेट्स अपने अपने टुकड़ियों में पूर्ण अनुशासन और अद्भुत समन्वय के साथ परेड मैदान में पहुंच चुके हैं। उनकी वर्दी की चमक, कदमों की दृढ़ता और आंखों में देश सेवा का संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
1: परेड पर आने वाले पहले
0: प्रत्येक कैडेट ने कठिन शारीरिक प्रशिक्षण, सामरिक शिक्षा, नेतृत्व कौशल और मानसिक दृढ़ता की कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है। श्रोताओं, ये युवा अधिकारी अब केवल अपने परिवारों के सदस्य नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। भारत की ऊंची हिमालय चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक, घने जंगलों से लेकर सीमावर्ती चौकियों तक, जहां कहीं भी देश पुकारेगा, ये अधिकारी अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहेंगे। संकल्प भारतीय सैन्य अकादमी ने देश को अनेक महान सैन्य नेता दिए हैं। यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक अधिकारियों ने 1947, 1962, 1965, 1971 तथा कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया है और असंख्य अधिकारियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमरता प्राप्त की। उनकी गौरव गाथाएं आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। जिनके इरादों में हिमालय जैसी ऊंचाई होती है, वही भारत मां की असली तरुणाई होती है।
2: जी हां कंचन, इस समय हम देख पा रहे हैं जो परेड है वो निशान लेकर के अपने नियत जगह पर आ चुकी है। परेड की सलामी की अब तैयारी होगी। इस समय आगमन होगा डेप्यूटी कमांडेंट का और कमांडेंट इस समय जो भारतीय सैन्य अकादमी के हैं उनका आगमन होगा। इसके बाद आज की जो मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो आज की परेड की रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले की बात करें तो देश के चार राष्ट्रपति इस समय रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में इस समारोह को अनुग्रहित कर चुके हैं। चौथी हमारी इस समय देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। इससे पहले 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम इस परेड को रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर अनुग्रहित कर चुके हैं। 2011 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2021 में श्री रामनाथ कोविंद जी इस समारोह को अनुग्रहित कर चुके हैं। और कंचन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर खुद रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर इस समारोह को अनुग्रहित करे तो जितने भी जेंटलमैन कैडेट हैं उनका जो जोश है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल संकल्प, और वास्तव में आज की पासिंग आउट परेड कई मायनों में विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस साल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार करेंगे संकल्प।
2: और इस समय आगमन हो चुका है विशिष्ट अतिथियों का। आइए ले चलते हैं आपको सीधे समारोह स्थल पर।
3: देवियों और सज्जनों, मेजर जनरल सचिन मलिक युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक भारतीय सैन्य अकादमी।

0: परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी।
1: भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र
2: कंचन, इस समय उप समादेशक का आगमन तो हो चुका है, लेकिन अब भारतीय सैन्य अकादमी के जो समादेशक हैं, कमांडेंट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह, वो समारोह स्थल पर आने जा रहे हैं। समारोह स्थल पर हमेशा ही वो नियमित तौर पर पारंपरिक रूप से पहुंचते हैं और उनके बाद जो मुख्य अतिथि हैं उनका आगमन होता है, लेकिन कमांडेंट की जो भूमिका होती है भारतीय सैन्य,
3: बिल्कुल संकल्प, वो बहुत अहम होते हैं संकल्प। और बताना चाहूंगी कि किसी भी सैन्य अकादमी प्रशिक्षण संस्थान या संगठन में कमांडेंट का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला होता है संकल्प। कमांडेंट संस्थान का प्रमुख होता है, जो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, अनुशासन, समग्र विकास की देखरेख करता है। उसकी भूमिका केवल एक प्रशासक ही नहीं होती, बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और नेतृत्वकर्ता की भी होती है। और पासिंग आउट परेड जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर कमांडेंट की भूमिका और भी विशेष हो जाती है। वो सुनिश्चित करता है कि कैडेट्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त हो, उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित हो। कमांडेंट प्रशिक्षण के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखता है संकल्प, और ये सुनिश्चित भी करता है कि कैडेट्स शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। कमांडेंट कैडेट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है संकल्प, और अपने अनुभव, मार्गदर्शन और नेतृत्व के माध्यम से वे सभी कैडेट्स में आत्मविश्वास, साहस और कर्तव्य निष्ठा का विकास करता है संकल्प।
2: कंचन, इस बार हम देख रहे हैं परंपराओं में थोड़ा सा बदलाव है। पिछली बार कमांडेंट आते थे एक बग्गी में, इस बार हम देख रहे हैं जो उप समादेशक हैं और हमारे भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक हैं वो एक काले रंग की कार में अभी समारोह स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं। और हम बात करें ट्रेनिंग की, तो बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग होती है भारतीय सैन्य अकादमी में। विश्व की सबसे प्रसिद्ध अकादमियों में से एक है भारतीय सैन्य अकादमी। जो अनुशासन हम देख पा रहे हैं इस समय जो कैडेट्स हैं उनकी चाल में, उनके खड़े होने के तौर तरीकों में साफ दिखाई दे रहा है। इस समय अपनी अर्धांगिनी के साथ उप समादेशक और समादेशक लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह का आगमन हो चुका है समारोह स्थल पर।
1: देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी।

लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जो कि समादेशक हैं भारतीय सैन्य अकादमी के, उनको सलामी देने के बाद सावधान मुद्रा से अब विश्राम मुद्रा में आ चुकी है पूरी परेड। और अब इंतजार होगा आज की जो मुख्य अतिथि हैं, परेड की रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती

0: द्रौपदी मुर्मू जी का। और ऐतिहासिक रूप से देखें कंचन, तो आज का पल बहुत ही गौरवमयी इसलिए भी है और इतिहास में भी दर्ज होगा, क्योंकि 9 महिला सैन्य अधिकारी मिलेंगी भारतीय सेना को, जिनको परमानेंट कमीशन मिलेगा। और भारतीय सैन्य अकादमी की बात करें तो ये महिला अधिकारियों का पहला बैच होगा।
1: बिल्कुल संकल्प, और इस साल तो कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार करेंगे, और उनमें पास आउट होने वाले जांबाजों में 481 भारतीय कैडेट्स और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स शामिल हैं, और साथ में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अन्य मित्र देशों के कैडेट्स भी आज इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा है संकल्प। और अकादमी के 94 वर्षों के इतिहास में पहली बार, बिल्कुल सही कहा संकल्प, की महिला कैडेट्स का बैच एनडीए से जो प्रशिक्षित है पुरुष कैडेटों के साथ पास आउट होकर भारतीय सेना में स्थायी कमीशन अधिकारी बनेगा। और बताना चाहूंगी कि आज के जो हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, मुख्य अतिथि हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और संकल्प उनका जीवन स्वयं संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल रहा है। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा की कहानी है संकल्प। उन्होंने जीवन में अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, और शायद संकल्प यही कारण है कि आज जब वे इन युवा कैडेट्स को सलामी देंगे ना, तो वे केवल औपचारिक सम्मान नहीं होगा बल्कि संघर्ष, सेवा और राष्ट्रभक्ति को नमन होगा।
0: जी हाँ कंचन, आपने संघर्ष की बात की, तो संघर्ष दिखाई देता है इन कैडेट्स की ट्रेनिंग में भी। बहुत से इस समय सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से भारतीय सेना युवाओं में जागरूकता लाने के लिए अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत बताती रहती है। इस समय बात करें तो ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो कि पिछले दशक से इस 2026 में एक नया बदलाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वहाँ पर सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि युद्ध में अब बहुत बदलाव देखा जा रहा है। तो जितने भी अधिकारी हैं उन्हें बदलते परिवेश में कैसे नेतृत्व किया जाए युद्ध का, और कैसे सर्वोच्च बलिदान की भावना तो रहती ही है लेकिन साथ में दक्षता वो कैसे आए, उस दक्षता के लिए भारतीय सैन्य अकादमी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और हम देख पा रहे हैं कि इस समय एक और विशिष्ट अतिथि का आगमन हो रहा है समारोह स्थल की ओर, और परेड जो है
1: बिल्कुल संकल्प, परेड रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनको देखते हुए। और मैं तो कहूंगी कि कुछ चंद पंक्तियां साझा करना चाहूंगी अपने श्रोताओं के साथ कि ये वर्दियां यूं ही नहीं कंधों पर सजती हैं, इनके पीछे अनगिनत रातों की तपस्या होती है। कोई घर छोड़ता है, कोई घर छोड़ता है, कोई माँ की गोद, कोई अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों में मिला देता है, तभी कहीं जाकर सीमा पर खड़ा एक सैनिक जन्म लेता है, जो तूफानों से टकरा जाए, जो मौत को भी चुनौती दे जाए, जो तिरंगे की आन के लिए अपनी हर सांस कुर्बान कर जाए, वो भारत का सैनिक कहलाता है।
0: इस समय अतिथियों का आगमन हो रहा है समारोह स्थल पर, आइए ले चलते हैं आपको समारोह स्थल पर।

इस समय परेड विश्राम की मुद्रा में है और कंचन हम देख पा रहे हैं कि जो चैटवुड ड्रिल स्क्वायर है जो लगभग काले रंग का है उसमें ज़मीन पर नमी दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन पहले कमांडेंट्स परेड में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन इस बात की बड़ी चर्चा रही कि जो हमारे भावी सैन्य अधिकारी हैं वो उसी मुस्तैदी के साथ उस परेड को

0: उन्हें पूरा किया और उसी मुस्तैदी के साथ पूरी मूसलाधार बारिश में वैसे ही खड़े रहे जैसे कि आज ये परेड चल रही है। आज भी हम देख पा रहे हैं तो मौसम न बहुत ज़्यादा गर्म है और न बहुत ज़्यादा ठंडा है, मौसम में नमी है। और लेकिन जितने भी वहाँ पर अभिभावक हैं उनके अंदर बड़ा जोश है, उस वजह से मौसम में एक अलग प्रकार की गर्मी है, जोश है। और आपने बात की संघर्ष की, लोग अपना घर छोड़ करके आते हैं, खासकर अगर बात की जाए तो वो युवा जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आईएमए में आते हैं, बहुत ही कम उम्र में अपने घर को छोड़ते हैं, एक बड़े एग्ज़ाम को दे करके उसको क्वालिफाई करके वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं और फिर भारतीय सैन्य अकादमी में आते हैं। आज वैसे युवा भी पास आउट होंगे इस परेड में।
1: और संकल्प, कई तो ऐसे जाबाज हैं, कैडेट्स हैं, साझा करना चाहूंगी जो कि फोर जनरेशन लेगेसी को पिरोए हुए हैं। बात
0: कंचन, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, इस समय आगमन हो चुका है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो कि आज की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परेड को अनुग्रहित करेंगे रिव्यूइंग ऑफिसर की के रूप में। और इस समय आगमन हो रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, we now awaiting the arrival of Lieutenant General Gurmeet Singh, Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vishish Seva Medal, Governor, State of Uttarakhand.
0: Mukhyamantri ke baad aagman hoga Governor Lieutenant General Gurmeet Singh ka, wo bhi aaj is samaroh ko anugrahit karenge aur उसी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं हमारे जेंटलमैन कैडेट्स भी।
3: एकेडमी देहरादून, कमीशन्ड इनटू द असम रेजिमेंट, ही सर्व्ड द नेशन विथ डिस्टिंक्शन फॉर नियरली फोर डेकेड्स। ड्यूरिंग हिज इलस्ट्रियस करियर ही हेल्ड सेवरल की अपॉइंटमेंट्स, इंक्लूडिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल एट आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड कोर कमांडर ऑफ द 15th कोर इन जम्मू एंड कश्मीर। His service includes operational tenures along the line of actual control with China, the line of control with Pakistan, and multiple postings in Jammu and Kashmir. He superannuated in 2016 as the Deputy Chief of Army Staff. A scholar as well as a soldier, he holds two MPhil degrees and has been a research fellow at the Institute of Chinese Studies, Jawaharlal Nehru University. For his exceptional service, he has been honored with four presidential awards: the Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, and Vishish Seva Medal. You are requested to rise when the band plays the tune of national anthem. Deviyon aur sajno, Rashtragan ki dhun par aap sabhi se anurodh hai ki aap sab khade ho jayein. Ladies and gentlemen, Lieutenant General Gurmeet Singh, Governor, State of Uttarakhand.

0: उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के आगमन के बाद राष्ट्रगान हुआ है और सभी सावधान मुद्रा में खड़े हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो चैटवुड बिल्डिंग है, चैटवुड भवन के ऊपर 5 सैन्यकर्मी सफेद वर्दी में झंडे के बिल्कुल पीछे खड़े हैं
1: और बिल्कुल संकल्प सावधान की मुद्रा में खड़े ये कैडेट्स के चेहरे पे गर्व, अनुशासन और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। संकल्प उनकी आंखों में मातृभूमि के प्रति सम्मान और राष्ट्र सेवा का दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है। राष्ट्रगान की प्रत्येक पंक्ति मानो देश के वीरों के बलिदान, संघर्ष और गौरवशाली इतिहास की याद दिला रही है। संकल्प
0: जी कंचन, और इस समय अब आगमन होना है मुख्य अतिथि का, आज की परेड की जो रिव्यूइंग ऑफिसर हैं हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, और उसी इंतज़ार में हैं आज के जेंटलमैन कैडेट्स जिन्हें आज अंतिम पक के बाद उन्हें सेना में एक युवा अधिकारी का पद मिलेगा, कमीशन्ड ऑफिसर बन जाएंगे। और पिपिंग सेरेमनी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आज इस समारोह का, जहां पर अभिभावक इंतज़ार करते हैं कि कब वो अपने पुत्र या पुत्रियों के जो कंधे के सितारे हैं उन्हें देख पाएंगे, उन्हें अधिकारी के रूप में देख पाएंगे।
1: बिल्कुल संकल्प, और IMA में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, द डे यू वेयर स्टार्स योर लाइफ चेंजेस फॉर एवर। जिस दिन पासिंग आउट परेड होती है उस दिन तक कैडेट एक प्रशिक्षु होता है, लेकिन अंतिम पग पार करते ही वो भारतीय सेना का कमीशन्ड अधिकारी बन जाता है।
0: आइए आपको ले चलते हैं समारोह स्थल पर चल रही गतिविधियों की ओर।
2: आई एम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट from August 2002 to May 2004. In all her roles in public service, Srimati Murmu introduced innovative initiatives and people-oriented measures, uplifting the most neglected sections of society, gender justice, accessibility and efficiency of public services, sustainable environmental management and stewardship, and an inclusive, empathetic and transparent approach to governance have remained the hallmarks of her vision of public service. For her services as a legislator, she was awarded the Pandit Neelkanth Das Best Legislator Award in 2007 by the Odisha Legislative Assembly. Srimati Murmu was appointed the Governor of Jharkhand on 18th May 2015. She was the first woman tribal governor of a tribal majority state, and she received wide appreciation for her adherence to democratic ethos. During her tenure as governor, she also focused on improving quality of education in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and undertook various measures to promote girls' education. Srimati Murmu was associated with several tribal, socio-educational and cultural organizations of Odisha. She is an avid reader and has keen interest in spirituality. As President of India, Srimati Draupadi Murmu has traveled widely across the country. She has also traveled abroad to enhance India's global outreach and footprint. She visited the United Kingdom in 2022 and the Vatican City in April 2025 and has also paid state visits to Suriname and Serbia in 2023. Mauritius, Fiji, New Zealand, Timor-Leste, Algeria, Mauritania, Malawi in 2024, Portugal, Slovakia, Angola and Botswana in 2025. During these visits, she has made special efforts to

0: चार घोड़ों वाली पटियाला कोच, जिसे पटियाला राज्य की धरोहर एक रूप में तत्कालीन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सैन्य अकादमी को उपहार में दिया था, पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर्स और अकादमी में आने वाले अतिथियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पटियाला कोच अपने आप में एक कला का एक बेहतरीन नमूना है और अब आप निरीक्षण अधिकारी को शौर्य मार्ग से पटियाला कोच में अपने बाएं तरफ से आते हुए देख सकते हैं।
1: भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन इस समय पटियाला कोच पर हो रहा है और चार घोड़ों वाली ये बग्गी इस समय समारोह स्थल की ओर पहुंच रही है। चार काले घोड़े हैं और साथ में हैं प्रेसिडेंट गार्ड्स, जो अपने आप में कंचन एक अलग रेजिमेंट ही है, जिसका मुख्यालय भी देहरादून में है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन देहरादून में हुआ है, वो राष्ट्रपति भवन में भी गई हैं, जो कि देहरादून में राष्ट्रपति का एक आधिकारिक आवास है। और नीले रंग के दरवाजे हैं इस बग्गी में और साथ में सैन्य वर्दी के अलावा सफारी में लाल रंग की पगड़ी पहने पीछे अधिकारी खड़े हैं, जो कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति को। सबसे आगे हैं प्रेसिडेंट गार्ड्स, जो कि लाल रंग की वर्दी में हैं और भूरे रंग के घोड़ों पर सवार हैं। और बग्गी के ठीक पीछे चार सैन्य अधिकारी हैं प्रेसिडेंट गार्ड्स के, जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे एक सिक्योरिटी व्हीकल है, सफ़ेद रंग की गाड़ी है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रपति के साथ चलती है।
2: बिल्कुल संकल्प, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताएं तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारे देश के और भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, समावेशिता और महिला सशक्तिकरण की माननीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रेरणादायक मिसाल हैं।
1: जी, और समारोह स्थल पर इस समय आगमन हो चुका है रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर राष्ट्रपति जी का। और इस समय जो द्वार है, मुख्य द्वार, वहां से राष्ट्रपति जी का आगमन होगा और जितने भी अधिकारी वहां मौजूद हैं वो एकदम सावधान की मुद्रा में आ चुके हैं। इंतजार है कि मुख्य अतिथि आज के इस परेड को अनुग्रहित करें।
0: और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।

इस समय राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि की का आगमन हो चुका है और परेड के जो कमांडर हैं वो मुख्य अतिथि की ओर बढ़ रहे हैं।

से अनुमति लेने कि परेड का जो निरीक्षण है वो आकर के मुख्य अतिथि करें। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ये अनुमति ली जाएगी। इस समय ठीक सामने हैं परेड कमांडर अनुमति लेने के लिए। राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमति दी गई है और अब राष्ट्रपति द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा।

0: इस समय परेड निरीक्षण के लिए एक जिप्सी पर राष्ट्रपति महोदया सवार हो चुकी हैं और उनके साथ समादेशक सवार हो चुके हैं जो परेड के निरीक्षण में उनके साथ रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह इस समय राष्ट्रपति जी के साथ हैं और एक सीनियर अंडर ऑफिसर भी उनके साथ हैं। परेड का निरीक्षण इस समय किया जा रहा है। और कंचन, एक ज़रूरी बात है, जो भारतीय सैन्य अकादमी का जो निशान है, जो झंडा है, जिसे हम प्रतीक मानते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा चैटवुड भवन है। लाल रंग का चैटवुड भवन और उसकी छत स्टील ग्रे रंग की ही दिखाई देती है और वही झलक आपको परेड का, जो आज के परेड का निशान है, उसमें भी दिखाई देता है। और उसमें जो प्रतीक है लाल रंग, वो बलिदान का प्रतीक है और शौर्य और वीरता का प्रतीक है स्टील ग्रे कलर।
1: And wisdom. The colors of Indian Military Academy are steel grey and blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are three military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band, the Army Air Defense Center Band, and the Sikh Light Infantry Regimental Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Harpal Singh.

निरीक्षण के दौरान सभी टुकड़ियों के नेतृत्वकर्ता सलामी दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को, और हम देख पा रहे हैं कि चैटवुड बिल्डिंग के ठीक पीछे, परेड के ठीक पीछे और चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने एक अधिकारी घोड़े पर सवार हैं, जो कि माननीय राष्ट्रपति की गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं उनकी निरीक्षण में। और उनका जो चेहरा है वो एकदम सावधान मुद्रा में राष्ट्रपति जी की ओर है, और इस तरीके से परेड का निरीक्षण अब लगभग समाप्ति की ओर है। और अंतिम पग जो भवन का हिस्सा है जहां पर अंतिम पग लिखा है, वहां पर परेड पहुंच चुकी है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का जब निरीक्षण हुआ है, वहां पर एक बड़ी सी दीवार पर विजडम और वैलर लिखा हुआ है, जो कि उन सभी देशवासियों के साथ, जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये एक प्रतीक है कि भविष्य में आपको सेना का नेतृत्व कैसे करना है।

0: Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, on his grey charger, Zoravar. The Academy adjutant, astride his charger, is a symbol of authority and discipline. Rashtriya Indian Military College, Dehradun, where Rashtriya Raksha Akademi Khadakwasla ke cadet reh chuke, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, June 2011 mein, Bharatiya Sainya Akademi se President Silver Medal ke saath Gadwal Rifles mein commission hue. Young Officers Course mein, Best Student were Defence Services Staff College Wellington mein Scudder Medal se sammanit, ve Indian Military Training Team, IMTRAT, Bhutan mein prashikshak bhi reh chuke hain. Inhe Sena Divas Parade 2013 mein, Best Marching Contingent ki agwai, wa Vishwa ki sabse unchi Frozen Lake Marathon mein, shamil hone ke liye Guinness World Record mein, naam hone ka gaurav prapt hai. Battalion Tactical Course Singapore mein, bhaag lene wale kuch chuninda officers mein se ek, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, sagn uchai wale kshetr mein, line of actual control ke saath, ek infantry brigade mein, General Staff Officer, Operations Grade 1, ke roop mein bhi karirat rahe hain. 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारत सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया.
1: संकल्प चेटफुट भवन के ठीक सामने फैला हुआ है ये ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर, जहां इस समय जेंटलमैन कैडेट्स बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हुए हैं. यहीं पर पासिंग आउट परेड आयोजित होती है. श्रोताओं, अगर हम दिशाओं की यदि बात करें तो चेटफुट भवन के ठीक सामने यानी उत्तर दिशा की ओर विशाल ड्रिल स्क्वायर दिखाई देता है और यहीं पे कैडेट्स अपनी अंतिम परेड देते हैं. ड्रिल स्क्वायर के सामने दर्शक दीर्घाएं बनाई गई हैं, जहां देश भर से आए माता पिता, परिवारजन और अतिथि बैठे हुए हैं. पूर्व दिशा की ओर हरियाली और अकादमी के प्रशासनिक परिसर दिखाई देते हैं, जबकि पश्चिम दिशा में IMA का विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र फैला हुआ है. दक्षिण की ओर मसूरी की पहाड़ियां इस पूरे परिसर को एक अद्भुत प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है. श्रोताओं, चेटफुट भवन के भीतर ही एक प्रसिद्ध चेटफुट मोटो भी अंकित है, जो हर कैडेट के जीवन का मूल मंत्र बन जाता है. देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले, फिर उन जवानों का सम्मान और सुख जिनका नेतृत्व आप करते हैं, और सबसे अंत में आपका स्वयं का आराम और सुरक्षा. और शायद यही कारण है संकल्प की IMA केवल सैनिक नहीं बनाता, बल्कि ऐसे नेता तैयार करता है जो अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से.
2: जी हाँ कंचन, इस समय राष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है अपने नियत स्थान पर. परेड का निरीक्षण अब समाप्त हो चुका है और परेड कमांडर अपनी नियत जगह पर पहुंच चुके हैं, और अब शुरुआत होनी है उस पल की जब गौरव के साथ, अनुशासन के साथ परेड राष्ट्रपति जी के सामने से गुजरेगी.

0: आधिकारिक रूप से इस समय परेड का मार्च शुरू हो चुका है।
1: और इस समय श्रोताओं, परेड मैदान में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कैडेट्स की टुकड़ियां अपनी अपनी पोजीशन जो लिए हुए थे वो आगे की ओर मार्च पास कर रही हैं। उनकी एक जैसी चाल, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा आत्मविश्वास, ये दृश्य अनुशासन की सबसे सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। श्रोताओं, सफेद
2: नौजवानों का
1: जमाते जूते आगे बढ़ते बैंड की गोष्ठी, पूरा वातावरण मानो कह रहा है सुरक्षित
2: प्रमाणित करता है।
1: जयपुर भवन के सामने स्थित
2: सुरक्षित है।
1: जनता हाथों की टुकड़ियां शानदार तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की
2: तिरंगे का सर ऊंचा रहेगा।
1: राष्ट्रभक्ति
2: इनके कदमों की आवाज
1: लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्या अद्भुत अनुशासन है ना संकल्प। हर कदम जैसा, हर चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ, हर आंख में बस एक ही सपना,
3: सेवा
1: और जेंटलमैन के लिए की सदी हुई कदम दाल से जूझ उठा है। उनकी जान में जो आत्मविश्वास है ना संकल्प, ये वर्षों की कठोर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की पहचान है। सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या,
3: कठिन
1: शारीरिक अभ्यास, हर परिस्थिति बनाए रखना,
3: आर्गुमेंट विद द स्काई एंड सम इन द अनचार्टेड स्पेस
1: दे रहा है संकल्प।
0: जी हाँ कंचन, इस समय 16 कंपनियों में बटी हुई ये परेड राष्ट्रपति महोदया के ठीक सामने से गुजरने वाली है और हम देख रहे हैं कि भारतीय सैन्य अकादमी के निशान के अलावा एक लाल रंग का निशान है जो कि परेड का निशान है, वो इस समय सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे चलने वाली टुकड़ी के साथ चल रहा है और राष्ट्रपति महोदया के ठीक सामने आ चुका है और परेड कमांडर इस समय सधी हुई चाल के साथ राष्ट्रपति महोदया के सामने से गुजर रहे हैं। परेड अपनी नियत जगह पर रहे इसके रेखांकन के लिए लाल रंग के छोटे छोटे झंडे ड्रिल स्क्वायर पर लगाए गए हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ये ड्रिल स्क्वायर पर जब परेड के कदम की थाप पड़ती है तो करोड़ों दिल जो इस परेड को देख रहे हैं, उनके दिल, भारतीयों के दिल, पूरे विश्व में जो भी भारतीय सेना से प्यार करते हैं, गर्व से धड़कने लगते हैं।
1: बिल्कुल संकल्प। और अब कैडेट्स की टुकड़ियां राष्ट्रपति मंच के सामने से गुजर रही हैं और उनकी निगाहें सीधी और कदम सदे हुए हैं और सलामी का अंदाज अत्यंत प्रभावशाली भी रहेगा। और ये केवल मार्च नहीं बल्कि भारतीय सेना की गरिमा और परंपरा का प्रदर्शन है संकल्प।
4: बाय सीनियर अंडर ऑफिसर अनुराग चौहान। The second contingent is being led by Senior Under Officer Shivansh. The third contingent is being led by Senior Under Officer Sanjay Singh. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colors, is being led by Senior Under Officer Ayush Dubey. And the escorts are Company Sergeant Major Nikul Singh and Company Sergeant Major Aman Verma. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshay Thakur. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Akshit Katoch. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Amandeep Singh. Leading the last contingent is Senior Under Officer Tejas Bhatt. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swaroop Gupta.

परेड राष्ट्रपति महोदया के सामने से गुजर चुकी है और लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जो कि आरआईएमसी से पढ़े हुए हैं और इस समय गढ़वाल राइफल्स में इस समय कार्यरत हैं और वो इस समय भारतीय सैन्य अकादमी में एडजुटेंट भी हैं और इस समय सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हैं जो कि अपनी नियत स्थान पर इस समय परेड पहुंच रही है और लाल रंग का जो निशान है वो भी परेड के साथ चलता हुआ जा रहा है और इसके बाद सभी को इंतज़ार है आज क्या संबोधन देंगी रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

0: देवियों और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्धकाल हो या शांतिकाल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना भी करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान यही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक।
1: श्रोताओं, वास्तव में आज का ये दिन सचमुच गौरव और खुशी का दिन है, केवल ऑफिसर कैडेट्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और अकादमी के प्रशिक्षकों के लिए भी ये गर्व का दिवस है, क्योंकि इस अवसर पर पूरा होता है एक संकल्प और शुरू होता है अगला, उतना ही महान संकल्प, उतना ही दुर्गम लक्ष्य। समय ने करवट ली है और स्थितियां भी बदली हैं, पर आज भी एक व्यक्ति का अपनी सेना पर विश्वास पहले की तरह ही अटूट है। वो जानता है कि राष्ट्र के प्रहरी उस पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय सैन्य अकादमी का परम उद्देश्य है दिलेर और वीर अफसर तैयार करना, जो दुश्मन की गोलियों के बीच अपने जवानों का नेतृत्व कर सके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर सके। संकल्प आयम में वास्तव में एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों के युवक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला व आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट सैन्य प्रशिक्षण हेतु प्रवेश करते हैं और देश की रक्षा, उसका सम्मान इनके लिए सर्वोपरि होता है और हर कदम पर एक नए आयाम को छूने का सपना एक राष्ट्र का सम्मान निर्भर करता है। इनके चेहरे पर झलकता तेज, आंखों में भरा आत्मविश्वास और सामने युद्ध कौशल की धार देने वाले अपनी मातृ संस्था के प्रशिक्षकों के गर्व से उठे ये सिर हर एक ऑफिसर कैडेट के मन में कर्तव्य निष्ठा का भाव उजागर करते हैं। संकल्प
2: जी हाँ कंचन, आपने जिस भाव से भारतीय सैन्य अकादमी की परंपराओं को वर्णित किया है, निश्चित ही हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे होंगे कि भारतीय सैन्य अकादमी में होने का अवसर, वहाँ से पास आउट होने का अवसर, ये कितना गौरवान्वित करता है। और इस समय हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता, जो कि एडजुटेंट हैं भारतीय सैन्य अकादमी के, वो परेड के पीछे से अपनी नियत जगह पर जा चुके हैं और अब आगे के लिए आपको ले चलते हैं समारोह स्थल पर।

अब से कुछ ही देर में परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और समीक्षा अधिकारी के संबोधन के लिए परेड समीक्षा क्रम में फिर से तैयार होकर आगे बढ़ेगी।

मार्च के बाद परेड अपने नियत स्थान पर लग चुकी है और ये जो प्रक्रिया होती है कंचन बैंड की धुन पर होती है, जिससे अनुशासन के साथ परेड अपने नियत स्थान पर आ जाए। इस समारोह में जो अगला पड़ाव होता है वो है पुरस्कार वितरण का, और सबसे अहम, जिसकी सबसे चर्चा रहती है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसको मिलेगा, और इसके अलावा कई मेडल्स भी दिए जाते हैं। ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस रहता है इंडियन मिलिट्री अकादमी में, उसके लिए भी पुरस्कृत किया जाता है। रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर और आज की मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा ये पुरस्कार आज वितरित किए जाएंगे, और अपने नियत स्थान पर इस समय खड़ी हो चुकी हैं माननीय राष्ट्रपति। वो तैयार हैं पुरस्कार वितरण समारोह को आगे ले जाने के लिए। इसके बाद उनका संबोधन होगा और बैंड की धुन से पूरा वातावरण गूंज रहा है समारोह स्थल का।

देवियों और सज्जनों, अब पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रस्तुति समारोह आयोजित किया जाएगा। स्प्रिंग टर्म 2026 के पुरस्कार विजेता हैं। सूट ऑफ ऑनर पासिंग आउट कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है और गोल्ड मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इन दोनों के विजेता है अकेडमी कैडेट एडजुटेंट विशाल कुमार। सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता है अकेडमी अंडर ऑफिसर प्रिंस राज। ब्रॉन्ज मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता है सीनियर अंडर ऑफिसर तेजस भट्ट। टेक्निकल एंट्री स्कीम सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स की टेक्निकल एंट्री में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता है विंग कैडेट कैप्टन करम पांडे। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के टेक्निकल ग्रेजुएट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं ऑफिसर कैडेट ऋषभ मिश्रा। पासिंग आउट कोर्स के स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्पेशल कमीशन ऑफिसर सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं ऑफिसर कैडेट बोधराज थापा। मित्र देशों के अफसर कैडेटों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ अफसर कैडेट को मेडल प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं जूनियर अंडर ऑफिसर जैफ सदीद अलवी बांग्लादेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर स्प्रिंग टर्म 2026 के चैंपियन कंपनी को प्रदान किया जाएगा। इस सत्र के चैंपियन कंपनी है इंफाल कंपनी।

0: कंचन, बड़े गर्व की बात होती है जब आप इस अकादमी से पास आउट तो हो ही रहे हैं, अंतिम पग के बाद आप सेना में अधिकारी बन जाते हैं। इसके साथ
1: यदि
0: ही
1: आप अपना ध्यान
0: अगर
1: अपनी
0: आप
1: बाईं ओर ले जाते
0: बिना
1: हैं
0: किसी
1: तो
0: भी
1: आप
0: मेडल को
1: देखेंगे
0: लेकर
1: कि
0: के पास आउट हो
1: चीफ
0: रहे हैं,
1: ऑफ आर्मी
0: तो
1: स्टाफ
0: न सिर्फ
1: बैनर
0: वो
1: अब जूनियर अंडर ऑफिसर देव
0: आपके
1: प्रताप
0: लिए एक
1: सिंह
0: गौरव
1: द्वारा
0: क्षण होता
1: अकादमी
0: है,
1: को
0: बल्कि
1: वापस किया जा रहा है।
0: एक ऐतिहासिक
1: इसे
0: पल भी
1: स्प्रिंग
0: होता
1: टर्म
0: है, नासा दर्द हो
1: 2026
0: जाता
1: की
0: है कि
1: चैंपियन
0: जब भी
1: कंपनी
0: आपका
1: को
0: नाम
1: प्रस्तुत
0: लिया जाता है,
1: किया जाएगा।
0: पोस्टिंग कहीं भी होती है, तो आपकी उपलब्धियों में उन मेडल्स को गिनाया जाता है और सबसे शुरुआती क्षणों में इस मेडल की चर्चा होती है।
2: बिल्कुल संकल्प, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने का एहसास पासिंग आउट परेड के भव्य और गौरवशाली अवसर पर बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में, क्योंकि किसी भी कैडेट के लिए जीवन के सबसे यादगार और गौरवपूर्ण क्षणों में से ये एक होता है, क्योंकि ये केवल एक पुरस्कार नहीं, संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व, अनुशासन, समर्पण, साहस और बेहद परिश्रम का ये एक सर्वोच्च सम्मान है। श्रोताओं, जब परेड मैदान में विजेता का नाम पुकारा जाता है ना और उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है, तो उस क्षण उसके वर्षों के कठिन प्रशिक्षण, त्याग, संघर्ष और अनगिनत प्रयासों की यादें आंखों के सामने तैरने लगती हैं, हृदय गर्व से भर उठता है और मन में ये संतोष होता है संकल्प की कितनी मेहनत उस कैडेट ने की होगी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए।
0: जी हाँ कंचन, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर हैं वहाँ से इम्फाल कंपनी से एक युवा अधिकारी आए और उन्होंने उस बैनर को रिसीव किया है। साथ में हम देख पा रहे हैं फॉर्मेशन में आ चुके हैं वो अधिकारी जिन्हें अब पुरस्कृत किया जाएगा राष्ट्रपति महोदया द्वारा। अधिकारियों ने अपनी पोजीशन ले ली है और इस समय वो सलामी दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति को। सलामी देने का तरीका भी बड़ा अनोखा है।
2: बिल्कुल,
0: भारतीय सैन्य अकादमी में जो आपकी तलवार है उसे चूम करके आप सलामी देते हैं जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर हैं उनको।

0: हर युवा का सपना होता है कंचन कि वो भारतीय सैन्य अकादमी में आए और ऑलिव ग्रीन कलर की जो वर्दी होती है उसे पहने। अपने आप में एक ब्रांड है इस समय ऑलिव ग्रीन कलर की जो वर्दी है, और इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर को प्राप्त करने के लिए युवा अधिकारी को फॉर्मेशन में लाया जा रहा है। उस बैनर को थामने के लिए उनको एक विशेष प्रकार का सफेद पट्टा लगाया जाता है। वो प्रक्रिया इस समय चल रही है और प्रक्रिया अब ये समाप्त हो चुकी है और अब तैयारियां हो रही हैं कि वो क्षण आए जब राष्ट्रपति महोदया खुद अपने हाथों से पुरस्कृत करें युवा अधिकारियों को।
1: बिल्कुल संकल्प, आपने भी बात करी ऑलिव ग्रीन वर्दी की, तो आजकल के युवाओं का भी मैं कहूं कि बहुत अधिक रुझान हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन गर्व की बात है कि सैन्य भूमि और वीरों की भूमि के नाम से भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश को जाना जाता है। और जब कोई सैनिक या अधिकारी ऑलिव ग्रीन की वर्दी धारण करता है तो पूरे राष्ट्र के सम्मान और विश्वास का वो प्रतिनिधित्व करता है। और इस वर्दी में ना संकल्प, देश के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देने का जो संकल्प है और सीमाओं की रक्षा का दायित्व है और करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा का जो भरोसा होता है वो इस ऑलिव ग्रीन वर्दी में निहित होता है। और मैं कहूंगी कि जितने अनगिनत वीर गाथाएं हैं, शौर्यपूर्ण अभियान और सैनिकों के जो अदम्य साहस का ये जो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म है ये साक्षी रहा है। और ये वर्दी हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है श्रोताओं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटते।
0: इस समय राष्ट्रपति महोदया मंच से उतरकर उन युवा अधिकारियों के पास जा रही हैं जिन्हें इस समय पुरस्कृत किया जाना है। साथ में हैं लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह, जो कि कमांडेंट हैं भारतीय सैन्य अकादमी के।
2: Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar.

0: माननीय राष्ट्रपति का संबोधन अभी जेंटलमैन कैडेट्स को दिया गया और कंचन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही राष्ट्रपति महोदया ने कि इस समय ये तो गौरवान्वित करने वाली बात है ही कि 9 महिला सैन्य अधिकारी परमानेंट कमीशन लेकर के भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हो रही हैं आज। उसके साथ ही जो बदलता हुआ परिवेश है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है अब जो युद्ध की परिस्थितियों का, वो बड़ा ही चैलेंजिंग है और उसके अनुसार ढलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसके बाद अब परेड बढ़ेगी अंतिम पग की ओर, जहां से ये अब मान लिया जाएगा कि भारत को आज लगभग 500 से अधिक नए सैन्य अधिकारी मिले हैं जो कि आगे जाकर के भारतीय सेना की बागडोर संभालेंगे। इनमें से बहुत से लोग हो सकता है भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी भी बने।
1: बिल्कुल संकल्प, अभी आपने बात की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रेरणादायी उद्बोधन की, तो वास्तव में उनके विचारों ने नहीं केवल आज पासिंग आउट परेड में सम्मिलित कैडेट्स का उत्साह वर्धन किया है

0: बल्कि राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा, नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति उनके संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाया है। उनके शब्दों में अनुभव की गहराई साफ देखने को मिलती है और साथ में मातृत्व जो स्नेह है और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट विश्वास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है संकल्प। और वाकई में आज के इस गौरवशाली अवसर पर उपस्थित प्रत्येक कैडेट स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि उसे भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति के प्रेरक विचारों को प्रत्यक्ष रूप से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और निसंदेह संकल्प, उनके ये प्रेरणास्पद शब्द कैडेट्स के जीवन में सदैव मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेंगे। संकल्प,
1: भारतीय सैन्य अकादमी का निशान इस समय राष्ट्रपति की ओर गया और उनसे अनुमति ली गई कि अब परेड राष्ट्रपति जी से अब विदाई ले। और इसी के साथ जो निशान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर जो है, वो भी भारतीय सैन्य अकादमी के निशान के साथ अब वापस अपने नियत स्थान पर जा रहा है। और अब इसके बाद शुरुआत होगी परेड की। अब मार्च किया जाएगा अंतिम पक की ओर और उसके बाद जो इसके बाद का जो समारोह है उसमें औपचारिकताओं के साथ बहुत ही अनौपचारिकताएं भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी की परंपराओं के अनुसार कई लोग पुशअप्स करते हैं, कई अधिकारी, ये खुशी का पल होता है जो जताया जाता है। बहुत से दोस्त बनते हैं इस सैन्य अकादमी में और बहुत सी यादें रह जाती हैं उस खुशी को जताने के लिए। और आज एक कमीशन्ड अधिकारी बनने की खुशी को जताने के लिए, पिछली बार जो भारतीय सेना के जनरल थे जनरल द्विवेदी, उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी के जो ऑफिसर्स थे जो कमीशन्ड हुए थे उनके साथ पुशअप किए थे। और इस बार इसके बाद खेत्रपाल हॉल में पिपिंग सेरेमनी होगी, जहां पर जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के कंधों पर वो सितारे सजाएंगे जिन सितारों को लेकर के उन्हें भारतीय सेना का सपना पूरा करना है और इस देश का भी सपना पूरा करना है।
0: बिल्कुल संकल्प, और इस समारोह में जो अधिकारी के कंधों पर जो रैंक के सितारे लगाए जाते हैं, ये सिर्फ धातु के ही प्रतीक नहीं होते, बल्कि इनमें वर्षों का जो इनका स्ट्रगल है, जो डिसिप्लिन है और जो समर्पण है, त्याग है, ये सब उसमें समाहित होता है। और कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्राउड मोमेंट वो होता होगा जब माता पिता, गुरुजन और वरिष्ठ अधिकारी अपने हाथों से ये सितारे लगाते हैं और वो क्षण वास्तव में खुशी और भावनाओं से भर उठता है। पिपिंग केवल श्रोताओं एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक युवा कैडेट के अधिकारी बनने की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक होता है। इसके साथ ही उसके कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा की नई जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। और उस समय जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके आंखों में गर्व के आंसू, प्रशिक्षकों के चेहरे पर संतोष और नवनियुक्त अधिकारी के हृदय में देश सेवा का दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। संकल्प,
1: सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हैं राष्ट्रपति के संबोधन के बाद।

0: राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन अब होता नजर आ रहा है और इसके बाद परेड अंतिम पक्की ओर जाएगी और वहां से बहुत सी पारंपरिक जो प्रक्रियाएं हैं जो भारतीय सैन्य अकादमी की परंपराओं में आ चुकी हैं वो उसकी शुरुआत होगी और अभिभावक अपने जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं बच्चे हैं उनके साथ बहुत सी फोटोज़ आज के अखबारों में आएंगी कंचन। और अब मैं देख पा रहा हूं कि परेड फॉर्मेशन ले रही है बैंड की धुन पर और परेड अब अंतिम पक की ओर बढ़ेगी। कंचन बात करें तो अब कई राजकीय जितने भी समारोह हैं उनमें हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको भी औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है राष्ट्रगान के ठीक पहले। उसी परंपरा अनुसार आज कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई और कार्यक्रम का औपचारिक समापन भी हुआ है।
1: बिल्कुल संकल्प और माननीय राष्ट्रपति के प्रेरणादायी उद्बोधन, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन और गर्वित अभिभावकों की उपस्थिति ने आज के समारोह को और भी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना दिया। श्रोताओं, आज इन युवा अधिकारियों ने केवल एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया बल्कि राष्ट्र सेवा, नेतृत्व, साहस और कर्तव्य निष्ठा के एक नए अध्याय में प्रवेश किया है। जैसे ही सूर्य की स्वर्णिम किरणें परेड मैदान पर बिखर रही थी वैसे ही इन नव नियुक्त अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की आभा भी चारों ओर फैल रही थी। उनके कंधों पर सजे सितारे केवल पद के प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्र के विश्वास, सम्मान और अपेक्षाओं के प्रतीक हैं। आज परेड मैदान से निकले ये कदम केवल आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि इन्होंने भारत के स्वर्णिम भविष्य की ओर एक नया इतिहास रचने का संकल्प लिया है। और कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तलवार हो या पदक, ये केवल उपहार नहीं होते, इनके पीछे संघर्ष, समर्पण और अनगिनत इम्तिहान होते हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब सीधा समारोह स्थल से अब चलते हैं आकाशवाणी स्टूडियो में और जहां पे हमारे साथ मैं और संकल्प बस समापन करने जा रहे हैं। और चलते चलते ये कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है, आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। संकल्प की ओर से और मेरी ओर से आप सभी मुस्कुराते रहें, खुश रहें और गर्वान्वित महसूस करते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रही थी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की भारतीय सैन्य अकादमी यात्रा एवं भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का आंखों देखा हाल। कमेंटेटर थे संकल्प मिश्रा और कंचन नेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किया गया। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाश

0: सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। हम आपको याद दिला दें, नमस्कार देहरादून आप सुन पाएंगे सुबह 8:40 पर। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मन है रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये 13 केंद्र है। सुबह के 8:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, भारतीय सैन्य अकादमी के गौरवशाली इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। जब आज पहली बार पासिंग आउट परेड में अंतिम पंक्ति भरते हुए पहली बार महिला कैडेट पुरुष कैडेटों के साथ मिलकर सैन्य अधिकारी बन गई और इस पल की साक्षी बनी देश की भारतीय सेना अकादमी देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर परेड से 515 कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। इनमें 481 भारतीय जेंटलमैन कैडेट, महिला कैडेट, मित्र देशों के कैडेट भी शामिल रहे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद अगस्त 2022 में भारतीय रक्षा अकादमी के पहले बैच के रूप में महिला कैडेटों ने प्रवेश लिया था और 3 साल के कड़े सैन्य प्रशिक्षण और अकादमिक प्रशिक्षण के बाद इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और इस प्रकार से आगे के प्रशिक्षण के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति, हथियार संचालन और हर प्रकार की गतिविधि में इन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया। श्रोताओं, आज हर क्षेत्र में देश की बेटियां कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी बेटियां नहीं पहुंच रही हैं। हमारी बेटियां सिर्फ देश सेवा का सपना ही नहीं देती, बल्कि वो अपना सपना ही पूरा नहीं करती, बल्कि वो विश्वास देती हैं कि अब देश उनके हाथों में सुरक्षित है। उनका एक ही सपना होता है, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, विपरीत परिस्थितियों में समर्पित रहेंगे हर पल मातृभूमि की सेवा में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब जानते हैं अखबारों की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दून आज IMA के ऐतिहासिक परेड में लेंगी सलामी। सुरक्षा घेरे में राष्ट्रपति निकेतन पहुंची मुर्मू। देवभूमि की हिमालय आवासीय अभिभूत दिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चारधाम में पर्यटन सीजन को देखते हुए पुलिस ने किया यातायात प्लान जारी। निशानेबाज जसपाल राणा नहीं रहे, कार्डिक रप्चर से निधन। 2028 में 82-29 में कर्णप्रयाग पहुंचेगी ट्रेन। दून अस्पताल में अब सप्ताह में 4 दिन चलेगी न्यूरो OPD। दून में बीमार बच्चों की खोज, इलाज का खर्च उठाएगा प्रशासन। दून में फुटबॉल नए नियम सीखेंगे उत्तराखंड की रेफरी और मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर 4200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों में बर्फबारी भी हो सकती है। श्रोताओं, ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों से और जानते हैं कि आज 13 जून 26 क्यों है खास। इतिहास में वर्ष 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना

स्थापना हुई थी। वर्ष 1757 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सिराजउद्दौला से युद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की तरफ कूच किया था। 1888 में अमेरिकी कांग्रेस ने श्रम विभाग का गठन किया था। 1932 में ब्रिटेन ने 72 वर्षों तक स्वेज नहर का नियंत्रण अपने पास रखने के बाद उसे मिस्र को सौंपा था। वर्ष 1940 में देश के महान क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन में फांसी दी गई थी। उन्हें जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद पंजाब के गवर्नर रहे जनरल उडायर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे थे। वर्ष 2002 में अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से खुद को अलग किया था और वर्ष 2006 में नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया। श्रोताओं, ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं, सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज 13 जून है और आज के दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन की कमी के कारण दूसरों से अलग दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में इनकी त्वचा सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। श्रोताओं, इसको लेकर समाज में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण भेदभाव या उपेक्षा का सामना भी करना पड़ता है। श्रोताओं, समाज में एल्बिनिज्म की जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष इसी दिन को इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मनाया जाता है, ताकि इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। श्रोताओं, आइए हम सभी मिलकर समाज की अवधारणा को बदलें और इसके बारे में सही बातों का प्रचार प्रसार करें, ताकि समाज में उनके प्रति सम्मान में सभी के प्रति आदर की भावना रहे। आइए कार्यक्रम में चलते हुए आपको सुनवाते हैं ये अंतिम गीत।

श्रोताओ नमस्कार। देहरादून का आज का अंक बस यहीं तक। अब चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि श्रोताओ मौसम में हो रहे हर पल बदलाव की प्रति आप सभी जागरूक रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार देहरादून।

मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। अभी तेरे

0: ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी। गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, चेहरे पर उदासी आपका हाल बयां करती है, इसलिए उदासी को हमेशा अपने चेहरे से दूर रखें। और वैसे भी उदासी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। ये जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी जो हमें मिली है, वो हंसने गाने के लिए मिली है, गुनगुनाने के लिए मिली है, जिंदगी का आनंद लेने के लिए मिली है। इसलिए हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी देहरादून के साथ।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

ये स्वर थे लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की फिल्म का नाम था बादु बादु मी। गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। जी हाँ श्रोतों, बदलती भागदौड़ वाली इस जीवन शैली में वक्त कितना तेज चलता है, जिसमें लिए हम अपनी बात करें तो अपने लिए किसी को फुर्सत नहीं, बस वक्त भी चला जा रहा है और हम भी वक्त के साथ दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, अपनी खुशियों के लिए अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि वक्त है साहब जो हर पल बदलता रहता है। कार्यक्रम का ये अगला गीत आशा भोसले की आवाज़, फिल्म का नाम मेरे सनम। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत ओपी नैयर का है।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को संगीत दिया था ओपीर अय्यर ने। यह आवाज थी आशा भोसले की, फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
2: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार ही प्यार। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थी शंकर जयकिशन।
1: स्मूथ पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये शब्द रचना है आनंद बख्शी की, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।

रात्रि 9:15 पर स्पोर्टलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 बजे सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। रात्रि 8:10 पर आप सुन सकते हैं सरकार के 12 साल। महिला जगत कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर बहनें सुनेंगी श्रीमती सुमन नैनवाल से अभिज्ञा की बातचीत। विषय रहेगा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर होगा। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे डॉ. हिमांशु जोशी से भेंटवार्ता। विषय रहेगा मधुमेह रोग और आयुर्वेद इलाज। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं अग्नि कुमार वर्मा का सितार वादन। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा मासूम आजाद कव्वाल और साथियों से कव्वाली। सुबह 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं योगेंद्र पाल की गायी रागिणी। दिन में 11 बजे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। आइए आपको सुनवाते हैं सदाबहार कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम है अदालत। गीत है गुलशन बावरा का और संगीत कल्याण जैन जी का है।

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: शुद्ध रिश्ते बेहद ही नाजुक और खास होते हैं जिसमें अपनेपन की खुशियां छिपी होती है इनको जितना सहेजते हैं उतनी ही खुशियां बढ़ती जाती है इसलिए अपने रिश्तों को हमेशा खास बनाए रखें कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म का नाम अगर तुम न होते गीत है गुलशन बावरा का संगीत आर डी बर्मन का है

प्यार झुकता नहीं, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत था एस एच बिहारी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह कार्यक्रम का अगला गीत आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, महेंद्र कपूर और साथियों की फिल्म का नाम संगम।

अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये संगीत है निबली का, गीत है हजरत जयपुरी का, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, फिल्म का नाम राधा का संगम।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10 बजे ही लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप अमित सुंदरियाल से सुनिए न्यूज हेडलाइन। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आज भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी। IMA स्थित ऐतिहासिक चैटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। 34 मित्र राष्ट्र के कैडेट ने भी पूरा किया प्रशिक्षण। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर किया। अधिकारी कैडेट्स से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का किया आह्वान। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। भूस्खलन जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन चक्र, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और आपदा प्रबंधन में नई तकनीकों के उपयोग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। देहरादून में नाबार्ड की कार्यशाला में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर पलायन रोकने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को देखते हुए हरिद्वार में विशेष यातायात योजना लागू। 15 जून तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग तथा पार्किंग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई और कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले बाबा नीम करौरी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा दिवस मेले को देखते हुए प्रशासन ने विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था लागू की। व्यवस्था 16 जून सुबह 6 बजे तक रहेगी प्रभावी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानि classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए internet आधारित social media कार्यक्रम का उपयोग है. Brand पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए marketers social networking का उपयोग करते हैं. लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है. इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे. आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों. सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है. कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है.

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 0951522709। आई रिपीट 0951522709। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। आई रिपीट feedback@amc1@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग

करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज़्यादातर 18 इयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त।
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये स्वर थे अलका याग्निक गुरुदित नारायण की। फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। गीतकार थी बजीरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थी आनंद मिलित। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: ये स्वर्थी कुमार सानू, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की फिल्म का नाम था साजन। गीत था समीर का और संगीत नदीम शर्वन का था। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ही देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अमित सुंदरियाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड स्थित भारतीय सेना अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। IMA स्थित ऐतिहासिक

0: that the Indian Military Academy has been one of discipline, sacrifice and perseverance. You have learned that military leadership is not only about command, but also about character, compassion and commitment. You are the protectors of our nation's sovereignty, unity and integrity. You carry the sacred trust of over 140 crore citizens. You should always remember that service is the highest duty. In an era of rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भूस्खलन जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन चक्र, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और आपदा प्रबंधन में नई तकनीकों के उपयोग पर विशेष चर्चा हुई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, शहरी बाढ़ और अन्य मानसून जनित आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तकनीकों और समन्वय तंत्र की जानकारी मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आपदा प्रभावित लोगों के लिए मनोसामाजिक सहायता, राहत प्रबंधन और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर आधारित टेबल टॉप अभ्यास भी आयोजित किए गए, जिनमें विभागीय समन्वय, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। देहरादून में नाबार्ड की कार्यशाला और क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं के कौशल विकास और पलायन की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। बैठक का विषय ग्रामीण उत्तराखंड में स्थानीय आजीविका के लिए कौशल अंतराल को कम करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और पलायन रोकने के लिए जिला स्तर पर रणनीतियां तैयार करना था। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही इससे लाभार्थियों तक योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। नाबार्ड ने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व और सप्ताह अंत के दौरान हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात योजना लागू की है। पुलिस के अनुसार आज से 15 जून तक यातायात का दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोका जाएगा। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों से बैरागी कैंप और अन्य निर्धारित पार्किंग स्थलों तक भेजा जाएगा। वहीं चीला मार्ग का उपयोग केवल वाहनों की निकासी के लिए किया जाएगा। देहरादून, ऋषिकेश, नजीबाबाद और अन्य क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। भीड़ बढ़ने की स्थिति में ऑटो और विक्रम सेवाओं पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा कुछ मार्गों पर इसका संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। कल सुबह 6 बजे से लेकर 15 जून को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व समाप्त होने तक शहर क्षेत्र में सभी भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुई है। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए योगेंद्र पाल की गाई रागिणी। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर अश्विन कुमार, नक्काड़ा पर मोतीराम और हारमोनियम पर तेलुराम। तो आइए सुनते हैं योगेंद्र पाल की गाई रागिणी।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं योगेंद्र पाल की गायी रागिणी।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र पाल की गाई रागिणी। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर अश्विन कुमार, नक्काड़ा पर मोतीराम और हारमोनियम पर तेलुराम।

105.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 11 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सस्त्रियाकाल। स्वागत आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ नीलम ममगाई। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश को। और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। इस नंबर पर भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम और पता लिखकर। नंबर एक बार फिर

और पहली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में गांव टोरोवाल नवा शहर से आप सभी श्रोताओं की आप है गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ साथ में कमल साहनी पिंगावाला चौक गौराया जलंधर से आपने ये मैसेज किया है। लेवाई छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं गुलाब दास मानिकपुरी राजादास रानी मानिकपुरी गुंजन निशा विभय दास मानिकपुरी। ये अगली फरमाइश आई है करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से आप हैं परम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभजोत। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर यूपी से आप हैं मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून। ये अगली फरमाइश लिखने वाले श्रोता हैं माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना अजीत कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से आप हैं मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा श्रीमती फुंदी बाई बागरी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज है कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा। मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी हमें सुन रहे हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से बहादुरगंज गाजीपुर से आप हैं आजाद अली अनवर रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में राजी गौर और आपने ये मैसेज किया है मानक मऊ से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद तेलंगाना से आप हैं गोपाल नाई उमा माहेश्वरी। शामिल कर रहे हैं यशराज सिंधे प्रशांत सिंधे ऋषि सिंधे कृष्णा घोटके को रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज कल्याण मुंबई से आया है लिखने वाले हैं श्रोता किशोर हिवराले सुजाता हिवराले साथ में है प्रतीक हिवराले। अगले श्रोताओं का मैसेज आया है गुमला झारखंड से आप हैं एसएम जावेद शगुप्ता अंजुम और नजमुल होंदा। ये अगले श्रोता हैं बालकरण वर्मा अंजनी वर्मा ज्योति प्रहलाद वर्मा राजेंद्र मनहरन वर्मा ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। आप सभी की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम अजनबी।

حضور.

अगला गीत सुना चाह है आप सभी श्रोताओं ने आप हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे श्याम विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार और इनके बहुत सारे साथी शामिल कर रहे हैं नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर तनुजा और ईशांत देवांगन को पलारी छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है बुलढाणा महाराष्ट्र से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं वासुदेव बोदवड़े अनीता रमेश राव गाठोड़े। ग्राम उम्मेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से आप हैं मोहम्मद जैनुद्दीन आबेदा आयशा और स्नेह भानु जैनुद्दीन। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर वीणा और विविधा को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं नरहन स्टेट समस्तीपुर से आप हैं ललन मिश्रा नूतन मिश्रा अमन पारासर बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप का। कालका से आपके साथ हैं शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सदर बाजार कुरावली से ये अगला मैसेज आया है लिखने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल कुमार वर्मा विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। शगुप्ता प्रवीण फाजिया प्रवीण नाजिया नफीसा प्रवीण अररिया बिहार से हम तक ये मैसेज भेज रहे हैं।

0: दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से आप हैं विपिन, स्वाति, देवकुमार और आर्य कुमार जायसवाल। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं शाहजी नगर देगलोर जिला नांदेड़ से। और अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है रघुवीर नगर से, आपके नाम हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। कर्नाटका स्टेट तिरुपति से आप हैं प्रकाश, श्यामला अश्वनी और आनंद रमेश। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता सोपान तायड़े, बसंत राव, पीएस नहावकर और तुषार। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। मन्ना डे की आवाज में फिल्म का नाम एक फूल दो माली।
1: बहुत ही अच्छे बच्चे।

अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आप हैं। नाज रेडियो क्लब करेली, जिला बरेली से हैं। निसार अहमद अंसारी, महजाबी निसार अंसारी, इनकी बेटी है नुजहत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है, उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका, भानु प्रकाश। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हिंगोली महाराष्ट्र से आया है, आपके नाम है शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरहेकर। अगले श्रोताओं का ये मैसेज मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, आप हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली साथ में हैं, नगमा नाज मंसूरी। फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हैं एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़सी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान और इनके बहुत सारे साथी। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं टैगोर गार्डन न्यू नई दिल्ली से, आप हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। भोपाल गढ़ राजस्थान से ये अगला मैसेज आया है जिसको लिखा है धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार ने। ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। मोताला महाराष्ट्र से ये अगला मैसेज आया है जिसको लिखा है विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार सुरलकर ने। गांव हिप्पर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से हमारे साथ जुड़े हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज भेज रहे हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से, आप हैं किशन वंजैनी, नीलम स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमाक्ष हमारे साथ जुड़े हैं सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। और ये अगला मैसेज है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, लिखने वाले श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष और चैतन्य राजा। साथ में है चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और केशव खुराना। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं उदित नारायण के साथ अलका याग्निक को, फिल्म का नाम कसूर।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से हैं कारी राय कारी मीना कारी, साथ में है पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। रेंगिनी छत्तीसगढ़ से ये अगले श्रोताओं का मैसेज है जो जिनके नाम है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाविया, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। अगले श्रोताओं का ये मैसेज है चंडीगढ़ से, आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से ये अगला मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव सायना और निवान शर्मा। खुर्जा यूपी से ये अगला मैसेज आया है जिसको लिखा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। गुजरात गांधीग्राम से ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आपके नाम है प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल, जूली और जगदीश जौहरी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज कुम्भार गली कोलगांव से, आप हैं पांडुचंदन, ऊषा चंदन, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडु रंग कुम्भार। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति और वैभव शिंदे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, आप हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहम, मोहम्मद आलम हाशमी। कुम्भार गली श्रीरामपुर से ये अगला मैसेज जिसको भेजा है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले ने, साथ में है पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है गांव फरासी जिला हिसार से, आप है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

अगले श्रोताओं का मैसेज श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, और आपके नाम है डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, कोयते बस्ती पुनावले से आप हैं अजय सोनवड़े, करिश्मा अविका और सायशा सोनवड़े। परी महल कासगंज से ये अगला मैसेज जिसको भेजा है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एस असलम सेफी, मास्टर जाहिद अली ने। मीरा सराय बदायूं से आप हैं आफरीन खान, जमीर खान। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज जिसको भेजा है राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय ने, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से। खेल बाजार पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य कोयल और इनके पिताजी हैं नानक चंद जी मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष कोयल और डुग्गू, साथ में है भाविक सिक्का। ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जादव, अनुसुईया और पवन राजे ने ये मैसेज किया है। इन्हीं के साथ हैं छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश, संध्या और स्वराज सिराज। आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम राजकुमार।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइशों का, व्हाट्सएप फरमाइश का, और ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। अगले श्रोताओं का ये मैसेज गणेशपुर गंज डुंडवारा यूपी से, आप हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा फारूक, साथ में है सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। ये अगला मैसेज विजय लक्ष्मी और मालेश गॉड, साथ में इनके साथियों का, हैदराबाद से इन्होंने मैसेज किया है। अगले श्रोताओं का मैसेज हम शामिल कर रहे हैं। मोहल्ला मंसूर गंज डुंडवारा यूपी से आप हैं, आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लोबना अंसारी और आलिया अंसारी। किशोर नगर अमरावती से ये अगले श्रोता जुड़े हैं, आपका नाम है हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोंडाणे। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है शमसुल कमराही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी ने गंज डुंडवारा से। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से आप हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुढ़ाना इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। सुदामा नगर खंडवा से आप हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप। राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से ये अगला मैसेज जिसको लिखा है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार। वारसी क्लब सिंधौली बरेली से ये अगला मैसेज आया है जिसको लिखा है जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख ने, साथ में है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से ये अगला मैसेज जिसको लिखा है आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी ने। कोटवा नारायणपुर पट्टी बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल। श्रीगंगानगर गांव खोकरा वाली से ये अगले श्रोताओं का मैसेज है जिनके नाम है विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन। उच्च भट्टी बिलासपुर से आप हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। गणेश भारद्वाज बिजलवाण, दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत, लियाकत रजाई वाले इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं बालावाला देहरादून उत्तराखंड से। तो आप सभी की फरमाइश पे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनाड़ी से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं जेल रोड नजीबाबाद से हैं राधिका जाटव और प्रभा रानी जटोलिया, चंद्रनगर दिल्ली से आप हैं मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग, डुमराव से हमारे साथ जुड़े हैं वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी और साथ में हैं फातिमा नाज अंसारी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है काटा रोड वाशम महाराष्ट्र से, आप हैं मास्टर बिठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि और मायरा। अगले श्रोताओं का ये मैसेज धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से, आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। तिरुपति नगर नांदुरा से हमारे साथ जुड़े हैं संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक, दिंडोरी नाशिक से आप हैं विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली और भक्ति गवली। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, आप हैं बबलेश पवार, डनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश चौहान, डांगरी से आप हैं बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से आप हैं खुदा बख्श खलीफा रेडियो दीवाना। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू पार्क निजामबाद तेलंगाना से हैं अजीज भाई, मतीन भाई, चांद फारूक शेख, फूल वाले और इनके बहुत सारे साथियों ने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से, आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से, आप हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके। अगला मैसेज एकता कॉलोनी रोहतक से, और इसको लिखा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने। शांति कॉलोनी जगाधरी से

हमारे साथ जुड़े हैं सूरज मंडल, अनिल कुमार और अनिल शर्मा। ये अगला मैसेज आया है बीड शहर महाराष्ट्र से। इसको लिखा है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महतुरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय टवूल साथ में है, पीबी कुल थे। कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं लातूर महाराष्ट्र से। इसको लिखा है अनिल जी, अनीता, अर्पिता ने। और ये मैसेज कहाँ से आया है? ये मैसेज आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, और इसको लिखा है अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले ने। साथ में है कपास हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन परवीन, आसमा परी, दाबिया, मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, फाजिलका पंजाब से हमें सुन रहे हैं भूषण खेड़ा, विशु लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी और टिवांशी। अमितेश कुमार तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं बलिया यूपी से। मनाली से हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। और ये मैसेज आया है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, जिसको लिखा है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे ने। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म प्यार का मौसम से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय और प्रतिभा गोंडाने। नलगोंडा तेलंगाना से आप हैं मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनी रुनीसा। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से और इसको लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान, अजलान इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मोताला बाजार से। ये अगला मैसेज राजधानी रायपुर से, लिखा है इस मैसेज को नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज जिसको लिखा है परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और इनके पूरे परिवार ने। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है आप सभी श्रोताओं का। आप हैं बिहार स्टेट डुमराव से हैं राजवली अंसारी, बेगम शबनम राज, साथ में असमा नाज। जेल रोड बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जलंधर से मीना कौर और संदीप कौर को, साथ में हैं जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, छत्तीसगढ़ रायपुर से आप हैं सरयुत खान और आफताब खान। ये अगले श्रोता हैं शिरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, उनके बहुत सारे साथियों ने ये मैसेज किया है। शामिल कर रहे हैं आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम और पवन को, और साथ में है के संजीव डाबेराव। ये अगला मैसेज गुन्नौर से आया है, लिखने वाले श्रोता हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। सब्जी मंडी बुल्ढाना से हमारे साथ जुड़े हैं शब्बीर हुसैन, सहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद और चाहत का। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं देवरी भाटापारा से आप हैं के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्रिया। शामिल कर रहे हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार का ये मैसेज जिसको जो इन्होंने भेजा है खमहरिया छत्तीसगढ़ से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद खजा फसियोद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं जिला वरंगल से। नजफगढ़ बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं शाहरुख, फारुक, शबनम और शहनाज। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म खून भरी मांग से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, समय हो गया है 11:54, 24 सेकंड शामिल करते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइशों को। तो अंतिम फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं आप सभी श्रोताओं की। आप हैं नंगल खेड़ा फगरवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा। दतरेंगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से आप हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं मजनू का टीला से आप सभी श्रोताओं को। आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। ये अगले श्रोता हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव। साथ में हैं श्रीनिका और श्रीनिजा। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज, जिसको लिखा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा महाराष्ट्र से श्री सुधाकर राजा यादव, डॉक्टर प्रशांत राजा यादव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख ने। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन को। और यहीं से हैं गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन। ये अगला मैसेज आया है भटीजा रोड मंडी डबवाली से। आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज, जिसको लिखा है तेलंगाना निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख। मुंदीचक भागलपुर से आप हैं दिलीप कुमार सोनी। मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता। झुमरी तलैया से आप हैं डॉक्टर सोनम। और बरकाकाना से ये मैसेज आया है नाजनी तबस्सुम अफजल मोहम्मद इफ्तेखार इब्राहिम का। और अंतिम मैसेज हम शामिल कर रहे हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत। इन सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म फना से।

इसी गीत को सुनना चाहा था मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद असीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने बाजार रोड मुंगीसापुर से। और इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश की थी छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा ने।

0: इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

0: आरडीयू को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia for his 6-day visit. During his visit, Prime Minister Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi today said that India's youth are making their mark across various sectors, from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi added that today, India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted as Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy or IMA in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said that she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said that it is not only a

0: milestone in the history of India's defence forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
1: I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a social media post, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. External Affairs Ministry today said reports of death of Indian sailors in vessel Liaki Freedom are incorrect. The ministry said it has spoken to the master of the vessel Liaki Freedom, which has confirmed that all crew members are safe. The fact-check unit of MEA has urged people to stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force officials said the firefighting operations are underway at the accident site. More details are awaited. The Enforcement Directorate today conducted searches at 7 premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the first ODI of the 3-match series at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this afternoon. The match is scheduled to start at 1:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: FM 107.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12:10 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप सुशील पुरोहित से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आज भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। भारतीय सेना को मिले 481 नए युवा अधिकारी। IMA स्थित ऐतिहासिक चैटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। मित्र राष्ट्र के 34 कैडेट्स ने भी पूरा किया प्रशिक्षण। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर विंग ऑफिसर किया। अधिकारी कैडेट से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का किया आह्वान। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। पिथौरागढ़ में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने सीमांत क्षेत्रों के सभी डेंजर जोन पर सायरन और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। मानसून के दौरान सुरक्षा मानकों और एडवाइजरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। चंपावत जिले के पाटी और बाराकोट विकासखंड के 20 दूरस्थ गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने मंजूरी दी। परियोजना से सीमांत क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तरकाशी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राएं अभिभावकों को पत्र लिखकर और वीडियो संदेशों के माध्यम से मतदाता जागरूकता फैला रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रवासी मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाना और मतदाता सूची के शुद्धिकरण में जनभागीदारी बढ़ाना है। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित हिलास रेस्टोरेंट का उद्घाटन ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने किया। कहा, इससे स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों को नया बाजार मिलेगा तथा महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आय बढ़ाने के अवसर सृजित होंगे। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की बारिश और कहीं कहीं आंधी की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। 12:12 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए कव्वाली। कलाकार हैं मासूम आजाद कव्वाल और साथी।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कव्वाली। कलाकार थे मासूम आजाद कव्वाल और साथी। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 12:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, शुरू हो चुका है कार्यक्रम महिला जगत, जिसे लेकर आ चुकी हूं मैं आपकी सखी अर्चना। बहनों, आज बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी। बहनों, अक्सर जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम उसका मतलब सिर्फ सुंदरता, ड्रेसिंग सेंस या बाहरी रूप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसके आत्मविश्वास, उसके विचार, उसके व्यवहार और उसके जीने के तरीके से बनती है। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आज की महिला जो है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो परिवार की नींव है, समाज की ताकत है और देश के विकास में भागीदार है। और ऐसे में उसके व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहनों, हर किसी के अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी होती हैं, लेकिन कई बार हम सामाजिक दबाव, जिम्मेदारियों और झिझक के कारण अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचान नहीं पाते। और व्यक्तित्व विकास की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। जब तक हम अपने ये ताकतों को, अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत है उस खूबी को पहचानने की और उस खूबी पर काम करके विकास की ओर पहला कदम बढ़ाने की।

ये कि ज्ञान यानी कि नॉलेज आत्मविश्वास बढ़ाती है और आत्मविश्वास सफलता की ओर ले जाता है। बहनों, एक आत्मविश्वास जो है वो प्रभावशाली बनाता है, और प्रभावशाली व्यक्ति की पहचान है स्पष्ट और सकारात्मक संवाद यानी कि कम्युनिकेशन। हमें अपनी बात विनम्रता और विश्वास से कहनी तो आनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना भी आना चाहिए। हम घर, परिवार, बच्चों और कामकाज में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खुद के विकास के लिए थोड़ा सा मी टाइम तो बनता है। ये आदत कहीं ना कहीं हमें मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है। बहनों, कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार का आधार होती है, लेकिन अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते हम खुद को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति, ये सभी चीजें स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत जरूरी हैं। हमारी जिंदगी अप्स एंड डाउन से भरी है, लेकिन सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें हर हालत में आगे बढ़ने की ताकत देती है। नकारात्मक विचार हमारी एनर्जी को कम करते हैं, वहीं सकारात्मक सोच से ऊर्जा बढ़ती है। तो सुखी जीवन का राज है पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। बहनों, पता है एक महिला का सबसे बड़ा गहना क्या है? वो है उसका आत्मसम्मान। यानी कि दूसरों का सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन खुद का सम्मान भी जरूरी है। हमारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती, हमारा सम्मान हमारे आत्मविश्वास और हमारे कर्मों से तय होता है। बहनों, व्यक्तित्व विकास कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि जो कि एक दिन में अचीव कर लिया जाए, बल्कि ये एक खुद को बेहतर बनाने का प्रोसेस है। ये याद रखना चाहिए कि व्यक्तित्व सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि हम कैसे दिखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा सोचते हैं, लेकिन इससे जरूर बनता है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारे दूसरों के प्रति व्यवहार क्या है और अपनी छाप हम लोगों के मन में कैसी छोड़ते हैं। आत्मविश्वास, अनुशासन, सीखने की इच्छा और संवेदनशीलता, ये वो गुण हैं जिनकी वजह से हम भीड़ में भी अलग दिखाई पड़ते हैं। तो आइए आज एक संकल्प लें कि हर दिन अपने जीवन में एक नई अच्छाई को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी परिवार, समाज और राष्ट्र बेहतर बनेगा। तो बहनों, कार्यक्रम में बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: बहनों, आज के समय में हर महिला समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रही, बल्कि अपने हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रही हैं। इन्हीं संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा करने के लिए आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ये भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। इस विषय पर श्रीमती सुमन नैनवाल से बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी अभिज्ञा।
4: आज हमारे साथ हैं समाज सेविका श्रीमती सुमन नैनवाल। आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियोज में आपका स्वागत है मैम।
5: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए।
4: सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए।
5: मैं नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था की फाउंडर हूँ।
4: आपके अनुसार ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार कितना महत्वपूर्ण है?
5: मुझे लगता है ग्रामीण महिला हो या कोई भी महिला हो, उसके लिए स्वरोजगार सिर्फ एक आय का साधन नहीं होता है, बल्कि उसके लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे समाज को सशक्त करती है।
4: ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो स्वरोजगार और नौकरी में वो किस तरह अंतर कर सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौकरी कर रही है, स्वरोजगार कर रही है, वो एक ही मतलब होता है उनके लिए।
5: नौकरी जब आप करते हैं तो दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, महिलाओं के और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइम्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं। बट जब आप स्वरोजगार करती हैं तो आप अपनी टाइम लिमिट में आप काम कर सकती हैं, आपके पास एक ग्रोथ करने का एक पोटेंशियल होता है, और आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी स्वरोजगार के साथ जोड़ सकती हैं। तो मुझे लगता है स्वरोजगार एक ज़्यादा अच्छा माध्यम है।
4: महिलाओं के लिए कौन कौन से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं?
5: अगर मैं ग्रामीण महिलाओं की बात करूं तो जैसे बी कीपिंग हो गया, या डेयरी पशुपालन हो गया, या जैविक खेती हो गया, या खाद्य संस्करण हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, या हस्तशिल्प हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ देती हैं और हमेशा चलने वाली चीजें हैं।
4: जी, देखा जाए तो ये महिलाओं की पारंपरिक कौशल है, क्या वो इन्हें व्यवसाय में बदल सकती है?
5: जी, मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर पारंपरिक कौशल को व्यवसाय में बदला जाए। और जब आप गाँव में रहकर ट्रेडिशनल को, ट्रेडिशनल फूड को, ट्रेडिशनल हस्तशिल्प को, या किसी पर्टिकुलर कला को जब लोगों को तक पहुंचाती हैं किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग बहुत इजीली कनेक्ट भी होते हैं और लोग उसको बहुत पसंद कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल कौशल को एक व्यवसाय के रूप में बदलना एक बहुत ही अच्छा मीन हो सकता है एक स्वरोजगार के लिए।
4: जी, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका ग्रामीण महिलाएं लाभ उठा सकती हैं?
5: बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे NRLM की स्कीम हो गया, SHG ग्रुप्स हैं, और जो मुद्रा योजना है, और सरकारी और भी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से उनको ऋण भी मिलता है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ग्रामीण महिलाओं के लिए कर रही हैं, उनका फायदा लेके बहुत सारी चीजों को स्टार्ट कर सकती हूँ।
4: अपना रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
5: चुनौतियां तो हम महिलाओं के लिए बहुत सारी हमेशा ही रही हैं। सबसे पहले तो पूंजी की बात करते हैं, जो अमाउंट होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा एक प्रॉपर स्किल की बात करूं भी एक प्रॉपर चैलेंज तो रहता ही है। उसके अलावा सामाजिक जो चुनौतियां हैं, सोसाइटी किस चीज को कैसे एक्सेप्ट करती है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। डिजिटल एजुकेशन जो बहुत जरूरी है, और हर दिन कुछ नया करने की सीख आपके अंदर होती है, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। और ग्रामीण स्तर पे ये चैलेंज होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट हो रहे हैं, अगर हम उसको नहीं लर्न करते हैं तो वो वहीं पर वो व्यवसाय खत्म होने लगता है।
4: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या डिजिटली टेक्निक और मोबाइल फोन महिलाओं के व्यवसाय में मदद कर सकते हैं?
5: बहुत अच्छा मीडियम है डिजिटल टेक्निक और मोबाइल फोन, जहाँ पे कहीं से भी चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है। और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया किया जा सकता है और वर्ल्ड वाइड चीजों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये तो सबसे अच्छा मीडियम है, आप घर बैठे दुनिया तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं।
4: बिल्कुल सही बात, आपने पूंजी की बात कही, तो कम पूंजी में शुरू किए जाने वाले कौन से स्वरोजगार हैं?
5: कम पूंजी में बहुत सारे स्वरोजगार किए जा सकते हैं, जैसे मसाला उत्पादन हो गया जिसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कम पूंजी में भी कर सकते हैं, जैसे अचार पापड़ जो हमारे डेली यूज में हम कंज्यूम करते हैं, मशरूम उत्पादन है जैसे हमारे घरों में पुराने घर हैं ऑलरेडी गांव में जो खाली पड़े हैं, टेम्परेचर अच्छा रहता है वहां पे मशरूम कल्टिवेशन हो सकता है, हस्तशिल्प हो गया या हैंडीक्राफ्ट हो गया, ऐसे और भी काफी सारी चीजें हैं जिनको हम घर बैठे और कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं।
4: क्या जरूरी है इसके लिए महिला अकेले व्यवसाय शुरू करे या उसे किसी के साथ की जरूरत होगी?
5: मुझे लगता है दोनों तरीके से हो सकता है, बट एक से भले दो कहते हैं ना, तो अगर एक महिला अकेले काम कर रही है तो उसके लिए चैलेंजेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम ग्रुप्स में काम करते हैं तो वहां पे चीजों को बनाना, मार्केट तक पहुंचाना, डिजिटल मीडियम पे काम करना, ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है। तो अगर ग्रुप में किसी भी काम को किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, और SAG जो मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है इस तरीके से काम करने के लिए।
4: महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कितना जरूरी है?
5: कौशल विकास तो हर जगह हर स्टेज पे काम करता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसका मेकिंग का कौशल कैसे होता है, फिर उसका पैकेजिंग, फिर उसका उसको मार्केट करना, उसको ब्रांडिंग करना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आना, बाजार को समझना, MRP डिसाइड करना, ऐसे हर स्टेजेस पे हमें स्किल की जरूरत होती है। तो निरंतर अगर हम स्किल्स में काम करते रहें, निरंतर हर स्टेज के लिए हम लर्न करते रहें, तो ही हम एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल अर्निंग गेन कर सकते हैं।
4: क्या खुद के रोजगार अपनाने से गांव में पलायन करता है?
5: मुझे लगता है अगर हम स्वरोजगार की तरफ जाते हैं और महिलाएं अगर स्वरोजगार करती हैं तो गांव में 100% पलायन होता है, क्योंकि पलायन का कारण ही तो यही है कि हम किसी कारण की वजह से किसी ना किसी रोजगार के लिए ही हम बाहर जा रहे हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं और इस हिसाब से हमारी सैलरीज उतनी नहीं होती हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और बहुत सारी चीजें हैं जो हर चीज हमें पैसे देकर गेन करनी पड़ती है, और गांव में हमारे पास बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं।
4: जी, क्या

0: खेती से जुड़े व्यवसाय महिलाओं के लिए लाभदायक हो सकते हैं?
1: बिल्कुल लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में या ग्रामीण एरिया में महिलाएं जो रही हैं वो खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं, वही
0: जी
1: हमेशा करती आई हैं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है कि बीजों को कैसे संरक्षित रखना है, खेती किस तरीके से करना है, तो खेती उनके लिए बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है। और आजकल सिर्फ ट्रेडिशनल खेती ही नहीं बल्कि कमर्शियल क्रॉप्स और ऐसी चीज़ों को उगा के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप फूड प्रोसेसिंग की तरफ उसको ऐड करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट होता है।
0: जानना चाहेंगे कि सफल व्यवसाय के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं?
1: मुझे लगता है सबसे पहले पेशेंस बहुत जरूरी है, खुद पर विश्वास करना हो गया, हार्डवर्क हमें करना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, और ग्राहक को या जो भी आपका कस्टमर है, एंड कस्टमर है, उसको 100% ऑनेस्टी के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट देना, ये किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है।
0: क्या परिवार और समाज का सहयोग जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है, परिवार के सहयोग से एक महिला के अंदर आत्मविश्वास आता है, और अगर वो किसी भी चीज को आज 50% कर पा रही है तो परिवार के सहयोग के साथ वो उसको 100% अचीव कर सकती है।
0: अगर कोई महिला अपना रोजगार शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना होगा?
1: वैसे तो बहुत सारे कौशल विकास के प्रशिक्षण ऑलरेडी मौजूद हैं, बट अगर वो मुझसे कनेक्ट होना चाहती हैं तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन है, मेरे साथ उस पे कनेक्ट हो सकती हैं। मैं जहाँ पर भी आपको हेल्प कर पाई तो मैं जरूर हेल्प करूंगी और आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगी।
0: अंत में जानना चाहूंगी कि जो महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं उन्हें आप और क्या कहना चाहेंगी?
1: मुझे लगता है मैं हर महिला को यही कहना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारी महिलाएं जो मुझे कॉल करके अपनी सिचुएशन शेयर करती हैं, तो किसी भी सिचुएशन के आने का वेट ना करें, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ही होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही होना है, चाहे आपका परिवार पूरी तरह से सशक्त क्यों ना हो, आपको आज के दिन से तैयारी करनी है। और मैं कहूंगी कि वो जो आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अपनी ज्वेलरी इकट्ठे करने में, छोटी छोटी चीजें इकट्ठे करने में कर रहे हैं, उससे अच्छा वो छोटा इन्वेस्टमेंट आप किसी ने स्किल डेवलपमेंट करने में या कुछ नया सीखने में अगर लगाती हैं तो वो ही अल्टीमेटली हमारे लिए उस फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ये मैं हर महिला को एक संदेश देना चाहती हूँ।
0: मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी श्रोता बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए।
2: बहनों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता जिसका विषय था ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। इस विषय पर श्रीमती सुमन ननवाल से बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी अभिज्ञा। तो बहनों, कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
3: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
4: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।
2: बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना पड़े, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि अच्छी सेहत की शुरुआत होती कहाँ से है? इसका जवाब है अच्छा पोषण। आज के समय में इस भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार हम अपनी सेहत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं और यही आदतें हमारी स्वास्थ्य पे भी असर डालने लगती हैं। यही वजह है कि पोषण के बारे में जागरूकता आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे हम पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं, शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य है देश में कुपोषण को कम करना, लोगों को सही पोषण के प्रति जागरूक करना। इसमें खास तौर पर छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जीवन के ऐसे चरण हैं जहां पे सही पोषण भविष्य की नींव रखता है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं और संतुलित आहार के बारे में बताते हैं। और बहनों, सबसे अच्छी बात यह है कि पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा नहीं होता। हमारे घर में मौजूद दाल, चना, मूंगफली, मौसमी फल, हरी सब्जियां और मोटे अनाज भी पोषण के अच्छे स्रोत हैं। बस जरूरत है सही जानकारी और सही आदतों की, और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। खाने से पहले हाथ धोना, साफ पानी पीना और भोजन को साफ रखना हमें कई बीमारियों से भी बचाता है, यानी कि अच्छा पोषण और स्वच्छता दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बहनों, इस चर्चा का सार यही है कि स्वस्थ जीवन की जो शुरुआत है वो होती है सही पोषण से। राष्ट्रीय पोषण मिशन हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें हमारी और हमारे परिवार की सेहत में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आइए हम संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने आसपास भी पोषण के प्रति जागरूकता फैलाएं। और इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

बहनों, गर्मी का मौसम आ चुका है। तेज धूप, पसीना और धूल मिट्टी न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि स्किन और बालों पे भी असर डालते हैं। ऐसे में थोड़ी सी देखभाल की जाए तो इस मौसम में भी स्किन और हेयर की जो सेहत है वो बनी रह सकती है। तो आइए जानते हैं गर्मियों में स्किन केयर और हेयर केयर से जुड़े कुछ छोटे छोटे टिप्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि स्किन का नेचुरल ग्लो भी बनाए रखता है। इसके साथ ही दिन में 2 बार फेस को किसी माइल्ड फेस वॉश से साफ करना चाहिए, जिससे कि जो पसीना और डस्ट है वो स्किन पर जमा ना हो। और अगर त्वचा को तुरंत ताजगी देनी है तो खीरे का रस, गुलाब जल या एलोवेरा जेल भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं बालों की। तो गर्मियों में पसीने और धूल की वजह से बाल जल्दी चिपचिपे और बेजान लगने लगते हैं, इसलिए स्कैल्प को सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है। हफ्ते में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू से बाल धोने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तेज़ धूप में निकलते समय दुपट्टा, स्कार्फ या कैप का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बाल जो है वो सीधा धूप के कॉन्टैक्ट में ना आए। हफ्ते में 1 से 2 बार कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल से मालिश बालों को पोषण देने में मदद करती है। और हाँ, सिर्फ बाहरी देखभाल काफ़ी नहीं है। मौसमी फल, हरी सब्जियाँ, संतुलित भोजन, ये सभी चीज़ें त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। अच्छी नींद और तनाव से दूरी भी खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करती है। तो बहनों, गर्मियों में हेयर और स्किन केयर के लिए ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है सही और नियमित देखभाल की। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल कर हम इन आसान टिप्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। और बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है, तो अपनी सखी अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। दोपहर के 1 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सौ.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की तैयारियां तेज। हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन। और देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की पहल की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सैन्य बैंड की गूंज, अनुशासित कदमताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और गौरवपूर्ण बना दिया। इस वर्ष की परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो महिला नेतृत्व वाले विकास और सशक्त भारत की अवधारणा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। एक रिपोर्ट।
3: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 16 मित्र राष्ट्रों के 34 कैडेट हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार अकादमी से पुरुष कैडेट्स के साथ 9 महिला कैडेट्स भी पास आउट हुई। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान, साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। उन्होंने पहली बार पास आउट हो रही महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे देश में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम बताया। श्रीमती मुर्मू ने अधिकारी कैडेट्स से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का आह्वान किया।
4: डियर कैडेट्स, योर जर्नी एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी हैज बीन वन ऑफ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस एंड परसिवरेंस। यू हैव लर्नड दैट मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट कमांड बट ऑल्सो अबाउट करेक्टर, कंपैशन

0: and commitment. You are the protectors of our nation's sovereignty, unity and integrity. You carry the sacred trust of over 140 crore citizens. You should always remember that service is the highest duty. In an era of rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
2: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने यात्रा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से यात्रा संचालन और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। बैठक में यात्रा रूट प्लान, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की भी समीक्षा की गई। मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने राहत व बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों पर संवेदनशील स्थलों पर मशीनरी की अग्रिम रूप से तैनाती की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। नैनीताल के कैची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले बाबा नीब करोरी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा दिवस मेले को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था 16 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर शटल सेवा के माध्यम से ही कैची धाम पहुंचना होगा। प्रशासन के अनुसार 14 और 15 जून को दोपहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं आज से 16 जून तक भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े वाहनों को निर्धारित समय से ही अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भवाली, भीमताल, नैनीताल, खैरना, काठगोदाम और हल्द्वानी सहित विभिन्न स्थानों पर पार्किंग और शटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल संरचना, पाठ्यक्रम और स्टाफ तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर के खेल अधिकारी, कोच और खेल जगत से जुड़े दिग्गज शामिल हुए। शासन की योजना के अनुसार जुलाई माह से ही गोलापार स्टेडियम परिसर में खेल विश्वविद्यालय का पहला सत्र शुरू करने की तैयारी है। खेल सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति अमित सिन्हा ने बताया कि बैठक में विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
4: पहले चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, इसकी बहुत बाहर डिमांड है। इसके लिए इसके जॉब के बहुत अच्छे स्कोप है। हम लोग ये चाह रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे जो आसपास के जो भी वो यहाँ पे आए, यहाँ पढ़े। स्पोर्ट्स कोचिंग में भी यहाँ पे जो गेम्स की कोचिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है, जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक उसको प्रचार प्रसार करके हम लोगों को ला सके। बिकॉज हम जो क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सारी तैयारियां इन सब से चर्चा हुई।
2: खेल निदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि शीघ्र ही खेल विश्वविद्यालय को विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को नई दिशा मिलेगी।
5: उत्तराखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर आज बैठक थी, तो उसमें माननीय हमारे जो वीसी हैं सर, उनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, तो उस पर लेकर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। जल्दी हम आने वाले कुछ माह में इसको लागू भी करना चाह रहे हैं और फंक्शनल करना चाह रहे हैं, तभी हम फिर इसमें कुछ फर्दर बता पाएंगे।
2: देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरू की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऐसे बच्चों के चिन्हीकरण और उपचार की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों और किशोरों के चिन्हीकरण के

0: विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें समयबद्ध उपचार प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि चिन्हित बच्चों का उपचार केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन गंभीर बीमारियों का उपचार इस कार्यक्रम के तहत संभव नहीं होगा उनके उपचार के लिए अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और राइफल फंड का उपयोग किया जाएगा जिससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। देहरादून में आयोजित नाबार्ड कार्यशाला और क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं के कौशल विकास और पलायन की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। नाबार्ड ने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की तैयारियां तेज। हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन। और देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की पहल की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:15 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ में। ये गीत फिल्म थी चांदनी। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की मधुर आवाज़ में। फिल्म का नाम चमत्कार, संगीत अनु मलिक का, गीतकार आनंद बख्शी।

आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, राम लक्ष्मण द्वारा संगीतबद्ध ये गीत, जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना असद भोपाली और देव कोहली की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार एकांश देहरादून द्वारा विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में मैं सुशील पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम राज्य में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानेंगे, जिसकी जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून के निदेशक डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट, और उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी रेणु उप्रीति पंत।
2: नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम उत्तराखंड से जुड़े एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल और यहाँ के जल स्रोत ही उत्तराखंड की पहचान है, लेकिन वर्तमान में बदलता मौसम, भूस्खलन, मिट्टी कटाव एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। और अब जलवायु परिवर्तन का असर केवल यहाँ के पर्यावरण पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि कृषि, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ रहा है। ऐसे में आज इन्हीं चुनौतियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले जल संरक्षण को लेकर, मृदा कटाव को लेकर किस तरीके से रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, इसके साथ ही यदि भूस्खलन आता है तो उस पर कैसे बचाव हो, इस पर काम किया जा रहा है, और आने वाले समय में हिमालयी राज्यों के लिए क्या प्राथमिकता रहने वाली है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा को करने के लिए मौजूद हैं। आइए सीधे उनका स्वागत करते हैं और आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट जी, जो केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, हाँ, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़, यहाँ की खेती ही जो है उत्तराखंड की पहचान है। सबसे पहले हम खेती किसानी पे ही बात करेंगे। उत्तराखंड में कृषि के लिए क्या क्या चुनौतियाँ देखी जा रही हैं और कैसे उस पर काम किया जा रहा है?
3: हिमालय में जो चुनौतियाँ हैं कृषि से संबंधित और खासकर उत्तराखंड राज्य की, सबसे बड़ी चुनौती तो जो माइग्रेशन है कि हमारा जो युवा है उसका पलायन है, वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ और जो आजीविका के लिए उसका पलायन हो रहा है। जो जोत हमारी है वो जोत हमारी बहुत छोटी है, तो कोई भी तकनीक अगर उसका बड़े स्तर पर उसका अगर हमको डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो छोटी जोत होने के कारण उसकी एक सीमित उपयोगिता रह जाती है। उसके अलावा जो हर वर्ष जो अतिवृष्टि है जिसकी वजह से लोग खेती को छोड़ रहे हैं, और जो कृषि उन्नत बीज है उनका उपयोग हो रहा है लेकिन वो बड़े स्तर पर या

0: के लिए कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक वो काम हो रहा है और फिर से उस तरह की खेती हो, इसके लिए संस्थान की क्या क्या भूमिका रह रही है?
1: हमारे जो संस्थान का जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसमें अगर उसकी थोड़ा सा मैं आपको रूपरेखा बताऊं तो वो अलग अलग उनके उद्देश्य हैं हर संस्थान के। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इस संस्थान की बात करें जिसमें मैं निदेशक के पद पर कार्य कर रहा हूं, तो इसका मुख्य कार्य है कि किस तरीके से जो भूमि कटाव हो रहा है, जो विभिन्न जो भी वजह हों उनकी वजह से जो भूमि कटाव है, और उसकी वजह से जो पानी का जो आपने पहले शुरुआत में पानी की बात करी थी कि जो पानी की कमी हो रही है, उस पर मुख्य रूप से काम कर रहा है। देश भर में हमारे 114 संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकर्त हैं, जो कि विभिन्न फसलों के उन्नत किस्म का बीज बनाना, उसी उसके 29 हमारे देश भर में संस्थान हैं प्रमुख रूप से, जो कि विभिन्न फसलों के बीजों का, उन्नत बीजों को, और खासकर जो कि जलवायु परिवर्तन में जो अच्छे से जो उनकी पैदावार ज़्यादा पैदावार हो सकती है उनको बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो हमारे 3,700 प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों में, धान गेहूं से लेकर के दलहन तिलहन से लेकर के और अन्य फसलों में हमारी इतनी सारी प्रजातियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाई हैं। और जिसमें से जो क्लाइमेट रिजिलियंट जलवायु सहिष्णु जो प्रजातियां हैं वो लगभग लगभग हमारी 2,987 प्रजातियां हैं देश भर के लिए। लेकिन हिमालय क्षेत्र की जो कृषि है और हमारे जो मैदानी भूभाग की कृषि है, वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ की जो मिट्टी है या यहाँ की जो भी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ की अपनी जो हमारी परंपरागत जो बीज है उसका संवर्धन हमको करना पड़ेगा, ताकि हम जो क्लाइमेट रिजिलियंट जो वैराइटीज़ की बात करते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकें। और जो ये भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये धान गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी हमारी बागवानी फसलें हैं, और इसका उदाहरण भी है कि आप हिमाचल का उदाहरण देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, या यहाँ तक कि जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनमें देख लीजिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो बागवानी फसलें उसमें दोनों हो गया, आपके फलदार वृक्ष भी हो गए और उसमें हमारे जो उन्नत किस्म की जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन पर हम लोग जोर दे सकते हैं। और जो भी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि उत्तराखंड राज्य का एक बड़ा योगदान देश की पोषण सुरक्षा में हो सकता है हॉर्टिकल्चरल इंटरवेंशंस के लिए। तो ज़्यादा जो हमारी प्राथमिकताएं जो होनी चाहिए वो प्राथमिकताएं हमारी बागवानी को, फसलों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
0: उत्तराखंड में मृदा क्षरण की समस्या बहुत आम सी हो गई है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए, इस पर क्या काम किया जा रहा है?
1: मिट्टी कटाव का अगर आप देखें, और पिछले कम से कम अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, पिछले 15 से 20 साल का अगर आप एक आंकड़ा उठा के देखें, इसको इस चर्चा को सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड तक ही रखते हैं, क्योंकि पूरे हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो फिर समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। हर 5 साल में एक बार या एक से ज्यादा बार, ऐसे नहीं कि एक ही बार होती है, लेकिन एक आंकड़ा में ये मिला है कि एक बार में बाढ़ आ रही है। हर 2 वर्ष में जो अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसका जो तो वो मैंने उसका जो घटना हो रही है वो दो दो साल में एक बार या कई बार 2 साल में 2 बार तक भी वो घटना हो रही है। जो अतिवृष्टि है उसका पिछले 5-7 सालों में अगर आप देखें तो वो साल भर में 6 या 6 से ज़्यादा बार उसकी इंटेंसिटी हो रही है। ये निश्चित है कि हम लोग थोड़ा सा इस मामले में ठीक है कि जो सूखा वाली बात हम करें तो वो बहुत 50 साल में 1 बार आ रहा है, लेकिन ये अतिवृष्टि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंट इंसिडेंस हो रही है, और उसके अलावा जो फ्लैश फ्लड जो आ रहे हैं, और उसके अलावा जो मैंने बाढ़ की आपको बात करी, ये उत्तराखंड का आज का आंकड़ा है कि जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। जमीन के कटाव को रोकने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर कार्य हो रहा है, और सबसे ज़्यादा और सबसे उपयोगी तो हमारा है कि हम जो वनस्पति का आच्छादन करते हैं, और जब मैं वनस्पति की बात कर रहा हूँ तो उसमें पेड़ तो हैं, लेकिन पेड़ का क्या है कि उसको बढ़ने में कम से कम 7 या 8 साल या 10 साल लगेंगे, कि जब 10 साल बाद वो जो भी इंटेंसिटी है या तेज बहाव जब हो रहा है या तेजी से जब बारिश हो रही है तो उससे भूमि कटाव को रोक सकता है, उसके लिए उसको समय चाहिए। लेकिन जैसे हमारी जो घास हैं, बहुत सारी ग्रासेज हैं तो जो कि आइडेंटिफाई हो रखी हैं कि उन ग्रासेज को अगर हम लगाते हैं तो भूमि कटाव में कमी आती है। जो आंकड़ा बताता है कि अगर कोई, आपने मान लीजिए जमीन है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है,

0: वहाँ अलग अलग ढलान के हिसाब से भूमि कटाव होता है, और वो इनवेरिएबली 20 टन प्रति हेक्टेयर से लेके, प्रति वर्ष से लेके, और 40 टन या 40 टन से ऊपर तक जाता है मिट्टी कटाव। पर वो डिपेंड करता है कि ढलाव कितना, ढलान है कितना, तीखा ढलान है, मिट्टी की जो गहराई है कितनी गहराई तक हमारे पास मिट्टी है, ये है। तो लेकिन अगर वहीं पर हमने अगर घास लगा दी, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो जो भी जोर से बारिश हो रही है, एक तो उसके जो बेग है उसमें कमी आती है, और वो पानी सिर्फ सतह पर बहने के बजाय वो पानी भूमि के अंदर जाता है। तो इसके दोनों फायदे हैं वेजिटेशन अगर हमारी है तो। एक तो जो पानी सतह पर गया तो उसका हम कहीं उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो जमीन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं वो भी कहीं डाउन स्ट्रीम्स में रिचार्ज हो रहे हैं, या भूमि में हमारे को नमी मिल रही है। और दूसरा जो भूमि का कटाव है वो भी चेक होता है। उसी तरीके से जो गदेरे वगैरह जैसे बन जाते हैं, तो उस जगह पर गली प्लगिंग जिसको हम कहते हैं, कि जो संकरी जगह है पर वहाँ पर हमने छोटा सा पहाड़ी भाषा में अगर बोले तो उसको दीवार लगा दी, छोटी सी दीवार। तो जब आप वो दीवार लगा देते हैं तो जो भी पानी ऊपर से तेजी से बहाव से आएगा उस पर गिरेगा, उसका बेग वहाँ पर रुक जाएगा, और धीरे से कितना बड़ा वॉल्यूम भी पानी का जाए मिट्टी का कटाव नहीं होगा, बजाय उससे कि जोर के बेग में बहुत कम पानी की मात्रा भी है तो अगर उसको आप डालेंगे।
1: तो जो आप बता रहे हैं घास लगाने की बात कह रहे हैं या जो गधेरे में दीवार लगाने की आप बात कह रहे हैं, उस पर कितना काम हुआ है? क्या उत्तराखंड के लोग अपने खेतों में इस तरह की घास लगा रहे हैं जहाँ पे मिट्टी कटाव का खतरा रहता है? कितनी सफलता मिली इन रणनीतियों पे?
0: जो संस्थान के जो कार्य थे, संस्थान ने तो इसको बहुत बड़े स्तर पर किया, और उसकी यूनिट गांव नहीं थी, उसका जलागम पूरा कैचमेंट एरिया। क्योंकि जब भी आप इस तरीके की भूमि कटाव की जो बात करते हैं तो इसमें पहाड़ की चोटी से लेके और पहाड़ की तलहटी तक काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो भूमि कटाव को रोकने की बात कर सकते हैं या जल के संचयन की बात कर सकते हैं। और एक जो स्लोगन भी था कि खेत का पानी खेत में, तो ये जो जलागम इसका था या वाटर सेट पे, इस संस्थान की अगर इतिहास अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ी अगर जो आप उसकी शक्ति कह लीजिए या उसकी जो एक्सपर्टीज कह लीजिए, वो इसी में थी कि इसने वाटर सेट पर काम किया। और उसमें जब, क्योंकि आप जितने भी देखेंगे, आप हमारा जो गांव है वो चारों तरफ से कहीं ना कहीं जंगलों से घिरे हुए हैं, किसी कोई गांव एकदम से पहाड़ी की चोटी पे होगा तो कोई नीचे है, बीच में कहीं पर जंगल है या उसकी साइड में जंगल है। तो जंगल का, जमीन का और मानव का, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना जंगलों के लिए पहाड़ का कोई जीवन का अस्तित्व समझ में नहीं आता, सिर्फ खेती से भी काम नहीं चलता है, तो वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है ये तीनों चीज़ें, है ना, जिसमें हम अभी एक चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि लाइव स्टॉक, पशुधन हमारा जो है। तो इसमें क्या है कि जो कैचमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ जलागम की, तो उसमें क्या होता है कि पार्शियल ट्रीटमेंट आपको जंगल में भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका गांव नीचे है, जंगल ऊपर है, जंगल में आप कुछ भी मान लीजिए इस तरीके के ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उपचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अगर खेत में करेंगे तो ऊपर से जो मिट्टी कट के आएगी, जो पानी के बहाव से जितना भी मिट्टी कट के आएगी, उसको आप नहीं रोक पाएंगे, तो आपको वहां भी ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो संस्थान का यही एक वो है, प्रयास रहता है कि वो रीच से लेकर के, टॉप से लेकर के और नीचे तक, वो जलागम का कंसेप्ट भी है।
1: बिल्कुल, बहुत
0: तो
1: महत्वपूर्ण जानकारी
0: जी
1: आपने यहाँ पे दी है। इसी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगी सर। देहरादून में साल 2025 में जब सहस्त्रधारा में आपदा आई थी तो पूरा जो क्षेत्र था वो पूरा खराब हो गया था, नष्ट हो गया था, और मृदा कटान वहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं साल 2026 में कुछ ही महीनों में वहाँ पे फिर से पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है, यानी कि काम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे किया गया उसको संवारने के लिए। तो संस्थान की क्या भूमिका वहाँ पे रही, कैसे उसको फिर से संवारा गया है?
0: सहस्रधारा वाले में भी यही सब था कि खदान बन गई, खदान बनने के बाद चूने आपने खदान किया, ओपन माइन था और मिट्टी रह नहीं गई थी, तो जो भी पत्थर थे, जो बोल्डर थे, वो लगातार वहाँ पर कटाव हो रहा था, और वो इतना ज़्यादा था कटाव कि वो लगभग लगभग आपका 600 टन प्रतिवर्ष का, यानी उस रेट पे वहाँ पर कटाव हो रहा था। तो संस्थान ने उसका सर्वे करके इनिशियली उस 36 हेक्टेयर के आसपास का एरिया को डिमार्केट किया, और उसमें ये देखा कि कहाँ कहाँ पर हम क्या, क्योंकि एक एक ही उपचार सब जगह के लिए संभव नहीं है, या मैंने उसको हम लोग नहीं यूज में कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखा कि जहाँ जहाँ पर ये तेज बहाव है, इस बहाव को की जो वेलोसिटी है उसको कैसे, उसका प्रवाह है, उस प्रवाह में कमी लाई जाए। तो गली प्लगिंग जो मैं कह रहा था, जो माने चेक डैम वगैरह जो लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं कि स्पिल है तो कहीं पे किस तरीके से करेंगे, चौड़ी गली है कैसे करेंगे, संकरी गली है किस तरीके से करेंगे। तो एक तो मेन जो था कि वो चेक डैम्स का बनाए, कि ताकि क्या होगा कि जो गाद जो बनेगी, या मान लीजिए जो तेजी से जो ढलान है, उस ढलान पर जैसे पहले भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि अगर हम उसको उसकी स्पीड को अगर रोकते हैं तो हम बहुत कुछ नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो एक तो उसको ध्यान में रखा गया, दूसरा जहाँ पर भी मिट्टी थी उस जगह पर, जो मैं ये घास वगैरह की जो आपसे बात कर रहा था कि इसको लगाया गया। उसके बाद एक बार जो नमी है, नमी की वहाँ पर माने थी, उस नमी में को ध्यान में रखते हुए और फिर उसमें प्लांटेशन वगैरह किया गया। तो एक तो ग्रासेज पहले ली, गली प्लगिंग वगैरह का ट्रीटमेंट किया, चेक डैम्स वगैरह का बनाया, जो मैं पहले कह रहा था कि पानी भूमि पे न बह करके वो इन सीटू जाएगा, अंदर में जाएगा। तो अंदर में जब पानी जाएगा तो जब आपका लियन पीरियड है, जब पानी की आवश्यकता चाहिए उस वनस्पति को भी उगने के लिए, उसकी उपलब्धता हुई, 15 से 20% तक उसके सरफेस पर नमी रही, उस नमी की वजह से घास अच्छे से पैदा हुई। घास जब हुई तो जो बारिश का जो पानी था उसकी जो इंटेंसिटी थी, तेजी से जो भाव नीचे ढलान पे होना था उसके वेग को रोका गया, और उसके बाद वनस्पति जो बड़ी वनस्पति थी उनको वहां पर लगाया गया। तो आज अगर आप देखें तो आज वहां पर लगभग लगभग अगर उसको आंकड़ों के हिसाब से कहें तो 99% से ज्यादा उसमें रोक हो गई है। और दूसरा जो वो था कि उसमें 25 से 30% तक जो नमी है उस नमी को आप रोक सकते हैं। अब इस जो ये जो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, ये तो बात हुई कि उसका ढलान को रोकने की, इसका संदेश ये है कि हम अगर इसको खेती से जोड़ें, तो अगर हमने खेती में, और हम लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं, कोई मैं कोई नई बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है, हम लोग खेत में पेड़ हैं, जहां भी हमारे पेड़ हैं, जहां भी हम लोग घास वगैरह लगाते हैं, वहां अगर आप देखें तो हमको जो नमी है वो नमी मिलती है, अगर उसमें जो हमके रबी क्रॉप के लिए, जहां आपके घास वगैरह बंट्स पर हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं लगे है किसी वजह से, वहां आप देखेंगे वहां पर मिट्टी में नमी की कमी रहेगी। तो जो जिसको हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग इरिगेशन भी, क्योंकि इरिगेशन के साधन नहीं है, आप पूरा वर्षा आधारित भूमि उस पर खेती करते हैं हम लोग तो, और ये भी मानसून आधारित बारिश है हमारे को, विंटर्स में हम लोग बहुत कम रेन्स हमको मिल रही है, तो उसमें जो दूसरी क्रॉप है उसके पैदावार बढ़ाने के लिए हमको बहुत कुछ नमी की उपलब्धता हो जाती है जब हम उस खेती के साथ पौधों को भी जोड़ रहे हैं।
1: ठीक है, हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं सर, तो जलवायु परिवर्तन तो यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसका असर जो यहाँ की पहचान है, यहाँ के धारे, यहाँ के नौले, उन पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धारे नौले आज की डेट में हर गांव में आप देखेंगे तो सूख गए हैं, तो उनको बचाने के लिए, उसमें फिर से प्राकृतिक तौर पर पानी आ सके, किन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, क्या ये संभव है उनको फिर से बचा पाना?
0: नदी धारे एक सबसे, अगर आप देखें पहाड़ की, ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये पिछले, ये नहीं कि ये अभी जलवायु परिवर्तन जब से हुआ तब से ही हम ये चीज़ देख रहे हैं, उससे पहले से भी हम लोग ये देख रहे हैं। और क्योंकि बहुत ये फ्रेजाइल जोन है, आप कहीं पर भी कोई भी जो का विकास का कार्य आप लीजिए, वहाँ आप देखेंगे मान लीजिए जैसे कि रोड बन रही है, रोड का जैसे ही कटान शुरू होता है तो आपने देखा होगा कि पानी अगर कहीं पर निकल रहा था तो पानी वहां से शिफ्ट होकर के डाउन स्ट्रीम्स में जाना शुरू होता है। तो मिट्टी हमारी बहुत पोरस है, उसमें वो नहीं है कि हम जहां पर पानी हमको मिल रहा है आज, या जहां पर हमारा कोई नाला है वो नाला वहीं पर हमको पानी, अगर हम जरा सी भी उसकी संरचना से अगर जरा सी भी छेड़खानी करी तो वो पानी कहीं ना कहीं उससे दरक करके और नीचे डाउन स्ट्रीम्स में वो पानी कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है। तो नदी नाले से सिर्फ और सिर्फ उसको डायरेक्ट प्लांटेशन से भी ये नहीं कह सकते कि जहां पर प्लांटेशन हमने कर दिया उससे आप रिजुविनेट वहीं पर दोबारा से हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि एक तो उन जगहों को हम लोग साफ सफाई रखें, जो भी वहां पर अनावश्यक जिस तरीके की वनस्पति वगैरह है उसको वहां पर हटा करके रखें, और अपर कैचमेंट में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर वहां पर सूखा है किसी वजह से, कोई भी हमारी वनस्पति अगर नहीं है तो हम, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं उसको लाना पड़ेगा, जो भी पानी गिर रहा है उस पानी को हमको वहां पर रोकना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा पानी जो भी है ये भी एक वो है, मैंने रिसोर्स

0: है हमारा, ये प्राकृतिक संसाधन हमारा कहीं से इतना जोर से, नदी में हमारे पास खूब पानी है, लेकिन अगर आप नदी से ऊपर चले जाएं 100 मीटर ऊपर जाएं तो हमारे पास पीने का भी पानी नहीं है। तो इसको कैसे आप हिल टॉप में रोक सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जैसे कहीं पर आप छोटे छोटे कंटूर ट्रेंच कर देते हैं, आपने मान लीजिए 4 मीटर या 3 मीटर चौड़ाई में और 1-1.5 फीट का चौड़ा और 3 या 2 मीटर का लेंथ में और 1-1.5 फीट के आपने गहरा करके मान लीजिए बना दिए। जो भी वर्षा का जल है आपका उसमें जा रहा है, उसमें जब वो जाता है तो वो भूमि के अंदर जाएगा। और अगर आप ऊपर से अपर कैचमेंट से धीरे धीरे करके इस तरीके से ट्रीटमेंट करके ला रहे हैं तो वो फिर पानी का हमारा जो जीर्णोद्धार हो सकता है। लेकिन इसमें जियोलॉजिकल जो संरचनाएं हैं वो भी बहुत कुछ डिपेंड करती हैं, उस पर भी बहुत कुछ ये चीज़ें आधारित हैं। लेकिन ऐसी जगह का इनक्रोचमेंट ना हो जो कि दुर्भाग्यवश बहुत सारी जगह जो पानी का जो नाले हमारे जो सूख रहे हैं या जो गदेरों में जो पानी नहीं है, उसका एक कारण ये भी बहुत बड़ा है कि हमने कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया है अपर कैचमेंट एरिया में। तो जब कभी भी उसको हम ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे या वहाँ पर हमारा कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे तो हमको इसको रिजुविनेट करने में दिक्कत होगी।
1: बिल्कुल। तो सर, जल संरक्षण को लेके अभी योगी देखिए उत्तराखंड में अधिकांश पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पानी की समस्या अब देखी जा रही है, तो जल संरक्षण को लेके विभाग किस तरीके से किन रणनीतियों पे काम कर रहा है?
0: देखिए हमारा जो काम है ये सिर्फ शोध का काम है और इसको बड़े स्तर पर ट्रांसलेट किया जा सकता है विकास कार्यों की वजह से। हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो किसी गांव को लेकर के हो, जैसे कि आपने अभी बात करी कि जैसे यही सहस्रधारा वाला या और जितने हमारे 5-6-7 जो मॉडल वाटर शेड हैं, सक्सेसफुल जो हैं जो मॉडल्स। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं कि हमको समग्र विकास की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पानी अगर बचाना है तो पानी बचाने के लिए हमको कहीं ना कहीं जो वनस्पति पर भी काम करना पड़ेगा। एक तरफा काम हम नहीं कर सकते या उससे हम लोग नहीं मतलब उससे कुछ भी हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो उसके लिए जो भूमि कटाव है उसको हमको रोकना पड़ेगा, जो हमको जो जंगल वगैरह हैं उन जंगलों को बचाना पड़ेगा। जंगल बचेंगे उसमें ग्रासेज वगैरह होंगी तो उससे जो भूमि का कटान हो रहा है वो कटान हमारा रुकेगा, कटान रुकेगा नमी उसमें जो है वो नमी अगर रहेगी तो वो पानी निकलेगा कहाँ से? जो भी भूमि की नमी है वही तो कहीं से आउटलेट होकर के उनका एक्सेस एक्सेस मॉइस्चर जो है वो उस धारे में आ रहा है। तो उस एक्सेस मॉइस्चर को हमको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। और हम कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं कि हमारे पास 1500 1600 2000 mm तक का रेनफॉल है। आप ये सोचिए कि अगर यही परिस्थिति अगर हमको रेनफॉल जो हमारा आज राजस्थान में उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें ऐसे जोन है कि मान लीजिए 500 या 600 mm बारिश होती तब हमारी क्या स्थिति होती? तो इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इन सब चीज़ों को और ये समग्र रूप में ही संभव है। किसी एक ट्रीटमेंट या एक तकनीक पर हम कहें कि ये पानी रिस्टोर हो जाएगा या भूमि का कटाव रुक जाएगा ये संभव नहीं है। विकास के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है कहीं उन पर कोई इसका विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी जगह ऐसे उदाहरण है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि रोड आपने जैसे बनाई मान लीजिए उसके लिए आपने कुछ भी जियोलॉजी है उसके साथ जो भी डिस्टर्बेंसेज आपने वो तो आएंगे, जहां आपने वो डिस्टर्बेंसेज किए वहीं आपका पानी का स्रोत है वो शिफ्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं मत्स्य पालन की, तो फिर ये आजीविका से कैसे जुड़ सकती है उत्तराखंड में?
0: मत्स्य पालन का स्कोप है जो हमारे जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें तो लिमिटेड स्कोप पर, मैं कहूँगा कि लिमिटेड स्कोप पर होगा। लिमिटेड स्कोप इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम वहाँ पर बहुत बड़ा वाटर बॉडीज नहीं बना सकते हैं और अगर वो है भी तो वो इकोनॉमिकली वाइबल हो पाएगी उसमें थोड़ा सा संदेह है। लेकिन जो भी हमारे निचले क्षेत्र हैं हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें हम लोगों के पास इसकी तकनीकें उपलब्ध हैं कि हम लोग इसको बिना जो फीड वगैरह दे करके हम लोग मत्स्य पालन कर सकते हैं और देश भर में बहुत सारे राज्य कर रहे हैं। हमारे आप देख लीजिए कि हमारे जितने उत्तराखंड के साथ ही जो राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ का आज आप अगर देखें फिश का प्रोडक्शन तो हमसे कम से कम 10 गुना आगे है। उनका बीज का उत्पादन आज से 4-5 साल पहले तक वो लोग बीज के लिए पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर निर्भर रहते थे, सारे मैंने ईस्टर्न इंडिया के सारे राज्य उन पर निर्भर रहते थे, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ भी था। लेकिन आज अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का उदाहरण लें तो उनका अपना मत्स्य पालन के बीज में भी उन लोगों ने सफलता पाई है। हम लोग यहाँ पर जो कंपोजिट फिश कल्चर हम कहते हैं उसको, कि उसमें 3 एक्जोटिक

0: और तीन इंडियन कार्प्स का कंपोजिशन है, उसकी प्रोडक्टिविटी फुट हिल्स में 5 से 6 टन तक की मछली का उत्पादन प्रति हेक्टेयर हम लोग कर सकते हैं। उसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई कंसंट्रेट फीड नहीं देना है, हमको सिर्फ क्या करना है कि हमको समेकित कृषि कर देनी है। समेकित मतलब कि जो मछली है उसके साथ हम मुर्गी का पालन करें, उसके बंड पर जो मुर्गी का जो जो वेस्ट आ रहा है, वो जो पोल्ट्री मैन्योर है, ड्रॉपिंग्स जो आ रही हैं, उसको हम धो करके उसमें डाल दें, तो वो क्या करेगा, जो पॉन्ड का जो उसको फर्टिलाइज करेगा, पानी जो है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स बनेंगे, उसमें जूप्लैंक्टन्स बनेंगे जिनको कि आपका मच्छी खाती है, और उसके अलावा जो भी उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसके खाने से, उससे होगा, तो उसको हम कुक्कुट पालन से जोड़ सकते हैं, बतख पालन से जोड़ सकते हैं, गाय है गाय से जोड़ सकते हैं, भैंस है भैंस को उसके मैंने आपने पॉन्ड बनाया, भैंस रखी, भैंस का जो गोबर है सीधे सीधे देना है। मैं ये उसको ऐसा नहीं है कि आपने कहीं उसको पहले खाद बनाई तब आप उसमें दीजिए, आप सीधे उसको उसमें दे सकते हैं, उसी रैबिट के साथ उसको जोड़ सकते हैं। और इसके अलग अलग वो भी हैं कि मान लीजिए जैसे जो लोअर हेल्थ की बात करें तो 500 अगर मुर्गी हैं तो 500 मुर्गी 1 हेक्टेयर फिश पॉन्ड को फर्टिलाइज कर सकती हैं, जिसमें कि मैं 5 से 6 टन तक फिश प्रोडक्शन की बात आपसे कर रहा था। तो उसी तरीके से अगर छोटा पॉन्ड है तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि 10 मुर्गी चाहिए या 12 मुर्गी चाहिए या आपको 5। उसी तरीके से जो बकरी है, हमारी 55 बकरी अगर आप रखते हैं और उसको मछली उत्पादन के साथ जोड़ते हैं तो वो 1 हेक्टेयर के पॉन्ड के लिए आपका जो गोबर है उसका मैंने जो इसका बकरी का जो गोबर है वो सफिशियंट है। सिर्फ बकरी के गोबर में एक ही चीज करनी पड़ती है कि आपने जैसे देखा होगा जो ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो बड़ी जल्दी हार्ड हो जाती हैं, खाली उसको थोड़ा सा ले करके और फार्मर्स थोड़ा कूट करके और उसको पॉन्ड में बिखेर दें तो बहुत जल्दी फिर जो फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लैंक्टन्स बन पाते हैं। उसी तरीके से 5 गाय है तो 5 गाय का जो गोबर होगा वो पूरा सफिशियंट पर्याप्त है 1 हेक्टेयर के फिश पॉन्ड के लिए, और 2 भैंस।
1: ठीक है, यानी कि समेकित कृषि प्रणाली का किसानों को काफी लाभ हो सकता है अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो उस तरीके से अगर काम करते हैं तो।
0: बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता
1: जो उदाहरण के तौर पे आपने बताया समेकित कृषि प्रणाली किस तरीके से करनी है, अगर उस तरीके से आप कार्य करते हैं तो आप अपनी रोजगार को बढ़ा सकते हैं, आय के साधन को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे हम ये लेना चाहेंगे, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, उत्तराखंड के लिए आने वाले 5 वर्षों में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं विभाग के द्वारा?
0: देखिए। विभाग की जो प्राथमिकता है, जो मैंने आपसे कहा था कि ये रोड मैप हमने ऑलरेडी बनाया है पूरे हिमालय को लेकर के, और जो उत्तराखंड, क्योंकि उसमें उत्तराखंड भी एक राज्य है, और क्योंकि जो राष्ट्रीय जो नीति होती है और कृषि नीति जो होती है वो ये है कि पूरे कैसे इस हिमालय क्षेत्र की जो प्राथमिकता है उनको चिन्हित किया गया है। कृषि संबंधित जो चैलेंज है कि क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा इश्यू है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, जिसमें कि मैं कह रहा था कि आपसे कि जो सीड और प्लांटिंग मटेरियल की जो बात कर रहा था कि उसको उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्या उसके माने घटक होंगे, किस तरीके से हम उस पर कार्य करेंगे। जो पहाड़ की एक और जो समस्या जो माइग्रेशन का है, और वो माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन तभी संभव है कि जब हमको उतनी आजीविका उसके घर के पास में दे सकें, उसके लिए वो तकनीक को उन तक पहुंचाने की जरूरत है, आम जन तक। जो हमारा बंटा हुआ है या अलग अलग जगह पर हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को एकत्रित करके, और तब हिमालय की जो कंप्लीट नीति है उसका एक्शन प्लान है, वो कंप्लीट एक्शन प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, वो एक नीति है। और निश्चित तौर पर कि जो बिना मिट्टी क्षरण को रोके हुए और बिना पानी के कटाव को रोके हुए कोई भी, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें या किसी और भूमि की आप बात कर लें, वो संभव नहीं है। तो उस पर सतत रूप से कार्य करना वो हमारी प्राथमिकताएं हैं, और इसमें जन सहभागिता अवेयरनेस वो बहुत जरूरी है। वो चाहे वो हमारे बहुत सारे जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, इवन वहाँ पर भी जा करके, और हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कैसे इसके प्रति हमारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम लोग जागरूक बने।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का असर तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उत्तराखंड के जल, जंगल और यहाँ की जो वनस्पति है ये यहाँ की पहचान है, अब इसे कैसे बचाया जाए, कैसे कौन सी वनस्पति लगाई जाए ताकि यहाँ का जल संरक्षण भी हो, यहाँ के जंगल भी बचे और उत्तराखंड की पहचान जो बनी है पूरे देश दुनिया में वो बरकरार रहे, इस पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और किसानों को दिए गए सुझाव ताकि उनके आय के जो साधन है वो बढ़ सके, उनको और अधिक रोजगार स्वरोजगार मिल सके, इस पर हमने बात की। चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए विषय के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार एकांश देहरादून द्वारा विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी

0: दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल The Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर

0: अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो

0: पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: .5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। आज हम श्रद्धा पूर्वक याद कर रहे हैं भारतीय सेना के उस जांबाज अधिकारी को जिन्होंने देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेजर विवेक गुप्ता की, जिन्हें कारगिल युद्ध में अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्रोताओ, मेजर विवेक का जन्म 2 जनवरी सन 1970 को देहरादून में हुआ। उनके पिता थे लेफ्टिनेंट कर्नल B.R.S. गुप्ता। भारतीय सेना में ये एक अधिकारी थे। सेना के वातावरण में पले बड़े विवेक बचपन से ही अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और साहस के संस्कारों से ओतप्रोत थे। बचपन से ही उनका सपना था देश सेवा का और सेना में जाने का।

هر صبح و شام. अग्नि पथ का हूँ पथिक मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम.

श्रोताओं, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद विवेक गुप्ता ने एनडीए में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने कठोर सैन्य प्रशिक्षण लिया और नेतृत्व के गुण विकसित किए। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण पूरा किया और 13 जून 1992 को उन्होंने भारतीय सेना की गौरवशाली रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया और उस दिन उनका देश सेवा में जाने का सपना पूरा हुआ।

श्रोताओं, सेना में आने के बाद मेजर विवेक गुप्ता ने अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से सबको प्रभावित किया। उन्होंने आतंकवादी विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र भी मिला। उनकी दक्षता देखकर उन्हें मऊ स्थित इन्फेंट्री स्कूल में हथियार प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया। वो एक बहादुर सैनिक थे, साथ ही युवा सैनिकों के प्रेरणा स्रोत भी थे।

है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है।

श्रोताओं, दिन था 13 जून, आज ही का दिन। सन था सन 1999 और वक्त था रात का। ऊंची पहाड़ियां, कड़ाके की ठंड, दुश्मन की मशीन गनों की गोलियां और ऊपर से बरसते गोले। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मेजर विवेक गुप्ता अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। जब दुश्मन की कई दिशाओं से हो रही गोलाबारी ने आगे बढ़ना कठिन कर दिया, तब उन्होंने स्वयं रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की चौकी पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो रुके नहीं। वो दुश्मन के बंकरों तक पहुंच गए और हाथापाई की लड़ाई की और 3 दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया। उनकी वीरता देखकर उनके साथी सैनिकों में नया उत्साह भर गया और उन्होंने दुश्मन की उस चौकी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। मेजर विवेक गुप्ता ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और इतिहास का एक भावुक तथ्य श्रोताओं ये भी था कि मेजर विवेक गुप्ता 13 जून सन 1992 को सेना में शामिल हुए थे और ठीक 7 वर्ष के बाद 13 जून 1999 को देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जिस दिन उन्होंने वर्दी पहनी थी, उसी दिन उन्होंने वर्दी की शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। हम नमन करते हैं मेजर विवेक गुप्ता को।

श्रोताओं, उनकी असाधारण वीरता, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। श्रोताओं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल आदेश का नाम नहीं, बल्कि आगे चलकर उदाहरण प्रस्तुत करने का नाम है। उन्होंने दिखाया कि एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म की रक्षा है। हम उनके साहस, समर्पण, बलिदान को प्रणाम करते हैं और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 3:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत गाने नए तराने।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की मधुर आवाज में ये गीत, फिल्म थी आशिकी टू। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एमएम कीरवानी और पलक मुच्छल की आवाज में, फिल्म का नाम बाहुबली।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: सदशमलव 5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत गाने नए तराने। अगला तराना आप तक पहुंच रहा है फिल्म दम लगा के हाइशा से, पैपॉन की आवाज में, अनु मलिक का संगीत, शब्द रचना वरुण ग्रोवर की।

अभी आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज में ये गीत। फिल्म थी डर्टी पिक्चर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी प्यार तो होना ही था, आवाज थी आशा भोसले और उदित नारायण की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले से। गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: गाने नए तराने कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला तराना।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म थी पैडमैन। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम हम तुम्हारे हैं सनम। धुन तैयार की है निखिल विनय ने, गीतकार हैं समीर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज़।

0: हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। इनमें 16 मित्र राष्ट्रों के 34 कैडेट हैं। इस वर्ष की पासिंग आउट परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने पहली बार पास आउट हो रही महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे देश में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम बताया। देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की पहल की। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे बच्चों के चिन्हीकरण और उपचार की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत अब तक 60% से अधिक गणना प्रपत्रों का वितरण किया गया। इसके लिए जिले के लोहाघाट और चंपावत विधानसभा में 470 बूथ लेवल अधिकारी बनाए गए हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए गए विशेष अभियान में हरिद्वार में कोतवाली नगर पुलिस ने 21 फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया। ये सभी आरोपित साधु संतों का वेश धारण कर महिलाओं और युवाओं को घरेलू, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का झूठा प्रलोभन देकर ठग रहे थे। नैनीताल के कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले बाबा नीव करोरी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा दिवस मेले को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था 16 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। प्रदेश के जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। समय 4:02 स्टूडियो की घड़ी से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए अग्नि कुमार वर्मा से राग भीम पलासी में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे अग्नि कुमार वर्मा से राग भीम पलासी में सितार वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्य

यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम 7.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम एक कलाकार में। आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं उस महान गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर और अभिनेता को, जो अपने देशभक्ति गीतों, विशेषतः सन 1965 में आई मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद के गीतों और संगीत के लिए जाने जाते थे। उनका नाम था प्रेम धवन। इनके बारे में जानेंगे और भी, लेकिन पहले आप सुनिए इन्हीं की शब्दित रचना फिल्म एक फूल दो माली से।

श्रोताओं, प्रेम धवन जी का जन्म 13 जून 1923 को अंबाला हरियाणा में हुआ। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में जेल अधीक्षक के पद पर तैनात थे। इन्होंने लाहौर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। प्रेम धवन ने सन 1946 में लाहौर में संगीतकार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आज और कल में बतौर सहायक बनकर अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वो मुंबई चले आए और इंडियन पीपुल्स थिएटर से जुड़ गए। इसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए इन्हीं के द्वारा लिखा ये गीत फिल्म उपकार से।

इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़ने के दौरान प्रेम धवन जी की मुलाकात हुई प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार रवि शंकर से। उनसे उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका मिला। सन 1946 में उन्होंने बतौर गीतकार धरती के लाल फिल्म के लिए गीत लिखे। इसी बीच उन्होंने आराम उपकार मेरा नाम जोकर गीत आसमान शोला और शबनम काबुली वाला एक फूल दो माली पूरब और पश्चिम जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे और इन गीतों ने प्रेम धवन को एक नई पहचान दी।

श्रोताओं, बतौर संगीतकार उन्होंने शहीद फिल्म के लिए संगीत तैयार किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म ने प्रेम धवन जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और सिर्फ इनको ही नहीं, बल्कि अभिनेता मनोज कुमार की प्रतिष्ठा को भी काफी आगे बढ़ाया।

श्रोताओं, प्रेम धवन जी ने जहां बतौर गीतकार और संगीतकार के रूप में अपने आप को इंडस्ट्री में प्रतिष्ठित किया, वहीं इन्होंने दो फिल्मों लाजवाब और गूंज उठी शहनाई में अभिनय भी किया। इसके अलावा इन्होंने 7 फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सन 1971 में नानक दुखिया सब संसार में इस गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया।

लेकिन सन 1980 के दशक के अंत तक उनका करियर कुछ थम सा गया और 7 मई सन 2001 को हृदयाघात आने के कारण उनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा को अपने बेहतरीन गीतों से समृद्ध करने वाले प्रेम धवन साहब को हम नमन करते हैं और इसी के साथ सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, इन्हीं की शब्द रचना फिल्म मेरा नाम जोकर से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन

0: में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्नि वीरवायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 6वें ओवर में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल दिनांक 14 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात्रि 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मधुमेह रोग और आयुर्वेद इलाज विषय पर डॉक्टर हिमांशु जोशी से विनय ध्यानी की बातचीत। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कार्यक्रम फिल्म संगीत आज आप सुनेंगे शाम 7:40 पर। शाम 7:50 पर सुनिएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति योजना संवाद। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। रात्रि 8:10 पर आज सुनिएगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। प्रस्तुत है कल दिनांक 14 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा चिंतन, विषय रहेगा शिक्षा का महत्व मनुष्य का चिंतन, वाचन स्वर मंजुला नेगी का। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत, कार्यक्रम शैल संगीत सुनिएगा। सुबह 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आयुष जोशी से गढ़वाली लोकगीत। कल सुबह 8:30 पर श्रोता सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। सुबह 10:02 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय रहेगा कल सुबह 10:12 पर। दोपहर 1:15 पर, शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 और रात्रि 9:30 पर।

कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 10:35 पर कल आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के स्वर में पंजाबी लोकगीत। सुबह 11 सुनेगा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंडल, और कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। कल शाम 4:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे आशीष कुकरेती का ख्याल गायन राग मधुबंती में। कार्यक्रम एक कलाकार आप सुनेंगे शाम 4:30 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुन पाएंगे शाम 5:45 पर, और शाम 5:10 पर सुनेगा युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 कल आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। रात्रि 8 सुनेगा श्रीमती नवनिधि गुप्ता से काव्यांजलि। ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी से शाम 5:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं सक्षम पंत
1: और मैं शिवानी कंडवाल आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ। और

0: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आज का दिन यानी 13 जून का दिन भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक और गर्व से भरा अध्याय बन गया।
2: बिल्कुल दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून के 93 वर्षों के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स ने पुरुष कैडेट्स के साथ संयुक्त रूप से ट्रेनिंग पूरी करके भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया।
1: आज पहली बार नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी NDA से प्रशिक्षित होकर निकली महिला कैडेट्स को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
2: दोस्तों, ये केवल एक पासिंग आउट परेड नहीं थी, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला

0: महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समान अवसर और नए भारत की सोच का प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। वैसे तो दोस्तों इससे पहले भी लेफ्टिनेंट साई जाधव ने दिसंबर 2025 में IMA से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा था।
0: हाँ, लेकिन NDA मार्क से नियमित सेना में शामिल होकर कमीशन प्राप्त करने वाला ये 8 महिला कैडेट्स का पहला पूर्ण बैच बना जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया।
1: और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने।
0: दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में मौजूद रहे।
1: हालांकि भारतीय सेना में पहले से महिला अधिकारी कार्यरत हैं, लेकिन लंबे समय तक NDA के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद रहे।
0: लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों जून 2022 में महिलाओं की NDA में एंट्री शुरू हुई और तभी से हर 6 महीने में महिला कैडेट्स के नए बैच NDA का हिस्सा बनने लगे।
1: दोस्तों आपको ये भी बता दें कि एयरफोर्स एकेडमी से भी आज कुल 2,231 फ्लाइट कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 194 पुरुष और 47 महिला शामिल हैं। इन्होंने NDA से ही अपनी ग्रेजुएशन पास की और इनमें 5 महिला कैडेट भी शामिल हैं।
0: दोस्तों, और IMA के कुल 515 कैडेट्स पास आउट हुए जिनमें 16 देशों के 34 विदेशी कैडेट्स भी शामिल रहे।
1: इनमें NDA के पहले बैच की 9 महिला कैडेट थीं जिन्होंने अंतिम पग पार कर भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। और इन 9 महिला अधिकारियों में से 3 भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी कि तोपखाने में अधिकारी बनी है।
0: दोस्तों, IMA की पासिंग आउट परेड में अंतिम पग सबसे भावुक और गौरवपूर्ण परंपराओं में से एक माना जाता है। यही वो क्षण होता है जब कैडेट्स परेड ग्राउंड पर बने अंतिम पग को पार करते ही भारतीय सेना के अधिकारी बन जाते हैं।
1: और इस बार पहली बार महिला कैडेट ने इस अंतिम पग को पार किया और भारतीय सेना में अधिकारी बन इतिहास रच दिया।
0: ये केवल महिलाओं की उपलब्धि नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की बदलती सोच समानता और सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण भी बन गया।
1: इन महिला अधिकारियों ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी कि देश सेवा का जज्बा ना तो किसी सीमा से बंध पाता है और ना ही किसी भी भेदभाव को स्वीकार करता है।
0: बिल्कुल, उनके कदमों की गूंज आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बन गई और भारतीय सेना के इतिहास में ये दिन दोस्तों हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसी के साथ आइए सुनते हैं शंकर महादेवन की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत मूवी लक्ष्य से।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: दोस्तों, आज के समय में रोबोटिक्स सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जुड़ने से रोबोट इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने में भी सक्षम होंगे।
4: सही कहा शिवानी तुमने, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के साथ ही हर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे कि भविष्य में ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसान जैसे दिखने वाले और काम करने वाले रोबोट्स आम हो जाएंगे।
3: बिल्कुल, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ऐसे रोबोट्स पर काम कर रही है दोस्तों, और आने वाले समय में ये रोबोट्स घर के काम, बुजुर्गों की देखभाल या बच्चों की सुरक्षा जैसे

0: कामों में हम इंसानों के सबसे बड़े सहायक बन जाएंगे।
1: इसके अलावा भविष्य में नैनोबॉट्स यानी बेहद छोटे रोबोट्स मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। ये शरीर और खून में जाकर बीमारियों का इलाज करने और ख़राब सेल्स को ठीक करने में मदद करेंगे। साथ ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में भी रोबोट्स का इस्तेमाल आम हो जाएगा।
0: और साथ ही दोस्तों, बड़ी फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स बिना रुके और बिना गलती के काम करेंगे। बड़ी कंपनीज़ में ड्रोन और ऑटोमेटिक डिलीवरी रोबोट्स के ज़रिए सामान पहुंचाना भविष्य में बिल्कुल सामान्य सी बात होगी।
1: बिल्कुल, साथ ही रोज़गार के नए अवसर भी खुलेंगे। कई लोगों को ये चीज़ लगती है कि रोबोट्स नौकरियों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके कारण नए अवसर भी पैदा होंगे।
0: सही कहा सक्षम। AI इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग और रोबोट मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में लाखों नई नौकरियां बनने की संभावनाएं दोस्तों।
1: अब भारत में बहुत ही ग्रास रूट लेवल से ही बच्चों को स्कूल में कोडिंग, AI और सेंसर टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में वो तकनीक की दुनिया में समझ सकें, उसे अच्छी तरीके से और उसी तरीके से तैयार हों।
0: बिल्कुल दोस्तों, रोबोटिक्स आज का सबसे तेज़ी से बढ़ता और हाई सैलरी वाला करियर क्षेत्र भी बन चुका है। इसमें करियर बनाने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ज़रूरी है।
1: इसके बाद आप चाहें तो BTech इन रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर AI जैसी डिग्रीज को परस्यू कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, रोबोटिक्स आने वाले समय में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसानी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। ये दुनिया को तेज़, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक बनाएगा।
1: और अगर इंसान और तकनीक सही दिशा में साथ बढ़ेंगे तो भविष्य की दुनिया पहले से कई ज़्यादा आधुनिक और शक्तिशाली होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है अभिजीत और सौम्या ने, जिसे लिया गया है फिल्म धूम से।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने पिछले एक दशक से अधिक समय में देश के विकास, शासन और जन कल्याण की दिशा को प्रभावित किया है। दोस्तों, बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष के बारे में।
1: दोस्तों, किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है उसका मूल्यांकन केवल उसके वर्षों से ही नहीं किया जाता, बल्कि उसकी नीतियों और योजनाओं से किया जाता है कि उन्होंने कितना प्रभाव डाला है आम जनमानस के जीवन पर।
0: बिल्कुल, पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने आधारभूत ढांचे, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में कई पहलें शुरू की हैं।
1: उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया, वहीं डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने शासन को और अधिक तकनीकी आधारित बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के जरिए पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया दोस्तों। इसके अलावा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, ये भी बहुत चर्चा में रहा।
1: सही। और इसी के साथ दोस्तों, जैसे उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजनाएं भी चलाई गई, और इन योजनाओं का जो उद्देश्य था वो मुख्यतः यही था कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है, जो भी आम नागरिकों की ज़िंदगी है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो पहुँचाई जा सकें।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी जारी, इसी पर और भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म डेली सिक्स से मोहित चौहान की आवाज़ में।

0: दोस्तों, गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष के बारे में। और अब दोस्तों, अगर आधारभूत संरचना की बात करें तो पिछले वर्षों में एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कई परियोजनाएं शुरू की गई।
1: वहीं पे दोस्तों, युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से रोजगार, नवाचार और कौशल विकास को भी काफी प्रोत्साहन मिला है।
0: आज भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देशों में गिना जाता है और इसमें युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
1: हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जब हम उपलब्धियां देखते हैं तो उसके साथ साथ ही हमें उसकी चुनौतियों और सुधार की कहां कहां जरूरत है, इस पर चर्चा करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नागरिक विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं और विकास की दिशा पर अपने विचार रखते हैं।
1: और युवाओं के लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारी योजनाएं कैसे काम करती हैं,
0: बिल्कुल,
1: उनका लाभ किसे मिलता है और वो देश के विकास में क्या योगदान देती हैं।
0: क्योंकि जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होते हैं।
1: तो दोस्तों, केंद्र सरकार के 12 वर्ष को समझना केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ज़रूरी नहीं है, बल्कि विकास, नीति निर्माण और जनहित के नज़रिए से भी इसको देखना उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और एक जागरूक युवा के रूप में हमें तथ्यों को जानना, समझना और अपने विचार बनाने चाहिए।
1: क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब नागरिक जागरूक हों और सहभागी निभाएं अपनी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे लिया गया है फिल्म बोल बच्चन से, गाया है हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों, आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम का सफर यहीं पर संपन्न होता है, मगर जाने से पहले दोस्तों आप हमको ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001।
1: दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com, और साथ ही आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और हमें दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 5:45 हुए हैं। अब सुनिए पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुन द्वारा सभी भेबंदों तय विनय ध्यान छोड़ बट की नमस्कार सेवा सोंगी
1: दगड़म मिछ आप दगड़ रुचि रावत मैं तर पांपड़े भी आप सभी तय प्रणाम पहला अगर से असोंगी।
0: आज कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, खास कर के हमारा उत्तराखंड का वास्ता और वे से ऐंच देहरादून का खातिर और वे से ऐंच भारतीय सैन्य अकादमी का खातिर। देखा ये अकादमी न कितना जो हमारा जो सैनिक छन, हमारा जो सैन्य अफसर छन, वो दिया छन देश ने, देश ही ना बल्कि मित्र राष्ट्रों तक भी दीना छन। तो आज भारत की जो राष्ट्रपति छन माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यक पहुंचिन और उन सभी जो नए सेना में शामिल हुई भारतीय सेना में अफसर उन्हें संबोधित कर

0: और बोली कि भाई आज बेटे की आप था एक नए जीवन मिलने चाहिए
1: जी
0: और नई तरीके से अपन सर्वोपरि अपन पहले देश तरक।
1: बिल्कुल, जीवन का दगड़ी दगड़ी उन था एक नई जिम्मेदारी में नीचे। और ध्यानी जी, लगभग 515 जो जेंटलमैन छा उन परेड पास आउट करी, जे हमारा 481 युवा भारत का अधिकारी बड़ी ना, वरनी जो हमारा 34 साउ मित्र देशों का अधिकारी बनाला।
0: बिल्कुल। तो देखा एक सगत जो इन बोली जान की एक अकादमी को जो एक उद्देश्य होंगे और
1: जी
0: खास करके आप तो मालूम ही होल कि साहब साल में दुईदा ये
1: जी
0: जो पासिंग आउट जैसे हम दीक्षांत परेड बोलता वही को आयोजन करे जान।
1: जी
0: तो कुल मिला कि वो ना कि साहब राष्ट्रपति 2 दिन का प्रवास पर यखरेन बिहार
1: जी
0: आ गया चा और अपन जो निकेतन च राष्ट्रपति निकेतन वकून प्रवास कार और आज वो शामिल हुई दीक्षांत परेड में जो कि भारतीय सैन्य अकादमी की परेड से।
1: जी
0: कुल मिला कि वो एक इन सपना साकार होने की बात होंगे जबकि बुए बाप अपन बच्चा का कंधों पर सितारा लगा
1: बिल्कुल
0: दे वो भी एक यादगार आयोजन हों।
1: जी
0: और पासिंग आउट परेड जैसे कि हम दीक्षांत परेड बना छुआ
1: जी
0: वही तय देखना कुणी जो परिवार का लोग छन सैन्य परिवार का लोग छन अधिकारी छन वो सब उत्साहित रहे।
1: बिल्कुल ध्यानी जी, कि अगर हम अभिभावकों की भी बात कर दें तो कखी ना कखी उनकी मेहनत बीच वहाँ का पिसना है ना। जब भी बच्चा हों तो हमारे एक सपना दिखना शुरू कर देना कि बच्चा अगना वे एक भविष्य अच्छा वालू है ना। और वनी जो कैडेट सी ना वो भी इतना मेहनत कर दिन कि शायद जो मेडल हों ना वो इतना आसान नहीं होंगे है ना।
0: बिल्कुल। अरे भाई अब बोलता भी छिन्ना साहब की फौज की नौकरी जन विवाह लेकिन जो
1: जी
0: प्रशिक्षण होंद जो
1: जी
0: ट्रेनिंग होंद वो बड़ी कठिन होंद
1: जी
0: संघर्ष वाली। अब बहुत सारा लोग तो मायूस भी होंद
1: जी
0: प्रशिक्षण का दौरान ही
1: जी
0: लेकिन ये सैन्य अधिकारी अब जब अपने अपने बटालियनों का संभाल वाला
1: जी
0: एक सेना का अधिकारी का तौर पर फिर देखें तब लग चुके हाँ भाई वो एक सुंदर नेतृत्व कना छन।
1: जी
0: और हम बहुत भाग्यशाली छुआ उत्तराखंड राज्य जखमा की
1: बिल्कुल
0: सैन्य प्रदेश भी अखंड बोले जान
1: जी
0: तो हम सिर्फ सेना में ही नहीं भेजदा बल्कि सैनिक और सैन्य अफसर भी पैदा कर
1: बिल्कुल
0: ये वह धरती छ।
1: बिल्कुल ध्यानी जी, इले देव भूमि को है सैन्य भूमि वीर भूमि बोले जान, जो कि हम ते आज बुनम बहुत गौरवान्वित महसूस करना हम भी कि हाँ हम भी देव भूमि बटे छे हैं।
0: बिल्कुल। आज कार्यक्रम में हम यूं छुई बतों का दगड़ी कुछ और भी कला और वो ये छु कि आज हमारे कार्यक्रम में होला डॉक्टर हिमांशु जोशी उनका दगड़ी हम बातचीत कला मधुमेह रोग और आयुर्वेदिक इलाज विषय पर ठीक छ। लेकिन
1: जी
0: ये सब कुछ घड़ेक माँ अब फिर अपने ही भाई बंधु दगड़ बात करना जख एक तरफ हम दीक्षांत परेड की बात करना चुआ और राष्ट्रपति को उत्तराखंड दौरा की बात करना चुआ
1: जी
0: तो यह एक और ही भली बात है कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारे शीर्ष पद छन
1: जी
0: वो बराबर उत्तराखंड का तरफ आना छन और
1: जी
0: आना रहन ये
1: जी
0: भली बात है। वैसे राज्य में विकास का नई द्वार खुल देन चाहे उकमा प्रधानमंत्री आना हो
1: जी
0: या फिर बड़ा जो
1: अधिक
0: नेतृत्व छन
1: जी
0: अधिकारी छन
1: जी
0: और राष्ट्रपति छन जब
1: जी
0: वो राज्य का तरफ अंदिन तो उनको एक लगाव और एक जो नई दिशा होंद कि चला साहब वाकई उत्तराखंड राज्य को बनो क्या तब है कई
1: जी
0: बार घूमना घूम चल जाओ तो कई बार काम अखुण चल जाओ सब कुछ अखुण बहुत सुंदर छ।
1: जी ध्यानी जी, परेड की खास बात या बिछा की बरदा या माँ महिला जो हमारे कैडेट छा उन भी प्रशिक्षण ले और वो भी अफसर बढ़े।
0: पहली दा हुई इन हाँ
1: जी
0: कहला कि जब बटे की अनुमति मिल के हाँ भाई एनडीए में भी शामिल हुए सक दिन
1: जी
0: परीक्षा दे सक दिन और
1: जी
0: फिर एक कैडेट का तौर पर सैन्य अधिकारी का तौर पर वो देश की सेवा करा ले तो
1: जी
0: पहली टुकड़ी पहली संख्या
1: जी
0: हमारे ये बलिदान रहे तो वाकई ये मातृशक्ति का खातिर बहुत बड़ी और गौरव की बात है कि अब सेना का उच्च पदों पर भी हमारी माता बहनी होली है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल
0: तो उन तो पहले भी नहीं लेकिन इन परीक्षा का माध्यम से और इन अकादमी का माध्यम से ये पहले इतिहास जो आज
1: बिल्कुल
0: तो अब एक इतिहास हम भी बना दिला जन हमार इतिहास छह इंच कि
1: जी
0: हम कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत से करना।
1: जी श्रोताओं, आप सुनने मनमोहन बधाणी का स्वर में सुंदर सी गटवल गीत दगड़म छिन कुछ रंत रह बार।

जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षा

0: सड़क सुरक्षित जीवन
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा
3: नारी परीक्षण पंचकर्म चिकित्सा नेत्र रोग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार
2: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ
3: व्हाट्सएप 7895372936।
2: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद पुराना शिव मंदिर मुखानी चौराहा हल्द्वानी शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड जो आपको बेसिक शिक्षा OBE माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6: सैन्य गीत का दगड़ी आपन रंत रहबार सुने और आप एक दा फिर हम स्वागत करना चाहूँ कार्यक्रम में आप सभी को। एक तरफ हम कई उत्सव मनाने की बात करना चाहूँ, जन एक आज युग कौथिक छा युग उत्सव छा हमारे जो दीक्षांत परेड भारतीय सैन्य अकादमी में हुए राष्ट्रपति यख पहुंचे न, ये के अलावा और भी उत्सव जन की हम मनाना चाहूँ आकाशवाणी का 90 सालों का उत्सव
7: बिल्कुल
6: और पूरे देश मनाने च 150 वर्षों को वंदे मातरम को उत्सव
7: जी।
6: तो उत्सवों को दौर चलनु चे साहब है ना
7: जी।
6: तो ये माँ अब हम काम की बात भी कला कि अगर मन स्वस्थ च शरीर स्वस्थ च तभी कौथिक को मजा भी चा
7: बिल्कुल
6: है ना। जीवन शैली से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या जैसे कि हर तीसर भारतीय झलनु च वो च शुगर जैसे मधुमेह जैसे डायबिटिक कुछ आके क्या बना छो हम
7: जी।
6: तो ये मधुमेह रोग में जो आयुर्वेद को भूमिका च वो क्या च कनके के इलाज हो सकत आवा अब बात करना हमारा आज का मेहमान डॉक्टर हिमांशु जोशी का दगड़ी। कार्यक्रम में मिछो विनय ध्यानी और आज म्यार दगड़ मेहमान छन डॉक्टर हिमांशु जोशी। उनसे हम बातचीत कला कि जो मधुमेह च जैसे हम डायबिटीज बोलदा शुगर बोलदा वे का जो आयुर्वेद में इलाज च वो क्या च और क्या क्या सावधानी बर्तन चंदन एक मधुमेह रोगी थे। तो सबसे पहले डॉक्टर जोशी बहुत बहुत स्वागत।
8: धन्यवाद। नमस्कार ध्यानी जो मुके बुलून लीजिए। जो आज विषय छे आयुर्वेद में मधुमेह है या जो डायबिटीज को नहीं हम झुके है ना वो कारण क्या क्या छन और किन किन चीजों उठे बचाव कर सकूं है।
6: अच्छा एक बात पहले हम सोंग तरीके से समझ लियो कि मधुमेह था हम जना कन के यानी वो एक परिभाषा क्या छे कन हुंद क्या हुंद वे मा
8: मधुमेह दो कैटेगरी में डिवाइड करनु छो हम है ना एक टाइप वन और टाइप टू। आयुर्वेद में मधुमेह जो छे 20 प्रकार प्रमेह छन।
6: अच्छा
8: है ना वो 20 प्रकार प्रमेह में बठी चार जो छन वातज प्रमेह छन उन वातज प्रमेह अंतर्गत वो मधुमेह दूहर क्लासिफिकेशन यलो छे कि मधुमेह दो प्रकार डिवाइड कर रखो हमूल आयुर्वेद में। पहली तो जो जन्म जात रू वो मधुमेह को हम कुनु सहज प्रमेह है या सहज मधुमेह ही और दूसरे दोहर वाल छे उको कुनु अपथ्य निमित्तज प्रमेह।
6: अच्छा
8: तो अपथ्य निमित्तज मतलब कि जो खान पान दिनचर्या जब हमार असंतुलित हूँ वो कारण जो मधुमेह हूँ उको हम अपथ्य निमित्तज कुनु है ना
6: जी।
8: और उको ही हम टाइप टू डायबिटीज मेलिटस जो कि बहुत लोगों का है इस दौरान जो नॉर्मल मधुमेह हूँ वो टाइप टू डायबिटीज या अपथ्य निमित्तज प्रमेह हूँ।
6: मैं जब तक समझो डॉक्टर साहब कि एक तो हूँ अनुवांशिक
8: है ना
6: और एक हूँ जो हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए है ना। तो हम अब ये जान गए कि हाँ साहब मधुमेह क्या है अब एक लक्षण क्या है कल के पता चला एक आदमी था कि चलो मैं था अपन शुगर की जांच कराने से
8: होय लक्षण वटी बार बार पेशाब उन लक्षण छे है ना बार बार भूख लगन जो वजन छे वो घट जान है ना तो उला लक्षण छे और बार बार प्यास लगन, ज्यादा प्यास लगन।

0: लक्षण छे, बाकी हाथ पाँव में जलन हुन है ना, ये वाला लक्षण छे। तो ये सारे लक्षण जो छन जबला हमर खून में ग्लूकोज एक लेवल बटी बढ़ू है ना, तब ये लक्षण हमर में ऊन लगनी।
1: अच्छा एक बात, एक माँ उम्र भी कुछ मायने रखत कि कब बटक हम तो वही सक दियो, या बच्चों माँ भी पाई जान दी, या जवानों माँ बुजुर्गों माँ, क्या 1% छ?
0: सामान्यतया बच्चों में जो डायबिटीज मिलूं वो डायबिटीज वंशानुगत हो है ना, वो
1: अच्छा
0: 20 साल बटी पहली ही है जा। एक और डायबिटीज है उका हम बोलो MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग्स है ना, जो मेन छे Type 1 और Type 2। Type 1 तो आनुवंशिक है, Type 2 जो छे वो बड़े लोगों में हूँ, आफ्टर 40 या 30 to 40 के बीच में इस एज में हूँ। जो लोग मरीज हूँ ना वो मोटा झोल है ना, ओबेसिटी। ओबेसिटी डिफाइन करने लीजिए, हमारे पास BMI क्राइटेरिया छे है ना, तो BMI क्राइटेरिया में 23 या मोर देन 23 अगर BMI हूँ तो उम्र होना संभावना ज्यादा है जाए है ना। तो एक हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स लकुनु है ना।
1: अच्छा, तो एक खास बात है कि एक बहुत बड़ी समस्या ये बात समाज में देखने मानो छे कि कुछ बच्चा Type 2 छनो कि और ज्यादा छन, तो ऊते बहुत जबरदस्त देख रेख की जरूरत हो, वो क्या छे डायबिटीज प्रकार?
0: सब डायबिटीज में बच्चा अगर छे ना तो उके देखभाल जरूरत हो
1: अच्छा।
0: है ना, तो वो खान पीन ग्लूकोज ज्यादा न जान चाहे वो बॉडी में है ना, इंसुलिन बार बार इंसुलिन लागो। आयुर्वेद में Type 2 डायबिटीज मेलिटस जो अपथ्य निमित्त हूँ या जो खान पान और हमारे जीवन शैली से ज्यादा नजदीक हूँ, ठीक वो बार में ज्यादा डिस्क्रिप्शन छे, वो चिकित्सा बता रहा है। जात है प्रमेह ही मधुमेह नोवा, एक श्लोक हूँ हमारे चरक संहिता में,
1: जी
0: जात है प्रमेह ही मधुमेह नोवा न साध्य उक्त है सही बीज दोषात। इका मतलब हूँ कि जो प्रमेह है जन्म बटी हूँ वो इलाज न है सकन
1: अच्छा।
0: है ना, और जो प्रमेह है बाद में हूँ वो इलाज हम कर सकना। तो वो इलाज उके हम बोलू कृच्छ साध्य मधुमेह है या आवरण जन्य मधुमेह है, ठीक उमे हम जो कफ और पित्त शामक आहार विहार छन, हमारे जो लाइफ स्टाइल छे ठीक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बटी हम उको एक्टिव लाइफ स्टाइल में चेंज करनू है ना, और साथ में कुछ दवाइयां दिनू, तो उन बटी कई लोगों में जो डायबिटीज छे अगर उन अपन खान पान और उन सब संयत रखें तो कई में रिवर्ट ले है जा। अगर न होने पे हमारे पास इंसुलिन और उपाय ले छन।
1: जी, अगर हम ये देख दें कि कहते शुगर की जांच हुई और वो थे पता चलना चाहिए, एक मानक भी छन बल है ना, तो क्या आयुर्वेद भी ये तरह का कुछ मानक रखते कि भाई 100 बटक इधर होने चाहिए, 200 बटक इधर होने चाहिए, क्या क्या 90 दिनों?
0: जो मानक छन उन अब डेवलप है रही,
1: अच्छा।
0: पहली बटी हम लक्षण और पहचानू है ना, तो आयुर्वेद में लक्षण एक तो क्लिनिकल फीचर या लक्षण हम कुनू वो है पहली ल पूरो रूप लक्षण है ना, और पूरो रूप है ल पहली निदान लक्षण।
1: अच्छा।
0: निदान का आज भाषा में हम इटियोलॉजी बोलूनू है ना, कारण। निदान मतलब कारण है, तो कारण में जो निदान छन प्रमेह कारण छन उमे आस्या सुखम बुला रहा, आस्या सुखम श्लोक छ, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनुपरसह पयांसी। एक मतलब हूँ कि आस्या सुखम जो व्यक्ति मुख सुख ल बहुत रत लो यानी कि खान पीन में लागरू
1: हाँ, स्वाद
0: स्वाद
1: चढ़ो।
0: चानू, और स्वप्न सुखम
1: हाँ
0: स्वप्न सुखीन में है
1: हाँ
0: ना, हर उमे चालू की मैं
1: खा प्यार से गया।
0: और खा पिया से गए ठीक सा, स्वप्न सुखम दधीनी दधी
1: दे
0: द
1: हाँ
0: और दूध है प्रोडक्ट, इनको ज्यादा जो
1: इस्तेमाल करत
0: इस्तेमाल करें जो ठीक है उमे हुने प्रोबेबिलिटी बढ़
1: ज्यादा
0: जाए।
1: छे। ओ ठीक छे ठीक
0: और
1: छे।
0: लक्षण मेले छन करपाद दाहक जो मैल बता कि हाथ पाँव में जलन हूँ वो हमारे वहां पूर्व रूप छन,
1: अच्छा।
0: आयुर्वेद में पूर्व रूप छन। पूर्व रूप में मतलब क्यों कि जो लक्षण उन्हें पहली लक्षण आ जाए उनको हम पूर्व रूप बुलानू, ताकि हम थोड़ा बहुत उनमें अगर अपन डाइट और अपन लाइफ स्टाइल चेंज कर लूनू तो वो ठीक है जाए, तो उनको हम बुलानू पूर्व रूप। तो पूर्व रूप स्तर पर ही तो सब्जेक्टिव सिम्टम कुनू हम ठीक है उठे हम पत्ते लग जाए कि यो जैसे मधुमेह है निकट पूज गो, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपन आहार विहार सब चेंज कर लूँ तो हम ठीक है जानू। आहार विहार में क्या ना करें नमुक जो प्रधान है यो प्रधान आहार हम ले सकूँ।
1: अच्छा, आचार विहार की बात आप

0: करी एका दगड़ी हम एक बात और देखदा कि इकमा जो योग छे व्यायाम छे वो
1: या
0: भी काफी मदद करत बल।
1: हमारे लाइफ स्टाइल है, भाग दौड़ हम करन नहीं रिया, ठीक है। रत्ती बटी ब्याह तक हम 9 9 बजे बटी 5 बजे तक तो हम रुने ऑफिस में। वो बाद हम क्या खेलने लीजिए ना, कहीं ना जाना है एक। और खान की छे अमूल, पिज्जा बर्गर
0: हाँ जंक फूड।
1: समोसा है, जो चीनी वाली चाय, ठीक। और वो बाद जो छे तो यह ओबेसिटी धीमे धीमे धीमे धीमे बढ़ने में रू, और लास्ट में मधुमेह आ जा। तो हमू को सब वह पहली करन जाए कि अपन लाइफ स्टाइल रूटीन सेट करन
0: ठीक
1: जाए,
0: ठाक करन जाए।
1: और नींद ल प्रॉपर लेन जाए। 9 बजे हमू को सजान जाए, और ज्यादा टेंशन ज्यादा एंजाइटी ल नहीं लेन जाए। एंजाइटी लीजिए अमर योग जो है ना, लाइफ स्टाइल डाइट लीजिए अमर आयुर्वेद है ना। और बाकी अगर फिर ल न हूं दवाई छ
0: जी
1: शिवा गुटी का आयल कई योग छन हमारा आयुर्वेद में जो हम प्रयोग करने में
0: जब
1: यू।
0: गंभीरता हम देख दा के भी मधुमेह रोगी की तो वो सीधा इंसुलिन पर आ जाता। इंसुलिन को एक जो विकल्प छे वो हमारे आयुर्वेद में छे कुछ।
1: ना इंसुलिन विकल्प न छ आयुर्वेद
0: अच्छा।
1: में। आयुर्वेद तीन चीजों बात करो है ना, आयुर्वेद है तीन सिद्धांत चिन्ह, सामान्य विशेष है समवाय और ले सिद्धांत चिन्ह। तो पहली सामान्य, सामान्य और विशेष। तो सामान्य और विशेष में सामान्य तीन टाइप हूँ, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य द्रव्य बोलू हम मैटर के है ना। तो कोई कोई चीज हमारे बॉडी में कमी है रहे, तो उसी रूप में जब हम ले लिनू उका कुनू हम द्रव्य सामान। जैसे कि हमारे बॉडी में मांस कमी हो है ना, तो की कुकी करनू हम, या प्रोटीन कमी हो तो हम डायरेक्ट प्रोटीन ले लिनू।
0: बिल्कुल।
1: हमारे पास एक तो प्रोटीन को वाल हूँ जो एनिमल प्रोटीन हो, तो वो डायरेक्ट प्रोटीन है गो है ना। और दूसर की कर सकूँ हम प्रोटीन सदर्मी चीज ले सकूँ,
0: हाँ
1: जैसे कि दाल,
0: डाल छ।
1: ठीक, प्रोटीन लेवल छ ठीक। तो उका कुदिनू हम गुण सामान्य, ठीक, थोड़ा कम हो गया बट गुण सामान्य है गो है। तीहर वाल हूँ कर्म सामान्य। कर्म सामान्य हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, वह है कि हूँ हम कि जो बॉडी में हमारे प्रोटीन छे मास छे वो बहुत कम है जा, तो हम रेस्ट करने लीजिए ना, ताकि हमारे बॉडी में प्रोटीन ग्रोथ है सके। वो का उमूलू कर्म सामान्य। तो यह लीजिए आयुर्वेद में इंसुलिन लेवल पे, इंसुलिन जो छे उच्च द्रव्य सामान्य, ठीक। इंसुलिन सधर्मी चीज जो कि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ूने बूम बॉडी में, या इंसुलिन जो उसमें रेजिस्टेंस है जाए है ना, तो ऊ लीजिए चैनी, वो होंगी गुण सामान्य। तो यार अमर फंक्शन है जो हम घूमनू है ना, व्यायाम करनू, ऊल की हूँ कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस थे वो खत्म हो है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: तो जो हमारा मधुमेह का रोगी छे ना, डायबिटिक लोग छे ना, उन्हें कोई बातों को ध्यान रखना चाहिए और कोई काम कतई नहीं करना चाहिए।
1: सब वह पहले तो उनको ज्यादा खान ना खान चाहे,
0: ठीक।
1: कम खाओ। और जो आहार लो हुन चाहे वो यव प्रधान मुद्ग प्रधान, यानी कि बारले यानी कि जौ, जौ दलिया, ठीक, और मुद्ग प्रधान मूंग की दाल, ठीक, यह हुन चाहे है। तो दोहर के हुन चाहे दूध और दूध प्रोडक्ट न लेन चाहे। आयुर्वेद में निदान लग को कह रहा है इनका, ठीक है, और आज ल हम देखनिया है ना। तो दूध और दूध प्रोडक्ट न लेन चाहे। और अपन ब्लड शुगर की जांच रेगुलर करें चाहे,
0: करें
1: 3 3 महीने पे, ठीक है,
0: 6 महीना में।
1: 6 महीने में करें चाहे। और कभी अगर इसके लक्षण जो अमूल अभी चर्चा करी पहले वो दिखे नहीं, तो योग्य डॉक्टर के पास जाबेर परामर्श लेन चाहे, चाहे वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आयुर्वेदिक लेन जाए या एलोपैथिक लेन चाहे, क्या के लिए।
0: बिल्कुल ठीक बोले अपन के। सोशल मीडिया का ये जमाना में बहुत सारी सूचना इधर आ जाना चाहिए, लोग के बिल्कुल गमतोल में पड़ जाना कि क्या खो और क्या नहीं खो, है यू भी ठीक ही बनो और यू भी ठीक बनो। अब आखिर में इलाज की बात कर रहा, कितना पक्को इलाज, कितना प्रतिशत इलाज आयुर्वेद में मधुमेह को हम कह सकते डॉक्टर जोशी?
1: जो कृच साध्य मधुमेह हूँ, जो आवरण जन्य मधुमेह हूँ, या जिसके हम कुनू टाइप 2 मधुमेह है, जिनमें HbA1c 8 तली तली रूँ, ठीक है, उनमें कई बार जो छे रिवर्ट है जा है ना। खान पान वो लीजिए एकदम ठीक छन, कई सारी औषधियाँ छन। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट छे कि पुरुषम पुरुषम वीक्षम च स गेय भिषक भवे। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष मतलब अलग अलग व्यक्ति जो है वो जो छे वो अलग अलग तरह है वो रिस्पॉन्स दियो हमारे थेरेपी के ठीक जिमें हम रिजल्ट मिलूँ हम उनमें अपन

0: इलाज जो छे वो भले का कर रखना छा है ना, और जिम्मे हम न मिलू वो लीजिए और ल तरीक छ है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: यानी कुल मिला के हर शरीर अलग च,
0: बिल्कुल
1: हर शरीर को स्वभाव अलग च, तन्नी दवाओं को भी, चाहे वो आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, उनको भी स्वभाव अलग अलग च। लेकिन अच्छी बात यह छ कि चिकित्सा उपचार संभव छ, अगर आप यूं बातों पर ध्यान देला, जो कि डॉक्टर जोशी ने बताएं कि भाई जो कारणों से हमारी यू मधुमेह होण च, उन कारणों तक हम रोकी के रखा, और अगर आप मरीज छ ना, तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी छ। डॉक्टर जोशी, आप कार्यक्रम में आपका खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता बंधुओं, हम अभी बात करना चाहे डॉक्टर हिमांशु जोशी का दगड़ी, विषय चाहे मधुमेह रोग और आयुर्वेद को इलाज।
2: जी ध्यानी जी, डॉक्टर सावंत बतेल कि हमते क्या क्या उपचार कर चाहिए, क्या क्या सावधानी हमते बरतन चाहिए छी ना, पर एक बात में बुन जानू जहाँ पर श्रोताओं थे कि श्रोताओं, आप लोग मिठू भले कम खा नहीं खा, लेकिन आप मिठू जरूर बोला,
1: हाँ
2: क्योंकि आजकल जो समय छे ना कि हमते लगड़ू की मानवता खत्म होनी चाहिए या कम होनी, तो वहां की यूज की मिठू सोचा, मिठू बोला।
1: मिठू बोलन
2: जी
1: तो तनाव कम होलो,
2: जी
1: और जिनके डॉक्टर साहब बताने छे कि ये जो कारक छन
2: जी
1: मध्य सबसे बड़ो कारक छे मधुमेह को, शुगर को, डायबिटीज को, कि
2: जी
1: आप एक तो जीवन का आपाधापी मा
2: जी
1: तनाव लेना छन। तो किले की बोले जान के जो यो मधुमेह छे ना, ये
2: जी
1: कोई बीमारी नहीं, ये एक ही समस्या छे जैसे कि हम अपन जीवन शैली में बदलाव लिया के भी ठीक कर सकता
2: जी
1: है ना। तो ये चीज इन कि भाई जो इन बोले जान की इलाज नहीं च, लेकिन
2: जी
1: हाँ नियंत्रण आप कर सकते हैं।
2: जी
1: तो अपन सेहत को ध्यान रखा साहब, जन की रुचि बोना छा कि मिठू खा लिया बल तभी मिठू बचेला, लेकिन फिर भी बोल दबे छे ना कि आजकल मिठू चीनी और तेल यू कम कला
2: जी
1: तो आप।
2: यानी जी, हमारा अपना जो पुराना लोग छे ना, उनसे एक सीख लेना जरूरत है ना, जो देख हमारे पहले बर्द छा पकवान वगैरह, जन के अरसा रोट की बात कर दे हम, तो वहां अभी कखी भी चीनी को उपयोग नहीं होना,
1: गुड़
2: गुड़क। हाँ, मन कनु आपा कि हम जरस मिठू खाने, तो आप गुड़ वगैरह इन चीज कह सकते हैं, जो आपा स्वास्थ्य को नुकसानदायक नहीं वालू।
1: ठीक छे साहब, कामक बात है, फिर भी हम लगौला और सदनी हम कार्यक्रमों में ई देखना रहे दूँ कि साहब कई दिन डॉक्टर साहब तो बुलौला, कई दिन कई खिलाड़ी तो बुलौला, कई दिन कई सफल महिला काश्तकार तो बुलौला। हमारी कोशिश छ कि जो समाज में लोग छन जो भल काम करना छन या जो विशेषज्ञ छन उन थे कार्यक्रम में ले जा,
2: जी
1: और उनसे आप तक कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिले। तो हमारा ये प्रसारणों का बाबत आपक राय क्या छ, ये बाबत हम भी जानना चाहूँ। वो क्या करूँ आलू
2: वेखड़ा, अपन चिट्ठी भेजना, हमारी
1: तो
2: चिट्ठी को पता चे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com।
1: अब इन बात पर इन करना कि दीवान कनवाल का स्वर मा अपना सुंदरों तो सुनाना यो कुमाऊनी गीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: The all-new Nissan Revive अब CNG में
6: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर KG की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
7: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
8: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
9: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
10: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
9: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
10: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
9: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
10: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
9: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
11: गीत और रैबरों के बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में।
12: और जन के हम बात करना चाहे भी उत्सव की, कौथिक की, तो एक जो कौथिक जो उत्सव जो आजकल हमारा घरों में भी चलना चाहिए।
11: जी
12: बच्चों की छुट्टी आ चुन तो कौथिक हुई।
11: जी बिल्कुल। अरुण कौथिक भी चलना है चिन मेला खोला।
12: हाँ हाँ वो तो चलना चल, लेकिन घर जो कौथिक चिन भांडा वना बटे वना चुटाना चिन बच्चा।
11: हाँ जी
12: बस तो कुछ जो खोला बाद में देखा ला, लेकिन ये वक्त छुट्टियों को पूरा आनंद लेना चुनो। और ये बात तो लेके हमने पिछले दिनों कार्यक्रम एक वार्ता भी प्रसारित कर कि बच्चा छुट्टियों को सदुपयोग कन में करें, लेकिन ये बात तो बच्चों को जो घिपरोल छ ना वो ना पूछा चो छोड़ी किला कि एक दुई का तो छुट्टी नहीं हुआ उस सब क्यों हुआ जन। तो वो बिल्कुल टोली बनाए जाना छन, वो छोटा छोटा बुकरेल छन वो अलग, जरे छोर जवान वो अलग, और बहुत

0: सारा लोग दिन भर गाम में भी क्रिकेट खेलना छे।
1: बिल्कुल ध्यानी जी, और ये बहुत अच्छी बात भी छे कि मैंने कहा कि पढ़ी भी छा कि अभी बच्चों ते बल खुला आसमान हम जीण दिया बोल पड़ से हम पूरी जिंदगी कैद हुए जान।
0: हाँ, लेकिन वो ये मोबाइल बट बहर आलत तभी तास मान दिया कला।
1: हाँ जी, नहीं नो तो हम उम्च की हम उन्हों ते मोबाइल दीण की बुन के चला बाहर जा कि न बने।
0: तो कुल मिला कि गिजाए हम ही दिन हुआ जब
1: जी
0: बत नानतिन रोना रहने वे बत हम बोलना ये मोबाइल दे ना चुप
1: जी
0: है जान दियो।
1: हाँ जी
0: तो जब हमें सिखाना चाहो तो हम कन कह रोक सकता हूँ,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: फिर भी जो समझदार बच्चा छे ना वो खुण बना कि भाई ये से सब कुछ नहीं हो,
1: जी
0: मोबाइल पर आप जितना बगत देला वही से भल छे कि कोई भली किताब पढ़ा वो जिंदगी भर आपक मानस पटल पर छपी रहें।
1: जी
0: और ये तो आन जान वाल छुई छिन कि सर सर सर सरको बे सरको इन्हें तो हूं रील
1: हाँ जी
0: कि 1 मिनट भी कख सेकंड में छन आजकल
1: जी
0: तो।
1: पसंद नहीं आने सट स्क्रॉल
0: हाँ
1: कर रहे दूसरे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कर रहा स्क्रॉल की जा। लेकिन हम तो ये बात याद आने चे कि हम अपन जमन में क्या बोलता छा, अरे जरा घड़े खा अभी आणु छू मैं,
1: जी
0: फिर धीरे धीरे ऑनल पीढ़ी के बोल 2 मिनट
1: जी
0: जरा माजी 2 मिनट हाँ बस।
1: हाँ जी
0: और आजकल का बच्चा क्या बोना पता,
1: जी
0: सेकंड
1: सेकंड जी
0: है ना। तो देखा समय छोटू हूणु जानू छ,
1: जी
0: लेकिन ये समय था हम तय पकड़ी के रखन के लिए कि यू समय हमारू हमारे बच्चों को भविष्य बनाल सगत तो छू होना चिन। फिर
1: जी
0: करना उत्सव की बात,
1: जी
0: आजकल हम अपनों आकाशवाणी का 90 सालों की यात्रा को उत्सव मनाना छुआ, आप भी शामिल हुआ। 8 जून 2026 अपनी आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने वाला छ। यूं 90 सालों में एक कार्यक्रम 47 साल बटे की लोकप्रियता को सबसे ऐंच पायदान पर रहे, और वो च उत्तराखंड के लोक भाषाओं को कार्यक्रम ग्राम जगत। 1978 में आकाशवाणी नजीबाबाद से शुरू हुई की यू कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी अल्मोड़ा और देहरादून पहुंच गए। 60-70 का दशक में गढ़वाली कुमाऊनी संगीत दिल्ली और लखनऊ केंद्र बटे की उत्तराण कार्यक्रम का अंतर्गत प्रसारित होन शुरू हो गया।

0: 47 साल बटेकी ग्राम जगत कार्यक्रम पूरी तौर पर बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी मा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित करी की आज भी श्रोताओं का बीच पहली पसंद बन्यो छे।
1: खासकर आकाशवाणी का जो कार्यक्रम छे जो की रीजनल कार्यक्रम छे जो हमारे लोग बहुत ज्यादा संपर्क में छे, प्रासंगिकता और साथ में एक ही लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। या तो आपके ग्रामीण जगत कार्यक्रम से मैं ये बता दूं कि इन लोगों से गढ़वाली बोल सिखा देने सबसे।
2: रेडियो की आज भी वही महत्व थे जो आज से 3 दशक पहले थे। बिल्कुल, जो दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र वहाँ आज भी रेडियो लोग वही उत्सुकता से सुनना जो पहले थे, क्योंकि जनसंपर्क को साधन आज भी रेडियो था। रेडियो की महत्ता आज भी वही, चाहे वो जो समाचारों का क्षेत्र में हो, चाहे वो जानकारी का क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति संरक्षण का क्षेत्र में हो, और आकाशवाणी देहरादून तो ये मामला में बहुत अच्छा प्रयास करी।
0: कुछ कितना लोक कलाकारों ते आकाशवाणी ना पहाड़ का जनमानस तक पहुँचे की उते प्रसिद्धि दिले।
3: जो भयों की होने होली वो कठराला, अनमिल भयों को लोग ठटाला।
0: जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा, महेश तिवाड़ी, कपोत्री देवी, प्रीतम भरतवाण जना कतना ही नौछन जोन आकाशवाणी का माध्यम से अपनी पहचान बने।

0: गढ़वाली कुमाऊनी चौंसारी बोली भाषा का दगड़ ही लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक जीवन पर आधारित कार्यक्रम ग्राम जगत ना सिर्फ स्टूडियो में ही कार्यक्रमों को निर्माण नहीं करी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का सुदूरवर्ती गांव-गांव पहुंची की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम ग्राम जगत की सबसे बड़ी ताकत बनी।
1: स्कूल नानतिनो आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करनी च हाई स्कूल सुनाऊ जो कि थराली ब्लॉक की एक स्कूल च।

0: गाड़ी सुविधा यहाँ सब कुछ नीचे फिलहाल हॉस्पिटल तो छे लेकिन इधर का सुविधा में हम तो बाहर ही जान पड़े और जो सुविधा भी होता धीरे धीरे लेकिन क्या करे पलायन ज्यादा हो गया गाँव में लोग भी कम छे यहाँ से सुविधा जागरूकता बिल्कुल कम हो गई।
1: आकाशवाणी का 90 साल और ग्राम जगत कार्यक्रम का 47 साल से ज्यादा कुछ समय पहाड़ का गोंगों की छुई लगांदू हुंगरा पुरांदू ग्राम जगत इन्हीं एथर बढ़नु छ। तो इन यात्रा में हमारा सुन द्वारा हमारे दगड़ कना छन तभी यह यात्रा चलनी छ और हम तो बोला कि यह अनंत यात्रा छ इन्हीं चलनी रहा अगर हमारा भयबंधु को दगड़ रहा। 6:50 तक अजी आप हमारे दगड़ रहे कार्यक्रम सुने न और ये बात सुने ना आप उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को मिले 481 युवा अधिकारी, पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी हुए शामिल। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत देहरादून में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सैन्य बैंड की गूंज, अनुशासित कदमताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और गौरवपूर्ण बना दिया। इस वर्ष की परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो महिला नेतृत्व वाले विकास और सशक्त भारत की अवधारणा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। एक रिपोर्ट।
1: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 16 मित्र राष्ट्रों के 34 कैडेट हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार अकादमी से पुरुष कैडेट्स के साथ 9 महिला कैडेट्स भी पास आउट हुई। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्य अकादमी

0: सम्मान साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। उन्होंने पहली बार पास आउट हो रही महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे देश में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम बताया। श्रीमती मुर्मू ने अधिकारी कैडेट्स से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का आह्वान किया। पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: कैबिनेट मंत्री और पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने पौड़ी में आपदा प्रबंधन कार्यों, आगामी मानसून की तैयारियों और नीलकंठ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले में आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अलर्ट मोड में रहते हुए आपदा पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी भी आपात की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
2: आज मैंने पौड़ी जिले की आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक की है जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपदा की दृष्टि से, आपदा से पहले हमें उनकी तैयारी करनी है, उस पर भी मैंने विस्तृत चर्चा की है और उन सारी जगह भी डीएम को निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल आपदा से पहले वहाँ क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है उसको करिए। तो मैं समझता हूँ कि पौड़ी में आज सारे जिले को लेकर जो बैठक की है, निश्चित रूप से सभी अधिकारी समन्वय के साथ ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आपदा की दृष्टि से पूरी एकदम मेहनत के साथ, जनता के साथ जब कोई घटना घटती है उसके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा सबको आह्वान किया।
1: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर के कंडार कुआं मंडल के अंतर्गत सुनियाकोट मटीला मोटरमार्ग से ओरिया गांव तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबे मार्ग निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ओलिया गांव के लिए मोटरमार्ग निर्माण ग्रामीणों का कई दशकों पुराना सपना था जो आज साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क स्थानीय मातृशक्ति और ग्रामीणों के जीवन को सरल बनाने के साथ साथ क्षेत्र के विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत आज देहरादून में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होंने मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को SIR अभियान की जानकारी देंगे तथा पात्र नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रेरित करेंगे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. चौहान ने जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 660,000 से अधिक मतदाताओं को गणना परपत्र वितरित किए जा चुके हैं, साथ ही गणना परपत्रों के संकलन और डिजिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से जारी है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने BLO को सहयोग करने की अपील की ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण और अद्यतन कार्य समय से पूरा किया जा सके।
4: जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें।
1: कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने आज जखोली में आयोजित जनकल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित जनकल्याण शिविर में उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का

0: निदान वहीं पे कर रहे हैं।
1: और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया, अभी 10 बाकी हैं। और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने यहाँ पर जवाब दिए, अगर अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निर्णय करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है।
2: शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि इस प्रशिक्षण में आपदा मित्रों और ग्रामीण स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, खोज व बचाव, बाढ़ प्रबंधन, जल जनित आपदाओं से निपटने और वाटर रेस्क्यू की सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों की क्षमता का विकास करना है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वे प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को मिले 481 युवा अधिकारी, पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी हुए शामिल। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत देहरादून में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचारों को बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपने बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा मिछो आप दगर रुचि रावत। श्रोताओं, हम सभी अपने बच्चों तय शिक्षित करना चाह और हम सभी यू भी चाहें कि हमारा बच्चा अच्छा अच्छा पदों पर काम करें, खूब उन्नति करें और हमारो नाम रोशन करें। लेकिन असली मायनों में हमारो नाम रोशन तब वालू जब वो शिक्षित होना का दगड़े दगड़ी वो नैतिक मूल्यों तय भी समझला, एक दूसरे की पीठ है दर्द जै समझला। श्रोताओं में बात इले बुनु छोया कि लगातार हम सोशल मीडिया में दिखना छाया कि इंसान है कि जो मन की जाने की मच ना वो फोनम वीडियो बनाने से कम हुई है ना। हम दिखना चाहे कि समड़ी हमारो मन की क्या दुख हम चाह दर्द हम चाह, लेकिन हम वे की मदद करना जगह हम क्या करना चाहें कि आजकल लगातार वीडियो बनाना चाहिए, जो कि बहुत दुख भरी बात। श्रोताओं, हम बच्चों तय शिक्षित करने का वास्ता स्कूलों में भेज सकते हैं, कॉलेजों में हम ट्यूशन लगा सकते हैं, उनसे कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन जो नैतिक मूल्य छिन ना उनसे हम उन्हें अभी सिखाना अपने घर बटे सिखाना। तो आप सभी से यू ही अनुरोध कर दूँ मैं कि अपना बच्चों तय जरूर उनका भीतर भावनाएँ भरा बोला कि क्या चीज़ से उनसे दुख होंदा दूसरे की उनसे सिखाण सम उनकी, चाहे वो छुट्टी सी चाहे वो किरमोलू बिच ना वे फिर भी दर्द होंदा और बिना वजह हम उन वे थे नुकसान नहीं पहुँचा। तो श्रोताओं, इन कर दें कार्यक्रम में अग्नय बन दें और चल दें जौनसार का छोड़ और सुन दें सुंदर सी जौनसारी गीत स्वर्च रेशमा सागो।

श्रोताओं, अभी आपन सोनी रेशमा साह का स्वरमाई सुंदर सी जौन सारी गीत, उम्मीद कर दूँ गीत आप ते पसंद है वालू। और अब मैं कार्यक्रम में शामिल करूँ चाहूँ एक गढ़वली खुदेड़ गीत स्वर्च सुनीता भट्ट को।

श्रोताओं, सुनीता भट्ट का गया ये सुंदर सी गढ़वल गीत का दगड़ी आज को ग्राम जगत कार्यक्रम भी इकमे संपन्न होंद। अपर दगड़िया रुचि रावत है दया अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्वत्यांचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:50 हुए हैं और अब सुनिए गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में दीपक सिंह। पहली मुख्य समाचार, भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का बाद भारतीय सेना को मिलिन 481 युवा अधिकारी। ऐतिहासिक परेड में 9 महिला कैंडिडेट्स भी वेन पास आउट। रुद्रप्रयाग जिला का प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जोखली गांव वालों की जन समस्याओं सुनी। अधिकारियों ते प्राथमिकता का आधार पर समस्याओं को निस्तारण करने का निर्देश दिने। देहरादून जिला प्रशासन को संवेदनशील पहल, गंभीर बीमारियों बटिन जुजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चों ते मिललो निशुल्क उपचार। और पौड़ी जिला में अतिक्रमण का खिलाफ प्रशासन को अभियान लगातार जारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सेना बैंड की गूंज, अनुशासित कदम ताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह पूरा वातावरण ते भावनात्मक और गौरवपूर्ण बने। ये साल परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैंडिडेट्स को सफलतापूर्वक पास आउट होने रहे। भारतीय सेना अकादमिक इतिहास में यू एक ऐतिहासिक पड़ाव च महिला नेतृत्व वाला विकास और सशक्त भारत को अवधारणा नई ऊर्जा प्रदान कर दू। एक रिपोर्ट।
2: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कैरी सेना अधिकारी बनने को गौरव प्राप्त कैरी। ये मां 16 मित्र राष्ट्रों का 34 कैडेट छन जो अपना अपना देशों की सेनाओं में शामिल होला। परेड को निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में कैरी। ये अवसर पर राष्ट्रपति ने बोली कि भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान साहस और राष्ट्र सेवा को प्रतीक छे। उन पहली बार पास आउट होनी महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी का इतिहास को महत्वपूर्ण पड़ाव।

0: बतौंदी ये ते देश मा महिला नेतृत्व वाला विकास की दिशा मा एक प्रेरक कदम बताए। श्रीमती मुर्मू ने अधिकारी कैडेट सी बदलती सुरक्षा चुनौतियों का बीच आजीवन सीखन साहसिक निर्णय लेन और नैतिक नेतृत्व को परिचय देने को आह्वान कैरी। पासिंग आउट मा प्रशिक्षण अवधि का दौरान समग्र उत्कृष्टता खुणी प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान करे गए। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविन्द्र सिंह।
1: कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिला का प्रभारी मंत्री गणेश जोशी आज जोखोली में आयोजित जन कल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में गांव वालों की समस्याएं सुनी। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का अवसर पर आयोजित जन कल्याण शिविर उन क्षेत्रीय जनता दगड़ी सीधा संवाद करी। उन बोली कि केंद्र और राज्य सरकार को उद्देश्य अंतिम व्यक्ति मा खड़ा व्यक्ति तक विकास योजनाओं को लाभ पहुंचाउण छ। श्री जोशी बोली कि जन कल्याण शिविरों को माध्यम से सरकार जनता का द्वार पहुंची की उनकी समस्याओं को समाधान करनी छ, जहां से आम जन को विभिन्न कार्यालयों को चक्कर नहीं लगाउण पड़लू। उन अधिकारियों ते जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता का दगड़ी निस्तारण कर और पात्र व्यक्तियों ते सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिनी।
2: हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया, अभी 10 बाकी हैं। और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने यहाँ पर जवाब दिए, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निर्णय करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है।
1: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन आज अल्मोड़ा जिला में सोमेश्वर का कंडारा कुआं मंडल का अंतर्गत सुनाया कोट मटीला मोटर मार्ग बटिन ओलिया गांव तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबी मार्ग निर्माण कार्य को शुभारंभ करी। ये मौका पर कैबिनेट मंत्री ने बोली कि ओलिया गांव का वास्ता मोटर मार्ग निर्माण गांव वालों की कई दशकों पुरानी सुपनी छो, जो आज सरकार साकार होने जानु छ। उन बोली कि 77 लाख रुपए की लागतन बनाने वाले यू सड़क स्थानीय मात्र शक्ति और ग्रामीणों को जीवन ते सरल बनाने का दगड़ा दगड़ी क्षेत्र को विकास ते भी नई गति प्रदान करेली। उन बोली कि प्रदेश सरकार प्रदेश का अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधा पहुंचाना ते प्रतिबद्ध छ। ये अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताई।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: देहरादून जिला प्रशासन गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चों ते निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराण की पहल करी छ। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान इन बच्चों ते चिन्हीकरण और उपचार की प्रक्रिया ते प्राथमिकता का आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया छन। उन बाल विकास विभाग का जिला कार्यक्रम अधिकारी ते 6 वर्ष तक की आयु का बच्चा और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ते 6 से 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा और किशोरों को चिन्हीकरण करने का वास्ता विशेष अभियान चलाना को निर्देश दिया छन। जिलाधिकारी ने बोली कि जिला में कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव का कारण उपचार से वंचित नहीं रहण चेणु। उन संबंधित अधिकारियों ते निर्देशित करी कि इन बच्चों की पहचान कनक उनकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध करे जो, ताकि उते समयबद्ध उपचार प्रदान करे जा सकूँ। जिलाधिकारी ने बताई कि चिन्हित बच्चों को उपचार केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का तहत निःशुल्क करे जालू। यहाँ का अलावा जो गंभीर बीमारियों को उपचार ये कार्यक्रम का तहत संभव नहीं होलू, उनका उपचार का वास्ता अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और राइफल फंड का उपयोग करे जालू, जैसे बच्चों तय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जा सकूँ। पौड़ी जिला में अतिक्रमण का खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी छ। ये क्रम में यमकेश्वर तहसील का तहत गरुड़चट्टी बटे लक्ष्मण झूला तक जिला प्रशासन और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम को संयुक्त दलन विशेष अभियान चलेगी। सार्वजनिक भूमि और मार्ग क्षेत्र के गिन 13 अस्थायी अतिक्रमण हटाई। वकील लेंसडाउन तहसील का ग्राम सुरड़ स्थित गमूर तोकमा राजकीय भूमि पर करेंगे 2 अवैध कब्जों तय हटे गए। यहाँ के अलावा कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में भी 12 चिन्हित अस्थायी अतिक्रमण तय हटे गए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बोली कि सरकारी भूमि जनहित की संपत्ति च और यहाँ का संरक्षण का वास्ता प्रशासन पूरी गंभीरता का दगड़ी काम करनी च।
4: हम लोगों ने बैठक भी करी थी सभी SDMs के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में और सभी जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे NHP WD आदि सबके साथ में। तो उसमें यही निर्देशित किया गया था कि पूरी तैयारी के साथ में जो चिन्हित अतिक्रमण है उसको भी हटाएं और जो नए अतिक्रमण इस बीच हो गए हैं उसको भी

0: चिन्हीकरण तथा हटाने की कार्रवाई की जाए। तो इसके क्रम में अभी लगातार पूरे जिले भर में अभियान जारी है और इसमें कोटद्वार में काफी अतिक्रमण हटाए गए हैं, साथ में रिखणी खाल में भी काफी सारे अतिक्रमण मुक्त किए गए हैं। साथ में हम लोगों की जो श्रीनगर वाला एरिया है या लांसडाउन आदि के आसपास, वहां पे भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके साथ भू कानून के उल्लंघन के जो मामले थे जो कोर्ट में हमारे निस्तारित होते हैं, उसके क्रम में भी धूमाकोट में 27.5 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है और उसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है। तो ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा।
1: राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को संचालन को लेकर तैयारियां तेज होगी ने ये क्रम में हल्द्वानी को गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला को आयोजन किए गए। ये दौरान खेल संरचना का पाठ्यक्रम और स्टाफ तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुए। सम्मेलन में प्रदेश भर का खेल अधिकारी, कोच और खेल जगत से जुड़िया दिग्गज शामिल हुए। खेल सचिव और विश्वविद्यालय का कुलपति अमित सिन्हन बताई कि बैठक में विश्वविद्यालय का संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना छन।
2: पहली चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, इसकी बहुत बाहर डिमांड है। इसके लिए इसके जॉब के बहुत अच्छे स्कोप है। हम लोग ये चाह रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे जो आसपास के जो भी है वो यहाँ पे आए, यहाँ पढ़े। स्पोर्ट्स कोचिंग में भी यहाँ पे जो गेम्स की कोचिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है, जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक उसको प्रचार प्रसार करके हम लोगों को ला सके। बिकॉज हम जो क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सारी तैयारियां इन सब से चर्चा हुई।
1: अंतमा मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का बाद भारतीय सेना ते मिलनी 481 युवा अधिकारी। ऐतिहासिक परेड में 9 महिला कैंडिडेट्स भी वेन पास आउट। रुद्रप्रयाग जिला का प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जोखली में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ते प्राथमिकता का आधार पर समस्याओं को निस्तारण करने का निर्देश दिनी। देहरादून जिला प्रशासन का संवेदनशील पहल। बीमारियों से जुझा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बच्चों ते मिलो निःशुल्क उपचार। और पौड़ी जिला में अतिक्रमण का खिलाफ प्रशासन को अभियान लगातार जारी। यहां का दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं महेंद्र कौर। किसान भाइयों आप सब कैसे हैं और इस समय खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? इस समय हमारे भाई मुख्य रूप से धान की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। धान की नर्सरी भाइयों ने लगा दी होगी और रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी में इस समय किसान साथी लगे हुए हैं। तो भाई अपने खेतों की अच्छी तरीके से तैयारी करके उसमें सभी पोषक तत्व डालें और हम तो यही कहेंगे कि आप रासायनिक उर्वरकों का कम से कम ही प्रयोग करें। अच्छा रहेगा अगर आप जैविक खेती करेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पर्यावरण भी साफ सुथरा रहेगा। जैविक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक तथा प्राकृतिक नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। इसमें मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। आज के समय में रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। ऐसे में जैविक खेती ही टिकाऊ और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरी है। जैविक उत्पादों की बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है जिसमें किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ती है। किसान भाइयों जैविक खेती केवल खेती की एक विधि नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भोजन और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए किसान भाइयों जैविक खेती जरूर करें। और भाई देखो बातें तो कर ही रहे हैं, आज आप जानते ही हैं कि शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी जिसमें आप अपनी पसंद की रागनियां और लोकगीत सुनते हैं और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दिन में 1:30 से 2 बजे तक। आप नंबर नोट कीजिए 7088001382। तो लीजिए सुनते हैं हमारा आज का कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी, पर उससे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: तो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ महेंद्र कौर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हमारे किसान भाइयों की फोन कॉल्स हमारे पास में आ रही हैं, तो देखते हैं कौन कौन लाइन पर हैं।
1: हेलो
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: कौन बोल रहे हैं आप?
2: मैं अलका राजन बोल रही हूँ, यूपी से।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
2: मैं मैम मैं देहरादून में पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
2: ठीक है।
0: अच्छा, तो रेडियो वगैरह सुनती हैं क्या आप?
2: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, तो क्या क्या सुन लेती हैं उसमें आप?
2: मैम उसमें मुझे अधिकतर जो है जो किसान से रिलेटिव आता है ना, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी भी जानते हैं आप?
2: जी जी
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी में क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ?
2: जी जी इस टाइम पे मैम जो है धान की फसल हो रही है।
0: अच्छा,
2: जी
0: तो मौसम तो आजकल कभी गर्मी है कभी बारिश है, बहुत ज्यादा ऐसा चल ही रहा है,
2: हाँ हाँ जी जी मैम।
0: तो उन चीजों से तो स्वास्थ्य पे बड़ा फर्क भी पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं
2: हाँ
0: आप?
2: मतलब मैं ऐसा होता है मैम कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी जाते हैं किसान लोग,
0: जी
2: खेत में काम करके धूप से पहले आ जाते हैं, फिर शाम के नंबर में चले जाते हैं काम करने के लिए।
0: अच्छा, तो अच्छा
2: हाँ
0: सुबह
2: जी
0: सुबह जाते हैं जल्दी,
2: हाँ जी
0: ये
2: जी
0: तो
2: जी जी
0: बढ़िया है, अच्छा है, अपना टाइम से काम कर लेते हैं।
2: जी जी हाँ मैम, क्योंकि ऐसा है ना कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है ना।
0: खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है खासकर गर्मियों में,
2: जी जी
0: तो
2: जी जी
0: उसमें क्या
2: मैम।
0: क्या करते हैं आप?
2: उसमें मैम जो आजकल क्योंकि किसान लोग तो भैंस कुछ पालते हैं ना, तो वो छाछ होता है उसका उसका यूज करते हैं, लस्सी बनाते हैं, वो पीते हैं।
0: अच्छा,
2: जी
0: बढ़िया है, अच्छी बात है।
2: जी
0: फिर ये आपने हमें हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में फोन किया है, तो
2: जी जी मैम, वो कई बार ट्राई करके ना आज लगा है इतने समय के बाद। बहुत अच्छा लगा
0: अच्छा
2: आपसे बात करके। जी
0: अच्छा, चलो आपका कॉल लग गया और इसमें फोन
2: जी
0: करने के लिए धन्यवाद। और तो क्या सुना दे फिर आपके लिए आज?
2: मैम, मुझे जो है ना रागनी पसंद है, तो मैं एक रागनी ही सुनना चाहूंगी।
0: रागनी, ठीक है, फिर
2: हाँ जी
0: तो सुनते हैं
2: जी
0: ये
2: जी
0: रागनी।

0: हेलो,
1: हेलो मैम। नमस्कार मैम,
0: नमस्कार नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं विमला बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा, विमला बोल रही हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से। मैम
0: अच्छा, तो विमला जी क्या करती हैं आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ अभी देहरादून में।
0: अच्छा, स्टडी में चल रही है आपकी। क्या कर रही हैं आजकल आप?
1: मैं लेक्चरर की तैयारी करती हूँ।
0: गुड। तो विमला जी, ये बताइए हमें कि खेती बाड़ी से भी संबंध रखते हैं आप?
1: यस मैम, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ के साथ ही मम्मी घर में खेती बाड़ी भी करती है मैम।
0: अच्छा, खेती बाड़ी संभालती हैं आपकी मम्मी?
1: यस मैम,
0: ये बहुत
1: जैसे कभी हमारी छुट्टियां हो जाती तो हम भी हेल्प कर लेते हैं उनके साथ।
0: अच्छा,
1: जी मैम,
0: तो बड़ी अच्छी बात है आपकी जो है मम्मी खेती बाड़ी संभाल रही हैं, और फिर जब आप जाते हो आपका साथ मिल जाता है उनको, है ना?
1: यस मैम।
0: तो फिर आजकल क्या क्या लगा रखा है आप खेती बाड़ी में?
1: मैम आजकल हमारे वहाँ पे खेती में आलू की खेती करते हैं, धान की खेती, जैसे दाल, सोयाबीन की दाल, गहत की दाल, सब्जियों में मिर्च,
0: अच्छा,
1: शिमला मिर्च, ये चीजें लगाती हूँ मैम।
0: तो फिर जैसे खेती बाड़ी करते हैं घर में तो कुछ दिक्कतें तो आती होंगी खेती बाड़ी करने में।
1: यस मैम, जैसे कभी धूप लगती है मॉर्निंग में हम लोग जल्दी चले जाते हैं खेतों में और
0: अच्छा
1: साथ में पानी लेके भी जाते हैं मैम।
0: अच्छा धूप वगैरह गर्मी के लिए, गर्मी की वजह से ना,
1: यस मैम,
0: तो फिर जैसे फसलों में कुछ परेशानियां आ जाती हैं तो उसके लिए फिर आप किसकी सलाह लेते हैं?
1: मैम कृषि विभाग की सलाह लेते हैं, वहां से हमको खाद प्रोवाइड कराते हैं,
0: अच्छा
1: हाँ दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराते हैं और उन दवाइयों का हम अपनी सब्जियों और खेतों में छिड़काव करते हैं मैम।
0: अच्छा तो बीज भी वहीं से लेते होंगे आप लोग,
1: यस मैम,
0: तो क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: लोकगीत सुनना चाहूंगी मैम।
0: ठीक है
1: यस
0: विमला
1: मैम,
0: जी, और हेलो लोक मंजरी में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं ये लोकगीत।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ
1: हेलो,
0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप?
0: मैं बिजनौर से बिट्टू चौधरी बोल रहा हूँ, गांव सबचंदपुर मोहन से। हाँ
1: अच्छा, बिट्टी चौधरी जी बोल रहे हैं आप?
0: जी, हाँ जी,
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया जी। आप बताओ, खेती
1: इधर भी सब ठीक है। और बताइए, खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी?
0: बाड़ी बहुत ठीक ठाक चल रही है जी।
1: अच्छा, तो क्या क्या लगा रखा है आजकल आपने खेती बाड़ी में?
0: बस हमारे यहाँ बाजार गन्ना ही रहता है जी, बिजनौर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में गन्ना ज्यादा लगता है।
1: अच्छा, गन्ने की फसल है
0: हाँ जी, गन्ने की फसल है, उसकी देखभाल इस टाइम पर चल रही है। हाँ,
1: तो उसमें जैसे कीट वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप?
0: कीट वगैरह के लिए देखिए कुछ रासायनिक छिड़काव करते हैं,
1: अच्छा
0: कुछ और भी उपाय कर लेते हैं, जैसे कि लाइट वाइट लगाते हैं, लाइट ट्रैप।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी
1: तो ये रेडियो वगैरह सुनते हैं आप क्या?
0: हाँ जी, हाँ रेडियो सुनता हूँ मैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मुझे कृषि जगह 7 बजे है।
1: हाँ जी, 7 से 7:30 का प्रोग्राम का टाइम है।
0: हाँ जी, हाँ जी, जो भी खेती बाड़ी के संबंध में जानकारी रहती है वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है जी।
1: अच्छा, तो उसका फायदा भी लेते हैं आप?
0: हाँ जी, फायदा पूरा लेते हैं, जो भी
1: अच्छा
0: अच्छी जानकारी आती है, जैसे कोई अच्छी नस्ल बताते हैं किसी पशु की, या जैसे फसलों की अच्छी प्रजातियां बताते हैं, तो वो हम नोट कर ले जी।
1: अच्छा, आकर उसमें ये रागनी, ये लोकगीत वगैरह भी सुनते ही होंगे आप? अब
0: बहुत पसंद है जी रागनी लोकगीत, तो बहुत पसंद है बचपन से ही।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: चलो
0: जी,
1: बहुत।
0: रेडियो सुनने का पूरा शौक है, रेडियो सुनने का बचपन से ही, और लोक संगीत में तो बहुत ही रुचि है।
1: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
0: आज आप जी मुझे महाभारत को कोई हिस्सा सुनवा दो।
1: अच्छा, तो हेलो लोकमंजरी में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं आपकी पसंद की ये रागनी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं सुनीति बोल रही हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं सुनीति आप?
1: मैं इधर उधमपुर से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो सुनीति क्या करती हैं आप?
1: मैं एक टीचर हूँ और आजकल तो खैर छुट्टियां पड़ी हुई हैं और मैं घर पर ही हूँ। बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ बिजी चलती हूँ आजकल।
0: अच्छा, तो इस
1: आजकल
0: टाइम बिजी हैं घर पे, घर गृहस्थी में
1: हाँ जी,
0: अपनी।
1: हाँ जी,
0: तो खाली टाइम में आजकल क्या क्या करती हैं आप?
1: आजकल खाली टाइम में बच्चों के साथ काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इस बीच हम आजकल रेडियो के प्रोग्राम ज्यादा सुनते हैं
0: अच्छा, तो
1: जी।
0: रेडियो के प्रोग्राम में क्या क्या सुनते हैं आप?
1: रेडियो के प्रोग्राम, ये आपके लोकगीत आते हैं वो सुनते हैं, और कृषि जगत के प्रोग्राम है वो सुनते हैं, और भी लोकमंजरी प्रोग्राम है वो सुनते हैं
0: महिला जगत भी सुनती हैं आप?
1: जी। बिल्कुल, महिला जगत भी सुनते हैं
0: तो उसमें जो डॉक्टर सलाह वगैरह देते हैं तो सुनते हैं, जानकारी लेते हैं उससे आप?
1: हाँ, जो उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं वो अच्छी जानकारी देते हैं, और हम उन्हें सुनकर फॉलो भी करते हैं।
0: अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या सुनाते हैं आज आपको?
1: आज आप हमको एक लाडो बसंती, हरियाणवी पिक्चर है, उसका एक सॉन्ग है बहुत अच्छा सा, सरसों फूली रंग बसंती, आप वो सुनवा दीजिए
0: अच्छा, तो हरियाणवी सॉन्ग सुनना चाहती हैं आप?
1: जी। बिल्कुल
0: तो ठीक है सुनीति जी, हेलो लोक मंजरी में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनते हैं आपकी पसंद का ये हरियाणवी लोकगीत।

किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि आप भी अपनी पसंद की कोई रागनी या लोकगीत सुनना चाहते हैं तो हमारे पास में शुक्रवार को दिन में 1:30 से 2 बजे तक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7088001382। नंबर दोबारा नोट कीजिए 7088001382। इस नंबर पर हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पता बताने का। तो हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001। इस पते पर हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। और अब इसी के साथ महेंद्र कौर को आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। किसान साथियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नगदगढ़ मी छू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी मा पासिंग आउट परेड बाद भारतीय सेना के मिली 481 युवा अधिकारी। ऐतिहासिक परेड मा 9 महिला कैडेट्स ले भई पास आउट। रुद्रप्रयाग जिलक प्रभारी मंत्री गणेश जोशील जखोली मा ग्रामीणों की समस्या सुनी। अधिकारियों के प्राथमिकता आधार पर समस्याओं के निस्तारण करण के जिले निर्देश दें। देहरादून जिला प्रशासनक संवेदनशील पहल। गंभीर बीमारियों से परेशान आर्थिक रूपल कमजोर वर्गक नांतिनन के मिलल निःशुल्क उपचार। और पौड़ी जिल्मा अतिक्रमण खिलाफ प्रशासनक अभियान लगातार जारी। अब समाचार विस्तारल। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बनी। सैन्य बैंड गूंज, अनुशासित कदम ताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह पूर्व वातावरण के भावपूर्ण और गौरवपूर्ण बना। यो वर्षक परेड के सभ्य हबेर महत्वपूर्ण विशेषता छी 9 महिला कैडेट्स का सफलतापूर्वक पास आउट हुण। भारतीय सैन्य अकादमी इतिहास में यो एक ऐतिहासिक पड़ाव छू। यो महिला नेतृत्व ऊन वाल विकास और सशक्त भारतक अवधारणा के लिए नई ऊर्जा प्रदान करल। एक रिपोर्ट।
2: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट सूल अंतिम पग पार कर बीर सेना में अधिकारी बनना गौरव प्राप्त करो। इनुम बटी 16 मित्र राष्ट्रों 34 कैडेट छी जो अपन अपन देशों सेनाओं में शामिल हल। पर्यटक निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर करो। यह मौक पर राष्ट्रपति को की भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक छू। उन्होंने पहली बार पास आउट हुई सैन्य कैडेट्सों के भारतीय सैन्य अकादमी इतिहासक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए देश महिला नेतृत्व वाले विकासक दिशा में एक प्रेरक कदम बता। श्रीमती मुर्मू अधिकारी कैडेट सुहते हैं बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन शिक्षण साहसिक निर्णय लेन और नैतिक नेतृत्व परिचय देने का आह्वान करो। पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता लीजी प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार के दी गो। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बटी योगिता बेस्ट।
1: कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी आज जखोली में आयोजित जनकल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्या सुनी। केंद्र सरकार 12 साल पूर्व होने के अवसर पर आयोजित जनकल्याण शिविर में उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सिद्ध बातचीत करी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में ठाड़ व्यक्ति तलक विकास योजनाओं का लाभ पुजूण छू। श्री जोशी कहा कि जनकल्याण शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के द्वार पर पुजबेर उन्हें समस्याओं का समाधान करने जैक वजल आमजन के जग जग कार्यालयों के चक्कर नी काटन पड़नी। उन्होंने अधिकारियों दे जनता की समस्याओं के संवेदनशीलता दगड़ निपटूणक और पात्र व्यक्तियों के सभ्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बखत पर उपलब्ध करने के निर्देश दें।
3: हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं। और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया है, अभी 10 बाकी हैं। और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों यहाँ पर जवाब दिए, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निर्णय ना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है।
1: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल आज अलमर जिले में सोमेश्वर कंडार कुआं मंडल में ऊणीवल सुनिया कोट मटीला मार्ग धे ओलिया गांव तलक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंब बाटक निर्माण कार्यक शुभारंभ करो। यो मौक पर कैबिनेट मंत्री को कि ओलिया गांव लीजी मोटर मार्ग निर्माण ग्रामीणों कई दशकों की सुईण छी जो आज साकार हुनो। उन्होंने कहो कि 77 लाख रुपए लागत तक बढ़ने वाल यो सड़क वहां ऋण वालक मातृशक्ति और ग्रामीणों जीवन सरल बरुणक दगड़ क्षेत्रक विकास के लिए नई गति दियल। उन्हन को कि प्रदेश सरकार प्रदेशक अंतिम गांव तलक ले सुविधा पुजूणक लीजी प्रतिबद्ध छू। ये अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण असैनियन सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जते।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपु लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपु लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: देहरादून जिल प्रशासनल गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूपल कमजोर वर्ग नक नांतिरन के निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करुणक पहल करी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहानल यस नांतिरन के चिन्हितकरण और उपचारक प्रक्रिया के प्राथमिकता आधार पर संचालित करणक निर्देश दें। उन्हें बाल विकास विभागक जिला कार्यक्रम अधिकारी के 6 वर्षक नांतिनन और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के 6 हबेर 18 वर्ष तलक आयु वाल नांतिनन और किशोरों के चिन्हीकरणक लीजी विशेष अभियान चलुणक ले निर्देश दें। जिलाधिकारी को कि जिलमा कोल नांतिन डबल नक अभावक कारण उपचार है वंचित निरूण चे। उन्हें संबंधित अधिकारियों के निर्देशित करो कि यस नांतिनक पछाण कर बेर उनर जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाओ ताकि उनन के टेम पर उपचार दी जा सको। जिलाधिकारी बता कि चिन्हित नांतिनक उपचार केंद्र सरकारक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमक अंतर्गत निःशुल्क कराई जल। यह कलावा गंभीर बीमारियों को उपचार यो कार्यक्रम में संभव नहीं थी पर वीक उपचारक लीजिए दुहर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और राइफल फंडक उपयोग करी जल जदे नांतिनन के भल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकल। पौड़ी जिल में अतिक्रमण खिलाफ प्रशासनक अभियान लगातार जारी छू। यो क्रम में यमकेश्वर तहसीलक अंतर्गत गरुड़चट्टी हैबे लक्ष्मण झूला तलक जिल प्रशासन और नगर पंचायत स्वर्गाश्रमक संयुक्त दलल विशेष अभियान चलाबेर सार्वजनिक भूमि और मार्ग क्षेत्र चिन्हित करी

0: सभी जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एनएच पीडब्ल्यूडी आदि सबके साथ में, तो उसमें यही निर्देशित किया गया था कि पूरी तैयारी के साथ में जो जो चिन्हित अतिक्रमण है उसको भी हटाएं और जो नए अतिक्रमण इस बीच हो गए हैं उसको भी चिन्हीकरण तथा हटाने की कार्रवाई की जाए। तो उसके क्रम में अभी लगातार पूरे जिले भर में अभियान जारी है और इसमें कोटद्वार में काफी अतिक्रमण हटाए गए हैं, साथ में रिखणी खाल में भी काफी सारे अतिक्रमण मुक्त किए गए हैं, साथ में हम लोगों की जो श्रीनगर वाला एरिया है या लांसडाउन आदि के आसपास वहां पे भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके साथ भू कानून के उल्लंघन के जो मामले थे जो कोर्ट में हमारे निस्तारित होते हैं उसके क्रम में भी धुमाकोट में 27.5 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है और उसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है। तो ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा।
1: राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय संचालन के लिए बेर तैयारियां शुरू है गई। यो क्रम में हल्द्वाणा गोरापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन करीगो। यो बखत खेल संरचना पाठ्यक्रम और स्टाफ तैनाती के लिए बेर ले महत्वपूर्ण मंथन भो। सम्मेलन में प्रदेश भर खेल अधिकारी कोच और खेल जगत से जुड़ी दिग्गज शामिल भई। खेल सचिव और विश्वविद्यालय कुलपति अमित सिन्हाल बताए कि बैठक में विश्वविद्यालय के लिए बेर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ली गई छन।
2: पहली चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, इसकी बहुत बाहर डिमांड है। इसके लिए इसके जॉब के बहुत अच्छे स्कोप है। हम लोग ये चाह रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे जो आसपास के जो भी है वो यहाँ पे आए, यहाँ पढ़े। स्पोर्ट्स कोचिंग में भी यहाँ पे जो गेम्स की कोचिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है, जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक उसको प्रचार प्रसार करके हम लोगों को ला सके। बिकॉज हम जो क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सारी तैयारियां इन सब से चर्चा हुई।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना के मिली 481 अधिकारी। ऐतिहासिक परेड में 9 महिला कैडेट्स ले भई पास आउट। रुद्रप्रयाग जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशील जखोली में ग्रामीणों की समस्या सुनी। अधिकारियों के प्राथमिकता आधार पर समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दें। देहरादून जिला प्रशासन संवेदनशील पहल। गंभीर बीमारियों से जूझ रही आर्थिक रूप कमजोर वर्ग नक्नातिरन के मिलल निःशुल्क उपचार। अर पौड़ी जिले में अतिक्रमण खिलाफ प्रशासनिक अभियान लगातार जारी। यह कदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक यहीं समाप्त हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और फिल्म संगीत में पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का रिश्ता से। और इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने, संगीत पद किया है नदीम श्रवण ने, बोल हैं समीर के।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत श्रोताओं आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे हमने लिया है केके की आवाज़ में और गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, बोल है समीर के। फिल्म का नाम है भूल भुलैया।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सेवा सुशासन और गरीब कल्याण।
1: उत्तराखंड को अस्तित्व में आए ढाई दशक से अधिक हो गए हैं। इस दौरान राज्य ने विकास की लंबी यात्रा तय की है, लेकिन पिछले लगभग 12 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों ने इस यात्रा को नई गति प्रदान की है। चाहे सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार हो, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाओं का विकास हो, या फिर पर्यटन, तीर्थाटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल, उत्तराखंड को अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लाभ मिला है। ऑल वेदर रोड परियोजना से लेकर चारधाम यात्रा के विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक अनेक योजनाओं ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की है। कृषि, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी योजनाओं ने भी लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। आज उत्तराखंड केवल देवभूमि के रूप में ही नहीं, बल्कि विकास, पर्यटन, निवेश और नवाचार के एक उभरते केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं ने उत्तराखंड के विकास को नई दिशा दी है। सबसे पहले बात एक ऐसी योजना की जिसने लाखों लोगों के सपनों को नई उड़ान दी है। एक समय था जब छोटा व्यवसाय शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाना बड़ी चुनौती हुआ करती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक नया रास्ता खोला। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं को बिना बड़ी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया गया। उत्तराखंड में भी अनेक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय शुरू किए और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
2: उत्तराखंड एक ऐसी भूमि जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों में छुपी है संघर्षों की अनगिनत कहानियां। वहीं इन संघर्षों से उबरने के लिए एक खास पहल ने कई छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों की जिंदगी बदल दी है। इनके इन संघर्षों में मददगार बनी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि उनके लिए सिर्फ एक ऋण नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह थी। जो लोग पहले अपनी छोटी सी दुकान या कारोबार के लिए कर्ज लेने में असमर्थ थे, अब वे अपनी मेहनत और सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं।
3: मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन लिया है, उसके बाद से अब मैंने अपनी गारमेंट्स का काम शुरू करा है और जो इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर था वो बड़ी काफ़ी आसान था। बैंक ने मेरी बहुत सहायता करी।
4: मैंने मुद्रा योजना से लोन लिया है और आज मैंने फिर एक अपने कार्ड खोल लिए। बस यहाँ पे बढ़िया काम चलता है, 6 महीने हो गए कार्ड खोले हुए।
5: जानकारी मिली कि ये मुद्रा योजना सरकार दे रही है, इसमें 10,000 से लेके 10 लाख तक, 20 लाख तक जितनी आपकी जैसी योजना का स्वरूप है आप ले सकते बिना गारंटी के। यही मैंने किया, जब से मैंने लिया है तब से ठीक भी है और 2-4 लड़कों को रोजगार भी दे रहे हैं।
2: उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुद्रा योजना ने काफी प्रभाव डाला। छोटे व्यवसायों ने योजना के माध्यम से न सिर्फ अपने

0: उत्पादन को बढ़ाया बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न किए।
1: तो मुझे पता चला कि सरकार की तरफ से कोई मुद्रा लोन की योजना चल रही है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे मिल गया और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आज मेरा अपना खुद का कारोबार है जिसमें मेरे पास 2-3 लड़के काम भी करते हैं और मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ।
2: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हमने लोन लिया था और उससे हमारा कारोबार में हमें बहुत बड़ी मदद मिली और हम ये जो योजना है इससे बहुत से लोगों को बहुत अच्छा फायदा रहा। इससे हमारा बिजनेस आगे को बढ़ा और एक ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ।
0: किसानों और कृषि से जुड़े व्यवसायों ने भी मुद्रा योजना से विशेष रूप से लाभ लिया है। उत्तराखंड के कई युवा उद्यमियों के लिए ये योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है।
3: विकास का वास्तविक अर्थ तब दिखाई देता है जब उसकी पहुंच आम लोगों के घरों तक हो। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों तक पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है। कई गांवों में महिलाओं और बच्चों को रोजाना दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। समय के साथ ये केवल एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न बन गया। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। उत्तराखंड के हजारों गांवों में इस मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई गई और घर घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया और इस मिशन ने किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों को नई सुविधा प्रदान की, आपको सुनाते हैं पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव सेमन की कहानी, जहां जल जीवन मिशन के जरिए पेयजल पहुंचने से ग्रामीणों को सुविधा मिली और उन्हें अब पानी के लिए दूर दराज की धारों नौलों में नहीं जाना पड़ता।
4: बहुत बड़ी कठिनाइयां थी पानी की। यहाँ सभी के घर वाले सभी को एक एक डब्बा दे देते थे और कहते थे जब तुम घर आओगे तो खाली हाथ मत आना, पानी को साथ लेकर आना।
5: यहाँ से हम लोग कई बार तो ऐसे डोंगों में रखते थे और फट दूसरे कूड़े में गिर जाते थे, स्लिप हो जाते थे।
4: लोग क्या करते थे, भरा बर्तन देखा और उठा के गायब। तो हम ये करते थे कि पानी भर के झाड़ियों में छुपा दिया
5: और हम उन्हें ध्यान नहीं दिया। पीछे से भालू आया, उसने एक लेडीज पे अटैक कर दिया।
6: कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन सोचिए अगर कहीं जीवन तो हो मगर जल ना हो तो। यही कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव सीमन की। यहां हर बूंद के लिए घंटों की चढ़ाई और हर घूंट में थकान की एक कहानी छुपी थी।
5: बहुत दूर से पानी लाते, धारा पंदेराओं से पानी लाते थे। हैंडपंप तो अभी लगे कुछ साल पहले से, पहले हम लोग धारा से लाते थे पानी। सुबह 4 बजे 5 बजे निकल जाना और 9-10 बजे आना।
7: कभी तो रास्ते में बाघ भी मिल जाते थे, कभी भालू भी मिल जाते थे।
5: शाम के टाइम 5-5:30 बजे के टाइम लोग पानी भरने जा रहे थे, वहाँ भीड़ थी। दूसरे गांव के भी थे और हमारे गांव के भी थे और हमने उन्हें ध्यान नहीं दिया। पीछे से भालू आया, उसने एक लेडीज पे अटैक कर दिया और उसको छोड़ा, गिराया थोड़ा और फिर दूसरे पे किया और ऐसे में 3-4 लेडीजों को किया उसने। जिसके छोटे बच्चे रहे उसको कमरे में बंद कर देना और तब पानी के लिए जाते थे। इलेक्ट्रिक बाथरूम सब अंदर।
7: पहले किसी की मतलब लड़की की शादी या लड़का की शादी होती थी ना, तो हम एक महीने पहले सारे गांव के मिलकर पहले बोलते थे कि उनके घर पे पानी जमा कर दो, तब वो मेहंदी लगाती थी।
6: जल को जीवन मानने वालों ने जल जीवन मिशन का बीड़ा उठाया, एक ऐसा संकल्प जिसने ठाना कि हर गांव, हर घर और हर भारतवासी तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना अब सिर्फ सपना नहीं एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है।
4: जब पहली बार नल आया तो सबने उसकी पूजा की, किसी ने धूप किया, किसी ने चुन्नी बांधी, किसी ने चावल चढ़ाए, तो इस तरह का मतलब लोगों पे काफी उत्साह था।
5: ऐसा लग रहा था कि घर ही भर दे हम लोग पानी के अंदर। बंट हम लोग डब्बा भरा, फिर बाहर लाए, फिर दूसरा डब्बा भरा, फिर दूसरों के घर भी गए पानी देखने की तुम्हारे उसमें कैसा पानी आ रहा है।
4: मेरा तो ये था कि थैंक गॉड कि फाइनली पानी आ चुका है।
5: जब से जल मिशन पानी आया है तब से हम लोग बहुत खुश हैं। किसी के दुख सुख में शामिल हो जाते, पहले तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना होता था हम लोग दुख सुख में शामिल ही नहीं हो पाते थे। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनने घर घर पानी लगा दिया है, बहुत सुविधाएं दे दी है।
6: बदलाव की ये कहानी सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की ही नहीं है बल्कि पूरे देश की है।
8: मतलब प्रति मने मने को ಒಂದು ಈ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ।
9: ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅಂತರ್ಗತ ಪಾನಿ ಆಲ್ಯಾಮುಳೆ ಮಹಿಳಾಂಚಾ ಜಿ ಕಷ್ಟ ಹೋತಿ ಪಾನಿ ಆನ್ಯಾಚೆ ವೇಳ ಜಾತ ಹೋತಾ ತದೆ ಸಗಳ ಬಂದ ಜಾಲ।
10: पानी बराबर से टाइम पे हम लोगों को मिल जा रहा है तो हमारी समस्या बहुत तरह से सॉल्व हो गई है।
11: हर एक घर जल और हर एक घर

0: जहां साल 2019 में लिए गए एक संकल्प ने 15.58 करोड़ से ज्यादा घरों तक साफ पानी पहुंचाया है। दुर्गम इलाकों में नल से बहता जल आजादी का प्रतीक बना है, जहां महिलाएं घड़ों के भार से मुक्त हुई हैं।
1: अब हमारे गांव में नल में तो पानी आया ही, लेकिन उसके साथ जो लौटा है वो है गांव की सुरक्षा, बच्चों का बचपन लौट आया है, घर की साफ सफाई, सब कुछ जो सब पानी पर निर्भर था वो सब चीजें लौट आई हैं। और सबसे ज्यादा झगड़े जो पानी की वजह से होते थे, अब वो सारे रिश्ते जो आपस में बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। एक नल ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है।
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि किस प्रकार पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं ने उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला, जल जीवन मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन योजनाओं का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की बदली हुई जिंदगी में दिखाई देता है, जिनके लिए विकास अब केवल एक शब्द नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। बेहतर सड़कें, मजबूत आधारभूत ढांचा, बढ़ते रोजगार के अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण और गांवों तक पहुंचती मूलभूत सुविधाएं एक विकसित उत्तराखंड की तस्वीर को और मजबूत कर रही हैं। विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों की ये यात्रा निरंतर जारी है। इसी विश्वास और आशा के साथ रागिनी बिंजोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: आपका पत्र मिला कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। कल्पना जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार आपको और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार।
0: कल्पना जी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ रंग बिरंगे पत्र हैं और कुछ मैसेज भी आए हुए हैं।
1: जी, और हमारे आज के इस कार्यक्रम में दो पोस्ट कार्ड भी हमें मिले हैं। कार्यक्रम में पहला ये पोस्ट कार्ड है अश्विनी कुमार शर्मा, पूर्वी पटेल नगर देहरादून से, निकट महंत इंद्रेश अस्पताल, पटेल नगर देहरादून। आप लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम में सुनता हूँ, मैं नियमित श्रोता हूँ, मुझे आपके केंद्र से नमस्कार। देहरादून कार्यक्रम, बट सफरमाइश कार्यक्रम, सदाबहार गीत, एक कलाकार, कृषि जगत, शैल संगीत, सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। आपसे विनती है कि आप सदाबहार गीत में 1980 और 90 के दशक के गीत भी अवश्य सुनवाया करें, आपकी अति कृपा होगी।
0: कल्पना जी देखिए कितनी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद हमारे किसी श्रोता ने हमें पोस्ट कार्ड पत्र लिख भेजा है और ये श्रोता है अश्विनी कुमार शर्मा जी। और अश्विनी कुमार शर्मा जी, आपने जो हमें लिखा है कि आप नियमित श्रोता हैं हमारे आकाशवाणी देहरादून के और आपको नमस्कार देहरादून, व्हाट्सएप फरमाइश, सदाबहार गीत, शैल संगीत और अन्य कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं और पत्र भी लिख रहे हैं। और आपने लिखा है कि सदाबहार गीत कार्यक्रम में 1980 से 90 के दशक के गीत अवश्य सुनवाएं, तो आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हम कभी कभी 1980 से 90 के दशक के जो गीत हैं वो भी सुनवाते हैं। खैर, आपने इस संबंध में पत्र लिखा है, कोशिश करेंगे क्योंकि उन गीतों की संख्या कुछ ज्यादा हो जाए। अश्विनी कुमार शर्मा जी, आपने एक पत्र लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, ये अगला पत्र कार्यक्रम में हमें लिख भेजा है आप हैं टिकोला कला हरिद्वार से हैं, मास्टर रमेश चंद नामदेव, संजय कुमार नामदेव, डॉक्टर राजन कुमार नामदेव, श्रीमती ज्योति नामदेव और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी लिखते हैं कि मैं आपके नियमित और पुराना श्रोता हूँ, आकाशवाणी देहरादून के प्रत्येक कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनता हूँ, सभी कार्यक्रम सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। सुबह 8:30 पर नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, सुबह 9 बजे सदाबहार गीत, दिन में 11 बजे से 12 बजे का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम और साथ में दिन भर के कार्यक्रमों के साथ में रात्रि 11 बजे तक आकाशवाणी देहरादून सुनता हूँ। और लिखते हैं कि आज शाम 7 बजे हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम सुना, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत सराहनीय रही। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक अवश्य हम सुनते हैं। और लिखते हैं कि लोक मंजरी का फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग किस दिन होती है, कृपया इस बारे में हमें बताएं।
0: ग्राम टिकोला कला से मास्टर रमेश चंद्र नामदेव जी के जो परिवारी जन है, इन्होंने हमें एक पत्र लिखा है और आपने लिखा है कि आप हमारे आकाशवाणी केंद्र देहरादून के पुराने श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। देहरादून केंद्र के कार्यक्रमों को नियमित सुनते हैं। 8:30 पर नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, 9 बजे सदाबहार गीत, 11 बजे से 12 बजे तक जो व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम है आप ये भी सुनते हैं, ये भी अच्छा लगता है। और आपने हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम को सुना और हम यही चाहेंगे कि आप आगे भी इसी तरह से आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों को सुनते रहें। और लोक मंजरी कार्यक्रम को लेकर आपने लिखा है तो इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं शुक्रवार को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, उक्त दिन आप कॉल कर सकते हैं,
1: साथ में अपनी पसंद की रागनी भी सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कल्पना जी नंबर क्या है रिकॉर्डिंग के लिए, ये हमारे श्रोताओं को अवश्य बता दीजिए।
1: जी, फोन नंबर है 7088001382। बस इतना ध्यान रखें कि शुक्रवार को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच फोन के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती है और इसका प्रसारण किया जाता है शनिवार को शाम को 7 बजे।
0: भाई रमेश नामदेव जी और आपके जो परिवारीजन है, इनका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं गत 8 जून को व्हाट्सएप फरमाइश का विशेष प्रोग्राम जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित था, सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम अत्यंत ही रोचक था और आकाशवाणी के विषय में सार गर्भित जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मध्य गाने भी एक से बढ़कर एक सुनवाए गए, इस हेतु आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगी, मेरे हृदय में उनके प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान है।
0: भारत भूषण जी, अंजू श्रीवास्तव जी, दिव्येंद्र भूषण जी और आपके जो परिवारीजन है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, आपने हमारे 8 जून के व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम को लेकर लिखा है। ये जो कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रसारित किया गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी की बात है और हम समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और आपने लिखा है कि कल्पना जी की उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, तो निश्चय ही वो एक अच्छी प्रस्तोता है और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का आप आनंद लें। और हम यही चाहेंगे भारत भूषण जी और आपके परिवारीजनों से कि आप आगे से भी इसी तरह से अपने मैसेज और पत्र हमें अवश्य लिखते रहिएगा।
1: जी, कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं आप हैं सी के चक्रवर्ती देहरादून से, लिखते हैं कि आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष की यात्रा के संबंध में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया 8 जून को, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
0: सी के चक्रवर्ती जी, आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत की उसको लेकर आपने लिखा है कि बहुत ही अच्छा लगा, तो निश्चय ही हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सी के चक्रवर्ती जी, आपको 90 वर्ष आकाशवाणी के पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम आपने सुना वो आपको अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके जैसे जागरूक और नियमित श्रोता जो हैं उनको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और अपने विचार भी वो अपने मैसेजेज और पत्रों के माध्यम से हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आपने एक मैसेज भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, गाँव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। आप शेर लिखते हैं, इश्क दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता, इश्क दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता, इसमें कोई पागल कोई दीवाना नहीं होता, रोता वो है जो डूबता है इश्क में, रोता वो भी है जिसको कुछ हासिल नहीं होता। आप लिखते हैं कि हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा आदाब, हमें देहरादून आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 6 तारीख को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना, हमें अच्छा लगा। और लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून केंद्र से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश किए गए, इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम सुना यादें रेडियो की, इसमें माधुरी बर्थवाल जी से खूबसूरत यादें साझा की, बहुत अच्छी लगी। और लिखते हैं, अनुभव कार्यक्रम में हमने डॉक्टर एस के सैनी से रमेश चंद्रा जी बातचीत सुनी, वो भी अच्छी लगी, प्रेरणादायक बातचीत थी। 4 जून को हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमारा फोन कार्यक्रम में लगा, बातचीत भी अच्छी हुई, मगर 5 तारीख को कार्यक्रम सुनने को नहीं मिला, वजह थी आपका प्रसारण ऐप पर नहीं मिल रहा था। लिखते हैं कि जिंदगी में पहली बार आपके केंद्र पर फोन लगा, वो भी सुनाई नहीं पड़ा, अब दोबारा कब फोन करें बताएं।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी और आपके जो परिवारीजन है, इन्होंने एक बहुत ही लंबा और सार गर्भित मैसेज हमें लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक शेर लिखा है
1: जी,
0: तो हम उस शेर को लेकर यही कहेंगे कि आकाशवाणी एक वो दरिया है जो हमारे सभी श्रोताओं को प्यार से सराबोर करता है। आपसे गुजारिश करेंगे, आप इश्क में नहीं आकाशवाणी देहरादून के इश्क में डूबिए और यहाँ के कार्यक्रमों को आनंद लेते रहिए। और आपने आगे मैसेज में लिखा है कि आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र ने जो कार्यक्रम प्रसारित किए वो आपको अच्छे लगे। 4 जून को हेलो फरमाइश में आपने लिखा है कि इस दिन फोन तो लगा लेकिन ऐप पर कार्यक्रम नहीं जा रहा था।

0: तो भाई लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपको बताना चाहेंगे उस दिन इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो इसलिए कार्यक्रम ऐप पर नहीं सुन पाए थे। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, हम आपसे वही निवेदन करेंगे कि आप आगे जब कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है तो अपना फोन अवश्य लगाइएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका फोन और अन्य जो भी श्रोता है उन सबके फोन हमारे कार्यक्रम में शामिल हों
1: जी
0: और उनकी फरमाइश हम सुना सकें। लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपने हमें एक प्यारा सा मैसेज लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं मोटका माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, किसान श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, ज्योति शुभम देवी किशन भावना मनमानस और कनिका पटेल। आप लिखते हैं कि कलियों की तरह खिलती रहे, फूलों की तरह महकती रहे, हमारी बस यही तमन्ना है कि आकाशवाणी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
0: मोर टक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल जी, कमला पटेल जी और आपके परिवारी जनों ने एक प्यारा सा शेर लिखा, और आकाशवाणी की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के लिए जिसमें आपने दुआ की, तो हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप और हमारे सभी श्रोता जो हैं वो भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करें।
1: आकाशवाणी का प्रसारण यूं ही निरंतर चलता रहे और हमें भरपूर मनोरंजन मिलता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी की पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां।
0: आपको भी हमारी तरफ से बहुत
1: जी
0: बहुत शुभकामनाएं, हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह से नियमित रूप से हमें अपने पत्र और मैसेजेज लिखते रहें।
1: आप सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी की पूरी टीम के माध्यम से आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, जिसमें हमारे उद्घोषक भाई बहन, इंजीनियर, कार्यक्रम प्रमुख अधिकारी, तमाम लोगों की मेहनत से आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है, बहुत गौरव की बात है। और लिखते हैं कि मैं बचपन से लेकर 55 वर्ष का सफर आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते सुनते पूर्ण किया है और भविष्य में भी आकाशवाणी के प्रोग्राम को सुनता रहूंगा। आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जगन्नाथ पटेल जी, आप 55 सालों से आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप जैसे सीनियर जो श्रोता हैं वो भी हमारे कार्यक्रमों से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं,
1: जी
0: और आप इंजीनियर हैं, प्रोग्रामर हैं या अन्य स्टाफ है, इन सबको आपने शुभकामनाएं दी हैं, तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इतने लंबे समय से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं
1: जी
0: और इसी तरह जुड़े रहें। ऐसे ही हम गुजारिश कर सभी श्रोताओं से, और यही चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोता इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहें। अपना प्यार, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव अपने पत्रों के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हमारे साथ अवश्य साझा करें। और कल्पना जी, क्यों ना चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप पत्र और मैसेज भेजने का पता बता दीजिए।
1: जी हमारे श्रोता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, और जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है। और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज,
0: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
3: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
4: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी, और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी, एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है। और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव-गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
5: नमस्कार।
4: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
5: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना और बार बार जीतना, और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना।

0: ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम, कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया।
0: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे, तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं है, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे, तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं

0: के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
1: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके बाद बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकते थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
0: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
1: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
0: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
1: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
0: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
1: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट, और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था, मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस

0: उसमें भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे हम। जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखिए, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दोनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के नहीं लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है। हम न्यूज़ तक

0: नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना जीडीपी जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी, ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, हम सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सी आर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे हैं, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं,

0: सी तीन बड़ी नीतियां थीं जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इंप्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात की है, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय, जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
0: खुल नहीं
1: खुलेगा,
0: सकते।
1: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को

0: डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
0: देखिए,
1: देखते हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा

0: की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष

0: में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहां रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान पर बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए माइने सामान्य, बी माइने उससे और कठिन, सी माइने और कठिन, डी माइने उससे भी कठिन, और ई माइने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से

0: योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को, और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग

0: योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर کورس انہیں بھی کرنے پڑتے ہیں.
0: تو ابھی آپ لوگوں نے کیا طریقہ نکالا آدتیہ, جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں جب کورس کا ذکر آپ نے کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کورس زیادہ پاپولر ہیں rather than your own compositions؟
2: بالکل ہیں, پر ہم تھینکفلی اس طریقے میں اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں کہ ہم کورس اپنے طریقے میں ارینج کر لیتے ہیں.
0: اچھا,
2: ہم بولتے بھی ہیں we've qualified it.
0: جیسے بھی آپ ایک ایگزامپل دیا سمبھو, جو بندش ہے بڑے غلام علی خان صاحب کی, اس کو آپ نے تھوڑا ری ارینج کیا, اسے آپ نے ایک نیا ٹچ دیا,
1: اسی آئیڈیا کو لے کے مین اسٹریم گانوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھ کے ان کو پریزنٹ کرنا از واٹ وی ایز اے بینڈ آلسو ڈو.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था

0: कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत। और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने 2 लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the...
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना।

कुछ महान विभूतियाँ देह में भले हमारे साथ ना हों, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhvani, composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditala.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupa.

0: अभी आप सुन रहे थे यूशिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यूशिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the...
2: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले तीन चार दिन में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरल माहे उड़ीसा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of 5 air warriors. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next chief of the army staff with effect from 30th of this month. He is presently serving as the vice chief of the army staff. The present chief of the army staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event tomorrow. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.